सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज है सोमवार, शक संबद 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की सभा। हम अपने सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आप प्रस्तुत है हिंदी में समाचार, जिसे हम अपनी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन

0: बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती किसानी। आज के इस कार्यक्रम में कम वर्षा आधारित खेती विषय पर वार्ता प्रस्तुत कर रही हैं अनिता तिर्की।
2: कम वर्षा होने की स्थिति में ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, तीसी और सरगुजा इत्यादि का चयन करना चाहिए जो कम पानी में अच्छी उपज दे सकते हैं और जिसमें सूखा सहने की क्षमता हो। इसके अतिरिक्त दलहनी फसल जैसे अरहर, तिलहनी फसल, मूंगफली और टाँट जमीन के लिए उपयुक्त धान की किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। कम पानी वाली फसलें और उनके प्रभेद इस तरह से हैं। ऊपरी जमीन में धान के लिए बिरसा विकास धान 109 और वंदना, मकई के लिए सुवान कंपोजिट 1, मड़ुआ के लिए A404, ज्वार की किस्मों में CSV-20, SPV-16, मूंगफली AK-12-24। एक बार किसान भाई फिर से सुन ले। कम पानी में तैयार होने वाली फसलें और उनके प्रभेद इस तरह से हैं। ऊपरी जमीन में धान के लिए बिरसा विकास धान 109 और वंदना है। उसी तरह मकई के लिए सुवान कंपोजिट 1 है। मड़ुआ के लिए A-404, ज्वार की अच्छी किस्मों में CSV-20, SPV-16-16, मूंगफली की उन्नत किस्मों में AK-12-24 है। सूखा रोधी फसल वैसे फसल को कहते हैं जो सूखे की स्थिति में उत्पन्न होने पर भी अपनी पूरी क्षमता अनुरूप उत्पादन करते हैं, जैसे कि मड़ुआ, ज्वार और बाजरा। कम वर्षा होने की स्थिति में मड़ुआ के बिचड़ों की रुपाई 30 दिन तक कर देनी चाहिए। इससे उपज में 25-30% तक की वृद्धि होती है। देसी प्रजाति की छिटकुआ विधि से औसत उपज 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की तुलना में उन्नत प्रजाति A-404 की रुपाई से 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। किसान भाइयों को कम वर्षा होने की स्थिति में मड़ुआ के बिचड़ों की रुपाई 30 जून तक किसी भी तरह से कर देनी है, क्योंकि इससे उपज में 25-30% तक की वृद्धि होगी। और उन्नत प्रजाति को लेना है। उन्नत प्रजाति में A-404 है। इसकी रुपाई से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में ज्वार सूखा सहन करने वाली फसल है, इसलिए इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार की प्रभेद SPV-16-16 इसके लिए अत्यधिक उपयुक्त है। झारखंड राज्य में किसानों के पास ज्यादातर टाँट जमीन है और वहाँ पर पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। इसके लिए किसान भाई इस जमीन में गोड़ा धान, बाजरा, मूंगफली, सरगुजा इत्यादि की फसलों का चुनाव कर सकते हैं, इस फसलों को ले सकते हैं। अंतर्वर्तीय कृषि प्रणाली का उपयोग भी बहुत ही लाभदायक है। इसमें 2 पंक्ति अरहर, उसके बीच में मक्का की 1 पंक्ति या मूंगफली की 1 पंक्ति ले सकते हैं। 2 पंक्ति अरहर के बीच में मक्का सुवान जो है उसकी 1 पंक्ति या मूंगफली की जो किस्म है AK-12-24 इसकी 1 पंक्ति ले सकते हैं। इसी तरह गोड़ा धान में वंदना या बिरसा विकास धान 109 के साथ उड़द बिरसा उड़द की दो पंक्तियां 25 सेंटीमीटर की दूरी

0: हुआ था। उनकी जीवन शैली अद्भुत थी। उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है जिसके कथ्य अत्यंत प्रेरणादायी हैं। एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति निराश और हताश होकर आया। उसने बड़ी विनम्रता से उनसे प्रार्थना की, मैं अपने जीवन की असफलताओं से परेशान हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में जो भी सपने देखे वे कभी साकार नहीं हुए। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे जीवन में सफल होने के लिए कोई गुरु मंत्र बता दें। सुकरात थोड़ी देर मौन रहे, फिर अपने स्थान से उठे और उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे लेकर आ गए। देखते देखते वे दोनों नदी में चलने लगे और अंततः नदी के मध्य में आ गए। हैरत तब हुई जब सुकरात उस व्यक्ति का सिर पकड़कर नदी में डुबोने लगे। इस कोशिश में हर बार व्यक्ति सांस लेने के लिए छटपटाता और अपना सिर पानी से बाहर निकालने की शिद्दत से कोशिशें करता, लेकिन हर कोशिश के साथ सुकरात उसका सिर उतनी ही तीव्रता से नदी में डुबो देते। अंत में सुकरात उसे नदी के किनारे ले आए। बाहर आकर याचक ने खुली हवा में राहत की सांस ली और क्रोधित होते हुए पूछा, आप ये क्या कर रहे थे? ऐसे तो मेरी जान चली जाती, इसमें सफल होने का कौन सा गुरु मंत्र छिपा हुआ है? सुकरात ने धैर्य भाव से समझाया, जब नदी के मध्य मैं तुम्हारा सिर पानी में डुबो रहा था तो तुम्हें सबसे अधिक किसकी जरूरत महसूस हो रही थी? सांस के लिए हवा की, व्यक्ति ने अविलंब जवाब दिया। सुकरात और भी गंभीर होते हुए बोले, सफलता के लिए यही गुरु मंत्र है। जीवन में देखे गए सपने को साकार करने के लिए तुम में उसी प्रकार की बेचैनी होनी चाहिए जो नदी के मध्य में तुम में सांस को पाने के लिए थी। सफल होने के लिए यही छटपटाहट सफलता का कालजयी गुरु मंत्र है। इस दुनिया में सफल होने का सपना कौन नहीं देखता है, लेकिन इसके लिए हम में त्याग, तत्परता, समर्पण का अभाव होता है। लिहाजा सफल होने के लिए जब आपका मन बेचैन रहने लगे, आपको अपने लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे, तो ये मानकर चलिए कि आप जीवन में सफलता के सोपान पर आरूढ़ हो गए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का शुभारंभ देशभक्ति रचना के साथ मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर में।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7:05 पर आपको सुनवाएंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में वेट वार्ता का विषय है महिलाओं में बढ़ता तनाव कारण बचाव। वेट वार्ताकार होंगे डॉक्टर अर्चना पाठक, वेटकर्ता संजीव कुमार लाल। 7:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय है विश्व समुद्र दिवस। लोकरंग का कार्यक्रम आप सुनते हैं 8:45 पर। आज ये कार्यक्रम नागपुरी लोकगीतों पर आधारित है। कलाकार होंगी रूना देवी और साथी शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आप सुनते हैं 9:30 पर। आज आपको सुनवाएंगे चीर सत्य ठाकुर से सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद दो गते, दोनों ही गते विलंबित और तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। सुबह के 10:00 सुनिए आओ साथ चले कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है ग्रामीण विकास में GSLPS की भूमिका और उपलब्धियां। भेंट वार्ता में आपको सुनवाएंगे आत्मनिर्भर झारखंड में निर्माण में GSLPS का योगदान। भेंट वार्ताकार होंगे श्री मुकेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर GSLPS और मांझी। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की है। जानकारी और मनोरंजन का कार्यक्रम जोहार राजी आप सुनते हैं 10:30 पर। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का प्रसारण दोपहर 12:00। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, विषय है बदलती महिलाएं बदलता भारत। जानकारी में सुनिए मसालों की औषधि लाभ। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी आप सुनते हैं 1:20 पर। आज के हमारे कलाकार होंगे सिप्रा बोस। सुगम संगीत का प्रसारण होगा 1:45 पर।

फौजी साथियों का विशेष कार्यक्रम जय भारती आप सुनते हैं 2:30 पर एनसीईआरटी के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 3:00। रांची मेलोडीज 3:30 पर आओ साथ चले का पुनः प्रसारण शाम 4:02 पर आप सुनेंगे। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी आप सुनते हैं 5:02 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है नशा मुक्त भारत अभियान। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे नशे की लत से बचे युवा। इस कार्यक्रम में आज इतिहास में आज के दिन का महत्व भारत और विश्व विशेष रोचक तथ्य में जानकारी होगी। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। श्रमिक भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम श्रमिक लोक औद्योगिक प्रसारण शाम के 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा पृथ्वी का फेफड़ा क्यों जरूरी है हमारे लिए महासागर। वर्ल्ड ओशन डे पर तनाव मुक्त और शांत मन के लिए योग कितना जरूरी है। सूचना शिक्षा और मनोरंजन 90 वर्षों के देश को एक सूत्र में पिरोना आकाशवाणी। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत कौरव की। शाम के 6:02 पर आपको सुनाएंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है मौसम आधारित खेती। प्रश्नोत्तरी में मोटे अनाज के प्रसंस्करण हेतु विशेष जानकारी में हमारे विशेषज्ञ होंगे इस कार्यक्रम के डॉक्टर निशा तिवारी। वेट करता कृष्ण जीवन पौराणिक कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के संक्षिप्त जानकारी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में सुनिए समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इण्डोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इण्डोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इण्डोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा सम्पर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़ नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य सीपीए इत्यस्य भारत क्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, सम्पूर्ण देशस्य 15 विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिमबंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायाम् ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्यपदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में

0: इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। वेस्ट बंगाल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत पीएम जय, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक
2: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है महिलाओं में बढ़ता तनाव, कारण बचाव। इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर अर्चना पाठक और उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
3: मित्रों नमस्कार। मित्रों हर जगह आजकल तनाव का वातावरण है, खासकर हमारी महिलाओं और माताओं में तनाव का वातावरण बना रहता है। तो हमारी माताएं और बहनें तनाव से क्यों घिर जाती हैं, क्या उसका कारण है और हम उस चीज़ों से अपना बचाव कैसे करें और कौन कौन सी सामान्य बीमारियां हो जाती हैं जिससे वो तनावग्रस्त हो जाती हैं, बातचीत करेंगे डॉक्टर अर्चना पाठक से, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्वागत है आपका। महिलाओं में आए दिनों तनाव का कारण क्या है, हम क्या हमारे बिगड़ती जीवन शैली है या महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियों का वहन करती हैं, उन्हें घर का भी कार्य करना पड़ता है और बाहर की जिम्मेदारियों भी उन्हें निर्वहन करना पड़ता है।
4: जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं ये बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य से हम ये समझते हैं कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में खासकर अगर हम देखें तो तनाव के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अभी जो कोविड का जो पीरियड था या कोविड का जो ड्यूरेशन रहा, उसमें लोगों ने काफ़ी अपने लोगों को खो दिया या फिर उनको फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत फेस करने पड़े। एक जो खुशी थी वो उनके पास नहीं रही, कारण बहुत सारे तनाव से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आगे और डेवलप हो रहे हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत मेन रीजन है कि महिलाएं अपने परिवार को अपने से आगे रखती हैं, तो जिसके कारण वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और खान पान में पूरा ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ पे एनीमिया उनको होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो शरीर में उनके खून की कमी हो जाती है, तो वो एनीमिया के कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो उनमें शारीरिक काफी बदलाव है और वो बहुत कमजोर महसूस करती हैं। अभी थायराइड का भी काफी पहले से केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि सरकार ने अपने तरफ से बहुत कुछ किया है इसके लिए, जैसे कि आयोडीन युक्त नमक वगैरह जो उन्होंने प्रोवाइड कराया है, बट लोगों में अभी भी इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है और महिलाओं में खासकर ये थायराइड के प्रॉब्लम भी पहले से काफी ज्यादा बढ़े हैं और इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है अभी आजकल की, जिसके कारण हाइपरटेंशन जैसे है, बीपी के प्रॉब्लम है, बीपी भी काफी बढ़ा है, डायबिटीज के केसेस बढ़ हैं। और आजकल तो काफी देखा जा रहा है कि जैसे जो यंग जो महिलाएं हैं या जो युवा अवस्था में जा रहे हैं उनको पीसीएस के प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, वो प्रॉब्लम काफी महिलाएं फेस कर रही हैं अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण।
3: तो इस तरह की बीमारियां महिलाओं को हो जा रही है और इससे तनाव से वो घिर जाती हैं, तो बचाव कैसे करें, जो हमारी जीवन शैली है उसको कैसे व्यवस्थित करें, घर के काम और बाहर के कामों में किस प्रकार अपने को सामंजस्य करें, क्योंकि महिलाएं घर परिवार को देखती हैं और फिर उनके खान पान में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो खान पान और अपनी जीवन शैली को किस प्रकार व्यवस्थित करें हमारी माताएं और बहनें।
4: देखिए, जो भी प्रॉब्लम आजकल महिलाएं फेस कर रही हैं वो बेसिकली अगर हम बोलें तो वो एक अपने जीवन शैली में उनको सुधार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर महिलाएं शिक्षित हैं और अगर महिलाएं अपने परिवार का विकास करती हैं, अपना विकास करती हैं, तो ही उनके परिवार का विकास हो सकता है, तो ही उनके समाज का विकास हो सकता है और उसी से उनके देश का भी विकास हो सकता है। तो ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है आज के डेट में, और इसके लिए महिलाओं को जो भी उनको पसंद है, जो भी एक एक्टिविटी पसंद है, जैसे कि योगा करना अगर उन्हें पसंद है या मेडिटेशन करना पसंद है, तो वीक में या रोजाना कम से कम 20 या 25 मिनट अपना एक्सरसाइज

0: आइटम आ रहे हैं वो भी महिलाओं को या युवतियों को काफी असर कर रहे हैं, क्योंकि वो आइटम कहीं ना कहीं जाके उनके हार्मोन में इम्बैलेंस पैदा करते हैं और उनमें कई तरह की बीमारियां फिर आज के डेट में काफी ज्यादा, जो पहले नहीं होती थी, मोस्टली 40-50 ईयर्स के बाद ही होती थी, आजकल काफी यंगर जनरेशन में भी हम उन बीमारियों को देख पा रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी की काफी ज्यादा कमी हो गई है
1: जी। थायराइड या एनीमिया किसी को हो जाता है तो इसका पहचान क्या है, किस तरह से पहचान लें और हम अपना इलाज शुरू कर दें और अपनी जीवन शैली को हम सुधार करें?
0: ये दो तरीके से होता है, या तो हाइपोथायराइड हो सकता है या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो अगर हम देख रहे हैं कि 2-3 महीने में अगर उसका महिला का वजन अत्यधिक बढ़ रहा है या फिर अत्यधिक घट रहा है तो महिला को अपने ऊपर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, इसमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं या कम ही अंतराल पे हो बट जल्दी जल्दी होते हैं, और महिलाओं में थकान बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, पाल्पिटेशन होने लगता है, शरीर में पसीना आना या बहुत ज्यादा ठंड लगना, ये सब अगर कारण आ रहे हैं तो ये थायराइड की पहचान है। और इसका उपाय भी बहुत सिंपल है, मतलब महिलाएं अगर अपने ऊपर ध्यान दें तो इसकी एक छोटी सी गोली आती है जो सुबह नाश्ते के पहले खानी होती है, उसको रूटीन में ले, उसको रूटीन से अलग ना जाएं अपने, और अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करें तो वो बहुत हद तक ठीक हो सकते हैं। और दूसरा, एनीमिया में भी है कि खून की कमी हो जाती है तो उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा अपने को कमजोर महसूस करती हैं, और खासकर गर्भावस्था में, जो हम देखते हैं कि गर्भावस्था में एनीमिया जो है लेडीज स्पेशली झारखंड में है बहुत ज्यादा कॉमन फैक्टर है, कि सबको मोस्टली यहाँ पे 8 या 7 हीमोग्लोबिन हम पाते हैं डिलीवरी के दौरान। जब डिलीवरी का प्रॉब्लम आता है तो उसमें महिलाएं फिर पोस्ट पार्टम हिमरेज के कंडीशन में आ जाती है, ताकि जैसे डिलीवरी के दौरान बहुत ज्यादा उनको ब्लीडिंग कभी कभी होती है और उनका लाइफ सेव करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो शुरू से ध्यान दें इन सब बातों को, जो आयरन की गोलियां भी मिलती हैं वो भी नियमित रूप से नहीं लेती हैं, तो अपने स्वास्थ्य पे अगर अच्छे से ध्यान देंगी तो माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहेंगे।
1: और यही बीमारी तनाव का कारण बन जाती है।
0: जी। पीसीओडी जो है बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें हम ये बोलते हैं कि जो बच्चेदानी रहती है उसमें या फिर अंडाशय जो रहता है उसमें बेसिकली गांठ बन जाता है, जो कि हार्मोन के डिसबैलेंस से होता है। और मोस्टली जो आजकल यंगर जनरेशन है वो जो बाहर का जो खान पान ले रहे हैं, या जो ओबेसिटी भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या बाहर के खान पान जंक फूड से, इसका रिजल्ट ज्यादा बढ़ा है अभी। बेसिकली एडोलेसेंस में ये बोलना चाहेंगे कि वो बाहर का खान पान कम कर दें, एक्सरसाइज करें और वाटर इंटेक अपने बॉडी में बढ़ाएं, इन सब चीजों से पीसीओडी या पीसीओएस की जो प्रॉब्लम है, इससे महिलाओं में भी बहुत सारे प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बढ़ जाती है और चेहरे पे या शरीर पे अत्यधिक बाल आने लगते हैं, स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है, गले के पास एक काला पिगमेंटेशन डिपॉजिट हो जाता है। जब वो अपनी जीवन शैली को सुधारेंगे तब वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसका बेसिकली अगर वो पहले होता है कि जो हम लोग मॉडर्न में दवाइयां देते हैं 2-3 महीने देते हैं, अगर उससे वो कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बट वो अपने अगर जीवन शैली को नहीं सुधार पाते हैं तो फिर सर्जरी फिर एक ऑप्शन रह जाता है।
1: यदि नहीं सुधार करेंगे जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो बीमारियां बढ़ती जाएंगी। महिलाएं हमारी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या सलाह देंगे हमारे सुनने वाली माताओं बहनों को?
0: महिलाओं में सबसे ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की, इसके लिए उनका एजुकेट होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिलना चाहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने हेल्थ हाइजीन पे ध्यान दें, और एक प्रॉपर समय पे डॉक्टर से मिलके जो नियमित एक चेकअप होता है वो कराना चाहिए, और अपने जो बोलते हैं हम लोग हेल्थ इज वेल्थ, मतलब अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मतलब सबसे ज्यादा धनी है उस मामले में, तो मैं वही बोलूँगी अपना प्रायोरिटी रखना चाहिए, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
1: हेल्थ इज वेल्थ, यदि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही है तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रचना पाठक आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे महिलाओं में बढ़ता तनाव कारण बचाव विषय पर भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर अर्चना पाठक और भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। श्रोताओं, आज 8 जून को पूरी दुनिया वर्ल्ड ओशियन डे मना रही है। इस दिवस की शुरुआत सन 1992 में हुई थी और 2008 में यूनाइटेड नेशन ने इसे आधिकारिक मान्यता दी। धरती का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका है और हमारी हर दूसरी सांस के पीछे महासागरों का योगदान है। आइए इस खास सुबह में महासागरों के महत्व को समझते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

पृथ्वी पर 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इनमें प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और गहराई की दृष्टि से सबसे गहरा महासागर है। ये महासागर पृथ्वी की जलवायु संतुलन, जैव विविधता और मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: HIV एक विषाणु है जिसका संक्रमण HIV संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। HIV एड्स की जानकारी के लिए ना को टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या ना को एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
5: श्रोताओं, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में स्थित मरीना गर्त, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक मानी जाती है, यह इतना गहरा है कि यदि माउंट एवरेस्ट को इसमें रख दिया जाए तब भी उसके ऊपर पानी बच जाएगा। महासागर आज भी कई रहस्यों और अपने भीतर समेटे हुए जिनकी खोज वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं।

मैं जब यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत। मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ बहुत पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाव का इंतजार है, किसी मांझी की जरूरत है।

दोस्तों, हम अक्सर पेड़ों को ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन महासागरों में मौजूद सूक्ष्म पौधों और शैवालों से आते हैं। यही कारण है कि महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। महासागर स्वस्थ रहेंगे तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा।

विश्व महासागर दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और पूरी दुनिया में मौसम के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि महासागर न हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी कठिन हो जाएगा।

भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा रखता है। इंडियन ओशियन न केवल भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मौसम और मानसून को भी प्रभावित करता है।

दोस्तों, महासागर केवल जल राशि नहीं बल्कि जीवन, जैव विविधता और पृथ्वी के संतुलन के सबसे बड़े आधार हैं। विश्व महासागर दिवस पर आइए संकल्प लें कि हम पर्यावरण और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देंगे। इसी संदेश के साथ आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। विश्वजीत का नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुला आकाश और मैं हूं विश्वजीत पात्र। आइए श्रोताओं, बात करते हैं हमारे अपने नीले सागर की यानी समुद्र की। समुद्र एक ऐसा शब्द जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य, जीवन और संभावनाओं समेटे हुए हैं। विश्व समुद्र दिवस न केवल हमें समुद्र की विशालता और सौंदर्य की याद दिलाता है, बल्कि ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। हर साल 8 जून को मनाया जाने वाला यह दिवस एक वैश्विक प्रयास है जो लोगों को समुद्र के महत्व और उसकी रक्षा की आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। धरती का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, जिसमें से अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों का है। 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इन महासागरों में लगभग 2.5 लाख से अधिक ज्ञात प्रजातियां रहती हैं, जबकि लाखों अब भी अज्ञात हैं। समुद्र की गहराइयां इतनी रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने चांद के सतह को समुद्र की गहराइयों से बेहतर समझा है। इतिहास गवाह है कि समुद्र ने मानव सभ्यता को दिशा को तय किया है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही समुद्र हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। विश्व की पुरानी सभ्यता हिंदू घाटी, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं समुद्र व्यापार पर ही निर्भर थी। लोथल जैसी प्राचीन भारतीय बंदरगाह दर्शाते हैं कि समुद्र भारत के व्यापारिक तंत्र का हिस्सा रहा। विश्व के कई महान अन्वेषक जैसे कि बास्को डिगामा, मैगलन और कोलंबस ने समुद्र मार्गों के जरिए नई दुनियाओं की खोज की। समुद्र से भौगोलिक सीमाओं का विस्तार नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संपर्क का माध्यम भी रहा। धर्म, भाषा, कला और व्यंजन समुद्र की लहरों पर सवार होकर ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। प्राचीन काल से लेकर आज तक समुद्र हमें भोजन, मार्गदर्शन और व्यापार देने रहा। समुद्र शुरू से ही हमारी खोज, जिज्ञासा और यात्रा की भावना का प्रतीक रहा। समुद्र पारिस्थितिक तंत्र का भी मुख्य आधार है। यहाँ कोरल रिप्स, मैग्रोव जंगल, समुद्री घास के मैदान और प्लेक्टन अर्थात पल्लव जो ऑक्सीजन निर्माण का आधार है पाए जाते हैं। समुद्र न केवल अनेक प्रजातियां का घर है बल्कि ये हमारी जलवायु को स्थिर बनाए रखने में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा कार्बन सिंक भी है जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में हमारी मदद करता है। कार्बन सिंक वे प्राकृतिक और या कृत्रिम प्रणाली है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और उसे भंडारित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को नियंत्रित करता है, खास करके ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसके अलावा समुद्र धरती की हीट बैलेंसिंग सिस्टम भी है, ये सौर ऊर्जा को अवशोषित और वितरित करते हैं। समुद्री धाराएं मौसम को भी प्रभावित करती हैं। समुद्र हमारे जीवन में काफी गहरे जुड़े हैं। क्या आपको पता है कि लगभग 35% मानव जनसंख्या समुद्र तट के 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। मछली पालन और सिप्ट उपयोग करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। समुद्री मार्गों से लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यही कारण है कि समुद्र को धरती की जीवन रेखा कहा जाता है। लेकिन आज जिस समुद्र ने हमें इतना कुछ दिया
वो भी गंभीर संकट में। प्लास्टिक प्रदूषण से हर साल लगभग 80 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है, जो कि समुद्र जीवों के लिए काफी घातक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कोरल रिप्स अर्थात प्रवाल भित्ति नष्ट हो रहे हैं। वे प्रवाल भित्र समुद्र जीवन के लिए घर की तरह होते हैं। हम समुद्र के संसाधनों को अत्यधिक दोहन भी कर रहे हैं। ओवरफिशिंग के कारण कई मछलियां विलुप्त होने की कगार पर है। तेल रिसाव, रसायन अवशिष्ट और शिपिंग ट्रैफिकिंग ने समुद्र पारिस्थितिक तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। समुद्र का अम्लीयकरण आज एक ज्वलंत समस्या है। समुद्र अधिक CO2 खोज रहा है, जिससे उसका pH मान गिर रहा है। इससे शंख, प्रवाल भित्त और छोटे जीव काफी प्रभावित हो रहे हैं।

आज एक बदलाव की जरूरत है। इतिहास गवाह है कि जब जब मानव ने प्रकृति की सीमाओं को पार किया है, तब तब पूरी मानव जाति ने संकट का सामना किया है। अब समय है कि हम समुद्र की पुकार को सुने। इसके संरक्षण और दोहन के पूरे वैश्विक समुदाय को चाहिए कि वो महासागरों के लिए कड़े नियम बनाए। बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए कि वे टिकाऊ व्यापार अपनाएं, और हम सभी आम नागरिकों को चाहिए कि हम अपने अपने हिस्सों की जिम्मेदारियां निभाएं। प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें, समुद्र स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को समुद्र के महत्व के बारे में समझाएं। हर साल विश्व समुद्र दिवस की थीम यही कहती है, और इस वर्ष का थीम है पुनः कल्पना करें। हमारी ज्ञान दुनिया से आगे महासागर के साथ एक नया संबंध, यानी कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कर्म करने की जरूरत है। कल्पना कीजिए एक ऐसा भविष्य जहां समुद्र फिर से साफ हो, जहां डॉल्फिन लहरों से खेले, जहां मछुआरों के लिए जिंदगी सुरक्षित हो, और जहां अगली पीढ़ी भी लहरों की आवाज से सुकून पा सके। ये कल्पना सच हो सकती है अगर हम आज और अभी से कदम उठाएं। समुद्र हमारे पूर्वजों का मित्र, वर्तमान का सहचर और भविष्य की आशा है। समुद्र ने हमें सभ्यता दी, व्यापार दिया, जीवन दिया। अब हमारा फर्ज है कि हम उसे वापस वो सम्मान दें। विश्व समुद्र दिवस 2026 के इस अवसर पर आइए संकल्प लें कि हम इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारें और भविष्य के लिए समुद्र को सुरक्षित करें। मैं हूं विश्वजीत पात्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई लहर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नीले को बचाइए क्योंकि वो ही जीवन का आधार है।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे खुला आकाश कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय था विश्व समुद्र दिवस।

हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको जानकारी देते चलें आज प्रसारित होने वाले हमारे शेष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हमारी दुनिया। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है अंधविश्वास विकास में बाधक। सूचना में सुनेंगे सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में पंच परगनिया वार्ता में सुनिए वर्तमान परिवेश में बाल श्रम रोकना एक चुनौती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सबिता कुमारी मुंडा। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की है। 7:15 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे उड़ाव भाषा में। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है पारंपरिक भोजन शैली में पोषण। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के विषय में। कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा रात के 8 बजे। विशेष कार्यक्रम में सुनिए वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण, और इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 8:10 पर। समाचार संध्या 8:45 पर, न्यूज एट 9 9 बजे, उर्दू में समाचार 9:15 पर। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पब्लिक स्पीक 9:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी यादें आप सुनते हैं रात के 10 बजे। 10:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग नट में ख्याल गायन, विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध। ग्यारह बजे हिंदी में समाचार, और साथ ही साथ 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अभी आप जानकारी ले रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनिए समाचार, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने से विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक

0: भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
5: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला न करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर

0: अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रूपये की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। और बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन, राज्यभर में करीब 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की दो सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। अब तक 6 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैद्यनाथ राम, कांग्रेस से प्रणव झा और परिमल नाथवानी के साथ गौरव वल्लभ शामिल हैं। 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसी दिन परिणाम आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर रांची में सत्तारूढ़ गठबंधन के मंत्रियों और विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान चुनावी रणनीति और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए गठबंधन के दोनों राज्यसभा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से एकजुट होकर चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने तथा संगठनात्मक समन्वय मजबूत करने का आह्वान किया। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दोनों सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत का दावा किया।
1: महागठबंधन की इस बैठक में, जिसमें तमाम घटक दलों के लोग, हमारे गठबंधन के नेता मौजूद थे और उन तस्वीरों में हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे, यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे।
0: बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि पूरा गठबंधन एकजुट है।
2: दोनों प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणव जी और बैद्यनाथ राम जी। हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे, सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे। और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले वाम दल, पूरा गठबंधन एकजुट है।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी के आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं कल देर शाम प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें विधायक रागिनी सिंह, पूर्णिमा दास साहू समेत करीब 10 विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हुई। तय हुआ कि आज सुबह विधायक नवीन जायसवाल के सरकारी आवास पर विधायकों की चाय पर चर्चा होगी। इसके बाद विधायक विधानसभा के लिए रवाना होंगे। संवाददाताओं से बातचीत में विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि सबकी सहमति से प्रत्याशी का चुनाव होगा।
3: देखिए, प्रत्याशी जो भी होंगे बहुत जल्द आप सबके सामने होंगे और सबके सहमति से ही होंगे। देखिए, अब कौन है ये तो ऊपर में तय होगा। हमारे 81 मतदाता हैं, जिसे भी चुनेंगे बहुत अच्छा सोच समझ के।
0: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं की मैपिंग का कार्य जारी है। रांची में विशेष शिविर लगाकर वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जा रहा है। बीएलओ ने बताया कि 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर मैपिंग की जा रही है।
4: यदि उनका नाम होगा 2003 के लिस्ट में तो स्वयं के नाम से, अगर उनका उस समय 2003 में वोटर आईडी नहीं बना होगा तो उनका माता पिता या तो उनका दादा दादी, उनके नाम से मैपिंग होगा।
0: रांची के पंडरा क्षेत्र में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने के आरोप में 3 लोगों को पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में पीसीपीएनडीटी एक्ट के उल्लंघन का मामला सामने आया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लिंग निर्धारण और अवैध अल्ट्रासाउंड गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। करगिल युद्ध में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के वीर जवान विद्यानंद सिंह का 27वां शहादत दिवस हजारीबाग के कारगिल पॉइंट में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहीद की वीरता को याद करते हुए उपस्थित लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि विद्यानंद सिंह ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन की घेराबंदी को तोड़ते हुए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने भारतीय सेना के अनुशासन की सराहना की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे

0: बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रांची में विधि व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर नवीन पुलिस केंद्र में पीसीआर और हाईवे पेट्रोल कर्मियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, अवैध अड्डाबाजी और नशे के कारोबारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, संवेदनशील स्थलों की निगरानी तथा डायल 112 से प्राप्त सूचनाओं के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर थाना पुलिस ने एक वाहन से 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। खूंटी जिले के डोंगरा पंदन टोली बगीचा मैदान में एदल संगा 22 पढ़ा जतरा का भव्य आयोजन हुआ। आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में सामूहिक नृत्य के साथ लोग जतरा का आनंद लेते नजर आए। मौजूद नेताओं ने मंच से एकता, एकजुटता और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। मौसम। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग, धनबाद समेत कई जिलों में आज से 14 जून तक गर्जन, बारिश और वज्रपात तथा तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड राज्य कुश्ती संघ और बोकारो जिला कुश्ती संघ द्वारा संयुक्त रूप से बोकारो में सीनियर राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न जिलों से 220 से अधिक पहलवान, प्रशिक्षक और अधिकारी भाग ले रहे हैं। जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग की स्पर्धाओं में 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदकों के लिए मुकाबले हो रहे हैं।
2: 2 दिवसीय जो प्रतियोगिता है, इससे हमारे बोकारो के सभी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, चास उपनगर में, विस्थापित क्षेत्र में कुश्ती के प्रति लोगों में एक उत्साह का वर्धन होगा। कुश्ती भारत की परंपरागत खेल है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बैठकों और मंथन के दौर में खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव, राजनीतिक सरगर्मी चरम पर, आज नामांकन का आखिरी दिन। हिंदुस्तान ने लिखा है, भाजपा ने नहीं दिया प्रत्याशी पर जीत का दावा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड का 2 दिवसीय दौरा पूरा कर दिल्ली लौटे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दैनिक जागरण लिखता है, एससी एसटी एक्ट के लंबित मामलों पर पुलिस मुख्यालय सख्त, मिशन मोड में निपटारे का आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महागठबंधन विधायक दल की हुई बैठक, दोनों सीटों पर जीत का दावा। भाजपा ने भी एनडीए विधायकों की बैठक में बनाई रणनीति। 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में होगी परीक्षा आयोजित। देवघर में श्रावणी मेले से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वारदात की बना रहे थे योजना। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज। मौसम विभाग ने 14 जून तक कई जिलों में गर्जन, बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट किया जारी। और बोकारो में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। राज्य भर से करीब 200 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये

0: बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा। रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब, मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी की बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 589 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त विश्वजीत पात्र। आकाशवाणी की रांची केंद्र से आइए आप सुने कार्यक्रम लोकगीतों का लोक रंग। आज ये कार्यक्रम नागपुरी गीतों पर आधारित है। कलाकार हैं रूना देवी और साथी।

नागपुरी लोकगीत का आप आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए रूना देवी और साथियों के स्वर में।

रूना देवी और साथियों के स्वर में अभी आप नागपुरी लोकगीतों का आनंद ले रहे थे और इसी के साथ आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। विश्वजीत का नमस्कार। कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए फिल्म एनिमल से। इस गाने को लिखा है राजशेखर ने और स्वर और संगीत विशाल मिश्रा की है। माफ कीजिएगा, कहा है

अब सुनिए फिल्म धुरंधर का गीत गहरा हुआ। इसे स्वर दिया है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने। गीत के बोल हैं इरशाद कामिल के और संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in। हर घर

अभी आप सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल से ये गीत, नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाजों में प्रीतम का संगीत था। और अब सुनिए फिल्म कबीर सिंह से अगला गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। इस गाने को लिखा है इरशाद कामिल ने और कल्याण और सचेत परंपरा ने संगीत से सजाया है।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: और अब सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म परिणीता से। इसे स्वर दिया है श्रेया घोषाल और सोनू निगम ने। गीत के बोल हैं स्वानंद किरकिरे के और संगीत दिया है शांतनु मोइत्रा ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 9:30:04 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी की रांची केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिए सितार पर राग रागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गत विलंबित गत और तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं चिल सत्य ठाकुर, संगत तबले पर करेंगे संदीप चैटर्जी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप चीर सत्य ठाकुर से सितार पर राग नागेश्वरी में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें सुन रहे थे, विलंबित गत तीन ताल में और द्रुत गत एक ताल में निबद्धता। संगत कर रहे थे तबले पर संदीप चटर्जी। और इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम से पहले एक संदेश।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आओ साथ चले कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है ग्रामीण विकास में GSLPS की भूमिका और उपलब्धियां। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता में आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण में GSLPS का योगदान। भेंटवार्ताकार होंगे श्री मुकेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर GSLPS और मांझी। कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की।

कार्यक्रम अवसाद चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ। करती हूँ आपका कार्यक्रम में स्वागत, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे पूरे झारखंड राज्य में

0: महिला समूहों का निर्माण करके बेहद सफलतापूर्वक सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। SSG ग्रुप से जुड़कर महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उन्हें आजीविका भी उपलब्ध कराई जा रही है और वे महिलाएं जो ग्रामीण स्तर से उठकर अब शहर की ओर आ रही हैं, साथ ही साथ जो महिलाएं अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो बाहर निकल रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हो रही है और साथ ही साथ वे परिवार के भरण पोषण में भी अपना सहयोग दे रही हैं। श्रोताओं, महिलाओं का समूह बनाकर काम किए जा रहे हैं। महिलाओं के समूह का निर्माण करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है और इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है JSLPS आजीविका मिशन के द्वारा। महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है, साथ ही साथ जिन महिलाओं की जिस क्षेत्र में रुचि है उस अनुरूप उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी रुचि के अनुसार उन्हें काम दिए जा रहे हैं ताकि वे काम मन लगाकर करें और साथ ही साथ उन्हें उसमें सफलता भी मिले और इस हेतु JSLPS तत्पर है। आज हमारी कार्यक्रम में बातें हो रही हैं JSLPS किस तरह से महिला समूहों को सुदृढ़ बनाने में और स्वरोजगार दिलाने में सहयोग कर रहा है और महिला समूहों के लिए JSLPS द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं, आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। ओरमांझी प्रखंड में कार्यरत JSLPS के BPM श्री मुकेश कुमार जी से कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: मैं आपसे मुकेश जी एक जानकारी लेना चाहूंगी कि JSLPS के द्वारा क्या क्या योजनाएं यहाँ पे प्रमुख रूप से प्रखंड में चलाई जा रही।
1: JSLPS 2012 में ओरमांझी ब्लॉक में शुरू हुआ था। अच्छा। और 2012 से कंटिन्यू एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में और JSLPS काम कर रहा है और JSLPS के द्वारा बहुत से बेनिफिशियरी लोगों को लाभ मिला है और यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग काम करते हैं तो गांव की जो पुअर से भी पुअर जो महिलाएं हैं उन लोगों के बीच में काम करते हैं और हम लोग अभी तक ओरमांझी प्रखंड में लगभग 1220 समूह का गठन किए हैं। 1220 समूह पूरा एकदम अच्छे से बैठक करते हैं, बचत करते हैं, अपना इंटरलोनिंग करते हैं, पंचसूत्रा का पालन करते हैं और जो JSLPS का नॉर्म्स है सभी चीज़ को वो फॉलो करते हैं। समूह बनने के बाद हम लोग यहाँ पे ग्राम संगठन का निर्माण किए हैं और अभी तक 89 BO का ग्राम संगठन का हम लोग ने निर्माण कर चुका है और हरेक BO में लगभग 10 से 25 महिला समूह को जोड़ करके हम लोग एक ग्राम संगठन का निर्माण किए हैं और ये ग्राम संगठन का निर्माण में हम लोग की ICRP ड्राइव चलती है। ड्राइव के माध्यम से हम लोग BO का गठन करते हैं। अच्छा। उस BO में BO के बाद हम लोगों ने CLF का गठन किया है। यहाँ पे 4 CLF है और जिसका फॉर्मेशन लास्ट ईयर 2000 CLF है क्लस्टर लेवल फेडरेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन में लगभग 10 से 25 BO मिला करके एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना जाता है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है और सभी CLF के माध्यम से दीदी लोग को हम लोग जो भी सरकार की योजनाएं होती है, गतिविधि होती है उसको हम लोग वहाँ बताते हैं और लेक डाउन BO के माध्यम से SAG के माध्यम से वो नीचे के स्तर से दीदी लोग तक पहुँच जाता है ये समाचार। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है कि CLF के माध्यम से, BO के माध्यम से और SAG के माध्यम से हम लोग कोई भी काम आसानी से जमीनी स्तर पर काम को शुरू कर सकते हैं और हमारे ओरमांझी प्रखंड में लगभग 4 क्लस्टर हैं। 4 क्लस्टर को अलग अलग जोन में हम लोग डिवाइड किए हैं जिसमें एक ओरमांझी क्लस्टर है, बारीडी क्लस्टर है, चुटुपालू क्लस्टर है और कुच्चू क्लस्टर है और सभी क्लस्टर में लगभग 265 से 325 के बीच में अलग अलग समूह बने हुए हैं। सभी को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 1220 समूह हमारे यहाँ पे बना हुआ है। सभी समूह में 890 समूह को हम लोग ने बैंक से जोड़ा है। बैंक से जोड़ने का मकसद है कि जो गरीबी स्तर से डूबी हुई दीदी लोग हैं उन लोग को कैसे आजीविका को हम लोग बढ़ा सकते हैं और उस आजीविका

0: खेती से संबंधित कुछ काम करते हैं, कुछ गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कोई लोग दीदी लोग जो बांस का काम करती है उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे करके उनके बांस के सामान को हम लोग रांची या सरस मेला लगता है तो उसमें हम लोग उन लोग को भेजते हैं। इस तरह से हम लोग एक ग्राम स्तर से, विलेज स्तर से, पंचायत स्तर से हम लोग के यहाँ पे कैडर दीदी लोग है।
1: ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी बताई कि आपने 1220 के तकरीबन आपने स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रखा है, विशेष तौर से ओरमांझ प्रखंड में। मुकेश जी, ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि जो महिलाएं बिल्कुल नीचे स्तर की, यानी गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली जो महिलाएं हैं, आज वो घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। और जो आपने कहा कि मुख्य उनका उद्देश्य है आजीविका, तो आजीविका के लिए आप प्रयासरत हैं, और मैं समझती हूँ, और जो मैंने देखा है और यहाँ की महिलाओं से मैंने भी जो बातचीत की है और उन्हें देखा है, तो आज वो दृढ़ता उनमें देखने को मिल रही है। मुकेश जी, मैं जानना चाहूँगी कि JSLPS किस तरह से इन स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं अपने पैरों पे जो खड़ी हो रही हैं, स्वरोजगार के लिए इच्छुक हैं और स्वरोजगार कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को JSLPS किस तरह से सहायता पहुंचाता है?
0: मैम, ऐसा है कि यहाँ पे जैसे हम लोग की स्वयं सहायता समूह बनी हुई है, तो स्वयं सहायता समूह में ही हम लोग जब हमारी ड्राइव चलती है, जब SAG जब हमारा बनता है या जब हमारा ग्राम संगठन बनता है, उस समय एक आम सभा होता है। आम सभा में लगभग उस गांव के जितने भी घर है, अगर उस गांव में एक उदाहरण लेते हैं, अगर हमारे ओरमांझी गांव है, उस गांव में अगर हमारा 150 परिवार है, तो 150 परिवार उस आम सभा में लोग आते हैं। अच्छा। और वहां पे लोगों का चुनाव किया जाता है। अच्छा। कि जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर कोई दीदी बोलती है कि नहीं, हम कृषि में अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ। और हम 5 एकड़ जमीन में खेती करते हैं, और अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो हम लोग वहाँ वोटिंग करवा लेते हैं। कि अगर हम लोग वोटिंग नहीं कराएंगे तो लोग सोचेगा कि नहीं, इनको जिसको मनाता है उसका सिलेक्शन कर देते हैं। इसलिए गांव की दीदी लोग आपस में ही वो वोटिंग का काम करती है। अगर वोट में जिसका नाम ज़्यादा लिया जाता है तो उसको दीदी का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसी में हम लोग AKM दीदी है, आजीविका कृषक मित्र, वो खेती से संबंधित काम करेगी। जितने भी तरह का खेती होगा उसको हम लोग चयन करके, जितने भी दीदी लोग हैं उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं। बाहर में मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो सरकार के साथ हमारा कन्वर्जेंस होता है, वहाँ हम लोग उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ वो 3 दिन का या 5 दिन का खेती से संबंधित, चाहे जो भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम हो, ड्रिप इरिगेशन का काम हो, वेजिटेबल क्रॉप का काम हो, सभी का काम वो वहाँ पे सिखाया जाता है। उसी तरह जब हमारा जब ग्राम सभा हुआ, तो एक तो हो गया हमारा आजीविका कृषक सखी का चयन हो गया, उसी तरह हमारा आजीविका पशु सखी का भी सिलेक्शन किया जाता है। पशु सखी का काम है कि जो गांव में है, बैल है, मुर्गी है, बत्तख है, बकरी है, इन लोग को टीकाकरण अगर समय पे नहीं होता तो मर जाता है, और मरता है तो दीदी लोग को बहुत ज़्यादा पैसा का हार्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए वैसे दीदी को हम लोग चुन लेते हैं कि उसी गांव की रहेगी, कम से कम मैट्रिक पास हो और उसको जानवर के साथ अच्छा लगाव हो, तो वैसे दीदी का भी उसी आम सभा में सिलेक्शन किया जाता है, ताकि उसको अच्छा से हम लोग सिखा सके। तो एक प्रशिक्षण का वो भी माध्यम था कि हम खेती के लिए भी दीदी को चुन लिए, पशु सखी के लिए पशु का जो भी काम होगा वो उस दीदी को सिलेक्शन कर लिए, और ये दोनों का प्रशिक्षण हम लोग करवा लेते हैं। करवाने के बाद ये लोग अपने फील्ड में काम करना शुरू करती है। दवा हम लोग को या तो JSLPS के द्वारा मिल जाता है, या कन्वर्जेंस हम लोग ब्लॉक से करवा देते हैं। सरकार बहुत सारी दवा जो है मुफ्त में देती है, लेकिन हम लोग मुफ्त वाला जो काम है वो अब छोड़ दिए हैं। कुछ पैसा अगर देते हैं तो दीदी को भी काम करने में अच्छा लगता है, और अगर बेनिफिशियरी को भी लगता है कि हम खरीद के लिए हैं, तो उनको भी काम करने में अच्छा लगता है कि नहीं, हमारा जानवर सही होता है। और फ्री फ्री अब हम लोग मतलब इस बार से बंद कर दिए कि अब कोई भी दवा जो है वो फ्री में नहीं मिलेगा। जो दीदी को लागत लगेगा, सरकार जो भी उसको 10 रुपये में दे रही है, 15 रुपये में दे रही है, तो वो बेनिफिशियरी से हम लोग वो लेते हैं। इस तरह करके उनको प्रशिक्षण दिया गया, और अभी हम लोग ओरमांझी प्रखंड में 45 पशु सखी है। अच्छा। पूरे हम लोग गांव को तो सैचुरेशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन 45 समूह है आजीविका पशु सखी है। अच्छा। वो लोग पूरे गांव में अपना वैक्सीनेशन का काम करते हैं, जिसमें से बत्तख को दवा पिलाती है, मुर्गी को दवा पिलाती है, खैरा रोग होता है या नाखून में पीलापन हो जाता है, तो उस सब के लिए वो दवा उनके पास अवेलेबल है। अच्छा। और वो दवा हम लोग JSLPS के माध्यम से दिलवाते हैं।

0: अभी वेजिटेबल क्रॉप भी हम लोग लगवा रहे हैं, और वेजिटेबल क्रॉप भी हम लोग सीरीज वाइज लगा रहे हैं, मतलब उसको उसका भी जो काम होता है वो लाइन सोइंग ही हो रहा है।
1: अच्छा
0: जी। और अभी हम लोग का अभी दो नया प्रोजेक्ट हम लोग अभी शुरू किए हैं।
1: अच्छा।
0: एक जायका प्रोजेक्ट जापान से वो प्रोजेक्ट मिला है JSLPS को, एक NRET पे प्रोजेक्ट है वो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। NRET पे जो है वो क्लस्टर बेस्ड काम होगा। क्लस्टर में मतलब एक क्लस्टर हम लोग चुटुपालू आजीविका महिला ग्राम संगठन जो है उसको हम लोग बनाए हैं। और यहाँ पे NRET में पहले क्या होता था कि लोग नन फार्म खाली खेती करते थे, ऑफ फार्म को ध्यान लोग नहीं देते थे, तो इसलिए इस बार सरकार का जो योजना आया है कि ऑफ फार्म को भी हम लोग बढ़ावा देंगे, चाहे वो ग्रोसरी का दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो, चाहे बांस का अगर कोई बांस वस्तु का कोई काम करना चाहते हैं तो उस तरह का हम लोग का काम करेंगे। तो ये अभी इनिशियल फेज में मार्च से हम लोग का शुरू हुआ है।
1: अच्छा।
0: तो अभी दो तीन अभी कम से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, ये अभी लंबा चलेगा। और इसमें भी वही स्वयं सहायता समूह है, वही VU है, वही CLF के दीदी लोग है। और एक अभी नया हम लोग PG बना रहे हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप।
1: अच्छा।
0: जैसे गाँव में बहुत सा इमली का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, लेकिन वो लोग उसका कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो प्रयोग नहीं कर पाते, तो हम लोग PG बना करके, और ये PG भी उस ग्रुप की दीदी ही है, लेकिन एक अलग ग्रुप हो गया।
1: अच्छा।
0: कि वो केवल मार्केटिंग का काम करेगी।
1: क्या बताया आपने?
0: प्रोड्यूसर ग्रुप।
1: प्रोड्यूसर।
0: हाँ, अगर मान लीजिए वही महुआ का काम हो रहा है, इमली का काम हो रहा है, कहीं मधुमक्खी का काम होगा, तो ये ग्रुप जो है इनिशिएटिव लेकर आगे काम करेगा।
1: अच्छा।
0: क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है SHG जो है वो छोटे पैमाने पे है, उसका जो मॉनिटरिंग का चीज़ है वो नहीं कर पाते हम लोग।
1: हाँ।
0: और 15 दीदी में हो सकता है कि 2 दीदी ही इंटरेस्ट ले, बाकी 8 दीदी लोग इंटरेस्ट ना ले, तो वैसे करके हम लोग जब ग्राम संगठन बना तो ग्राम संगठन में भी इसका नॉमिनेशन किया गया कि कौन दीदी जो है वो PG समूह में रहना चाहती है। तो इसमें कम से कम 50 दीदी, एक प्रोड्यूसर कंपनी जो बनेगा उसे 50 दीदी को इन्वॉल्व करना है,
1: यानी दीदियों की रुचियों का भी
0: रुचि के ध्यान रखा गया है।
1: सही बात।
0: रुचि रहेगा तभी हमारा काम होगा, रुचि नहीं रहेगा तो हमारा काम जो है एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए रुचि को ध्यान करके इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया कि इसको अच्छा से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अभी तक हमारे ओरमांझी में 20 जो है PG हमने बनाया है, और 20 PG में 3-4 जो PG है वो काम करना शुरू कर दिया है, अपना रोटेशन जो है वो करना शुरू कर दिया। इसमें से 2 जो है वेजिटेबल पे काम कर रहा है, एक जो है वो महुआ पे काम कर रहा है, और एक इमली पे काम कर रहा है। ये लोग क्या करते हैं, पूरे गांव से इमली मतलब इकट्ठा करते हैं और उसको एक जगह जमा करते हैं, और फिर जो कंपनी आते हैं या हम लोग मतलब JSLPS के माध्यम से हम लोग उसको कंपनी से लाइन अप कर देते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से कैसे बेच सकते हैं।
1: अच्छा।
0: क्योंकि यहाँ पे बिचौलिया जो है बहुत घूमते हैं।
1: सही बात है।
0: जो मार्केट का रेट अगर 20-30 रुपए किलो है, वो लोग अगर खरीदेंगे तो 20-25 रुपए में ही उसको कर देंगे।
1: हाँ।
0: इसलिए बिचौलिया को बचाने के लिए हम लोग इनिशिएटिव लेकर के एज ए BPM हम लोग दीदी लोग को हेल्प करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस तरह हमारा जो है अच्छा से प्रोग्राम चल रहा है। और जायका जो प्रोग्राम है इसमें सरकार एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है।
1: अच्छा।
0: उसमें बड़े किसानों को उसमें लाभ होता है।
1: अच्छा।
0: और जो जायका प्रोग्राम है
1: जो बड़े पैमाने पे कृषि
0: कर रहे हैं
1: उनके लिए।
0: हाँ, उनके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना।
1: अच्छा।
0: तो वो उसमें है कि 1 एकड़ जमीन कम से कम होना चाहिए, तभी हम उसमें ड्रिप लगा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: और हमारा जो JSLPS है और जायका जो फंडिंग प्रोजेक्ट है इसमें 25 डिसमिल अगर जमीन है हमारे पास तो हम आराम से खेती कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट अभी हम लोग किसान लोग को दे रहे हैं, जिसमें से हमारे पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा ड्रिप अगर लगा है तो वो ओरमांझी ब्लॉक में लगा है। यहाँ पे लगभग 250 फार्मर
1: अच्छा।
0: को हम लोग ने ड्रिप इरीगेशन से खेती करना शुरू करवा दिया है। और एक ड्रिप इरीगेशन जब लगता है तो 1 साल में वो 3 क्रॉप निकाल लेते हैं। और ऐसे अगर हम लोग सामान्य खेती करें तो एक खेती के बाद लोग के पास या तो पैसा का अभाव हो जाता है या पानी का अभाव हो जाता है या फिर वो सीजन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं हमारे पास तो पानी है नहीं तो हम खेती कैसे करें। बट ड्रिप में अगर हमारे पास पानी का थोड़ा सा भी स्रोत है, अगर कुआं भी है, तालाब भी है और अगर बोरिंग है तो हमको तो टपक सिंचाई से मतलब है, तो बूंद बूंद से हमारा खेती जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और अभी हमारे 2-3 अच्छे किसान हैं, हम लोग 250 के साथ लगाए हैं, तो 55-60 ऐसे किसान हैं जो साल में अभी हम लोग तरबूज वाटर मेलन का खेती किए हैं।
1: अच्छा।
0: और कम से कम यहाँ 10 टन तरबूज हम लोगों ने कोडरमा बंगाल उड़ीसा ऐसे करके हम लोगों ने इसको भेजा है, और कम लागत में अच्छा उपज है। अगर हम 5,000 का पूंजी हम उस ड्रिप में लगा रहे हैं तो हम 50,000 भी वहाँ से कमा रहे हैं। तो तो ये बहुत अच्छी ड्रिप इरीगेशन अभी उरमांझी में।

0: चल रहा।
1: मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, कृषि के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है इस प्रखंड में, और साथ ही साथ आपने बताया महिलाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जैसे इमली के पेड़ों पर, महुआ पर, बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो खेती का कहा कि ड्रिप इरिगेशन से खेती की जा रही है, इसमें किसानों को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन इसमें जो बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे जो कृषक काम कर रहे हैं, उनको इससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा।
0: मैम, कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसमें एक एकड़ में 7,000 रुपया लगता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसका जो वो लोग टेक्निकल सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अगर कंपनी है, अगर हमारा नेटा फेम अगर हमारी कंपनी है या कोई कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको केवल लगा देंगे जमीन पे, उसके बाद वो खराब हो रहा, अच्छा हो रहा, उसे उसको कोई मतलब नहीं है। बट हमारा जो ये जायका जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग उनको ड्रिप तो लगा देते हैं, और अच्छा ड्रिप लगाते हैं, क्योंकि देखिए कम अगर जमीन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनपुट अपना लगा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे फील्ड थेमेटिक कोऑर्डिनेटर लोग जो हैं, वो फील्ड में रह करके उन लोगों को एग्रीकल्चर का सपोर्ट हमेशा देते रहते हैं। मतलब कहने का कि अगर हम उनको अच्छा बीज के बारे में बता सकते हैं, इसको कैसे लगाना उसके बारे में बता सकते हैं। और अभी हम लोग एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मतलब बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग केमिकल फार्मिंग एकदम मतलब छोड़ने के लिए दीदी लोग को प्रयास कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें जो भी अगर वो लोग फसल लगा रहे हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको मार्केट से लिंक करा दें। पर अभी हम लोग जैसे जो बड़े बड़े रिलायंस वाले हैं या विशाल मेगा मार्ट है, उन लोग से हमारा मतलब बात हुई है हमारी संस्था को, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग का जो भी फसल पैदावार है उसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कंपनी को बेचें।
1: अच्छा।
0: और ये प्रोसेस शुरू भी हो चुका है।
1: अच्छा।
0: शुरू हो गया यहाँ पे, और मांझी से लोग आते हैं, और रिलायंस वाले या बिग बाजार वाले, तो यहाँ से अपना प्रोडक्शन जो है ले करके जाते हैं। तो इससे है कि दीदी लोग को बाजार में बैठना नहीं पड़ रहा है, उनको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है कि दिन भर हम 8 घंटा बेचेंगे, मतलब खड़े रख करके बेचेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, और घर से वो लोग तोड़ करके ले जा रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने मुकेश जी। अभी देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ विशेष तौर से देखा जाए, झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड में तो है ही, साथ ही साथ पूरे देश में जल शक्ति अभियान चलाई जा रही है, जो केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, और जल संरक्षण के लिए एक बहुत ही कारगर कदम ये उठाया गया है। और मैं समझती हूँ कि जो आपने ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया, खेतिहर किसान कर रहे हैं इसमें, तो पानी की बचत के साथ साथ और जो मेहनत उनको उसमें मशक्कत करनी पड़ती है, वो नहीं करना पड़ रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जल शक्ति अभियान जो चलाई जा रही है मुकेश जी, मैं उसके बारे में भी आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का ये अभियान है, और क्या लगता है भविष्य में इसका क्या फायदा हमें मिलेगा।
0: जल शक्ति अभियान जो है, ये भी प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा पहल है, और पूरे झारखंड में क्या पूरे भारत में इस तरह का योजना चल रहा है, लेकिन हम अपने उरमांझी ब्लॉक का बात बताना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारी सखी मंडल की दीदी है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है, और इसमें सबसे मतलब अच्छा है कि हम लोग एक कन्वर्जेंस कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक का हो, CDPO के द्वारा हो, ICDS के द्वारा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, SBM के द्वारा हो, और JSLPS के द्वारा हो, सभी लोग यहाँ 5 डिपार्टमेंट मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे साथ BDO सर का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो हम लोग को गाइड करते हैं, और उनके गाइड के अनुसार हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जल शक्ति अभियान में रैली निकलवाया है, यहाँ पे हम लोग ट्रेंच कटवाना शुरू कर दिया है, और ऐसे 2-3 गांव हैं जहाँ एक मॉडल हम लोग बना रहे हैं। लगभग हमारा एक गांव है, आरा किरम गांव है, जिसका लास्ट मंथ में प्रधानमंत्री जी भी अपनी वाणी से उस गांव का नाम लिए हैं, और उसमें जब गांव का नाम लिए हैं तो उसमें अगर काम हुआ है तो JSLPS के द्वारा बहुत ज़्यादा उस गांव को हम लोग ने बढ़ावा दिया है, और हर क्षेत्र में वहां हमारी महिला समिति भी है, हमारी VO भी है, हमारी PG भी बनी हुई है, वहाँ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी दिया गया है, और दीदी लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे ग्राम संगठन का मीटिंग करते हैं, वहाँ वन रक्षा समिति बनाया गया है। तो हर एक गांव में हम लोग काम किए हैं, जिसमें अभी जो स्वच्छता अभियान को लेकर के जहाँ भी चापाकल बने हुए हैं, तो वहाँ हम लोग छोटा छोटा बना करके उसको हम लोग काम कर रहे हैं ताकि पानी का सोखता गड्ढा बन जाए, पानी कहीं वेस्टेज ना जाए, कहीं नदी में नहीं चला जाए, क्योंकि यहाँ पे दो तीन ऐसी पहाड़ की नाले हैं जो उरमांझी से होते हुए भेड़ा नदी या दामोदर नदी में चली जाती है। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि हर

0: गांव में जहां भी चापाकल है या जहां भी आंगनबाड़ी सेंटर है और जहां पे दीदी लोग का घर है वहां पे एक छोटा छोटा डोभा टाइप का हम लोग बना रहे हैं या कंपोस्ट बना दे रहे हैं ताकि वहां सारा पानी घर का भी पानी उस सोखता गड्ढा में चला जाए ताकि हमारा जो प्रधानमंत्री का जो सोच है कि पानी को हम लोग को बचाना है तो हम लोग सभी SAG के साथ बैठ करके VO के साथ बैठ करके और हर गाँव में हम लोग ने रैली निकाला है दीदी लोग को जल शक्ति अभियान के बारे में बताया है और बताने के साथ साथ में हम लोग उनके साथ गांव में जा करके नाली साफ किए हैं रोड का साफ सफाई किए हैं जहां हम लोग को कंपीट बनाना था तो हम लोग ने कंपोस्ट भी वहां बनाया और श्रमदान सभी दीदी अभी कर रही है तो दीदी लोग भी जो है सखी मंडल के दीदी जो है बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और अच्छा भी लग रहा है कि इस तरह का प्रधानमंत्री सर का हम लोग का सोच है कि सभी जगह इस तरह का कार्यक्रम हो और हम लोग हमारे भी सोच है कि कम से कम हम जिस प्रखंड में काम करते हैं वो प्रखंड पूरी तरह से स्वच्छ हो तो इस तरह से हम लोग ने बहुत अभी काम करें और आगे भी काम करते रहेंगे।
1: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद मैडम आपका भी।
1: श्रोताओं, महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य हमारा भी है। हम अगर सशक्त होंगे तो हमारा परिवार, हमारा समाज, राज्य और पूरा देश सशक्त होगा और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हम कर सकेंगे। श्रोताओं, इस बातचीत के बाद आइए आपको लिए चलती हूँ मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

0: श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम आओ साथ चले का वक्त यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज इजाजत दें। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चले। आज चर्चा का विषय था ग्रामीण विकास में JSLPS की भूमिका और उपलब्धियां, और इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम एफएम 110.5 मेगा हर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं और अब समय हो चला है आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहर रांची का। इसे लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ हैं दोस्त उषा जायसवाल और
1: विश्वजीत पात्र।
0: हम दोनों का स्वीकार कीजिए नमस्कार जोहर। और विश्वजीत, कैसे हो?
1: मैं तो ठीक हूँ और मुझे लगता है कि आप भी बहुत अच्छी हैं।
0: देखो, अच्छे रहने की बात ये होती है ना कि अगर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है तो समझ जाओ सभी अच्छे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे लगता है कि सभी को अगर अच्छा हमें देखना है तो सबके चेहरे पर हमें मुस्कुराहट बांटनी है।
1: मुस्कुराहट से मतलब दिन बन जाता है,
0: दिन बन जाता है,
1: पता चलता है कि सामने वाले का इस समय मूड कैसा है, मिजाज कैसा है।
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर मूड अच्छा नहीं होगा ना तो मुस्कुराहट का जवाब सेम नहीं देगा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। उसमें से कुछ दूसरे उनके लव्स निकलेंगे और उसके बाद पता चल जाता है कि इनसे कैसे निपटना है।
1: हाँ, यानी कि ये तो सबसे बड़ी सवाल है ना।
0: हाँ, यानी कि
1: सामने वाला का जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको किस प्रकार से निपटना है उसके बारे में हमें जानना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इन्हें ना कभी कभी हम बोलचाल की भाषा में टेढ़े लोग बोलते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, टेढ़े लोग। आज हम लोग सुविचार में टेढ़े लोगों से कैसे निपटना है अपने आपको,
0: शांति से कैसे निपटना है, क्योंकि कुछ लोगों को प्यार की समझ में आती है, मुस्कुराहट समझ में आती है कहो तो, और वो आपकी बात समझ ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमारी बात चाहे तुम कितना भी मुस्कुराओ या तोल मूल के भी बोलो तो वो समझने को राजी ही नहीं है,
1: समझने के लिए तैयार ही नहीं रहते।
0: तो फिर उन्हें कैसे समझाना चाहिए पहले ये तो बता दो। अगर वो कोई जवाब दे तुम्हें तो फिर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए?
1: सबसे पहले तो प्रतिक्रिया देने से पहले उन्हें अपने आप को रोकना चाहिए। कभी भी उत्तर देने से पहले सोचने के लिए कुछ सेकंड का समय और उनकी प्रतिक्रिया दबाव था या गुस्से के बजाय शांत और स्थिर तरीके से सामने रखें। अगर कोई गुस्से से चिल्ला भी रहा है तो आप अपना आपा ना खोए,
0: अपने को कंट्रोल में रखें।
1: बिल्कुल, ऐसे में स्पष्ट और साथ ही साथ स्थिरता से अपनी बातें रखें।
0: और अगर हम सामने वाले के साथ में अगर गुस्सा करते हैं ना तो

0: से हमारी एनर्जी डाउन होती है,
1: हाँ।
0: है ना। तो अगर हम सुबह बहुत पॉजिटिव माइंड लेकर घर से चले हैं और अगर सामने वाला अगर चिल्लम चिल्ली कर रहा है या फिर उनका मूड खराब है, तो उसको ठीक करने के लिए तुम शांत हो जाओ,
1: बिल्कुल,
0: है ना। हाँ। और अपनी जो एनर्जी है उसे हम पहले तो बचा लिए, दूसरी बात है कि अपना मूड भी खराब होने से बच गए, और तीसरी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि या तो उनको कोई मानसिक परेशानी है या आर्थिक परेशानी हो सकती है, तभी वो गुस्सा रहा है, तुम्हारी जवाब मुस्कुराहट में नहीं दे रहा है, या तो फिर उसकी तबीयत खराब है या फिर कोई खास तनाव में वो जी रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इसलिए
1: जिंदगी में हर एक की परेशानियां अलग
0: अलग अलग
1: है, हर एक की क्वेश्चन से पेर अलग है,
0: अलग।
1: ऐसे में वो उस समय उसके लिए क्या चल रहा है उनके दिमाग में, ये सब समझना बेहद जरूरी है।
0: उसकी भावनाओं को समझो, है ना, कि वो इस समय क्या सोच रहा है। इसलिए उससे बहुत अगर एक बार गुस्सा आता है तो कहने का मतलब है कि थोड़ी देर बाद फिर उससे शांत से एक बार उनसे फिर से हालचाल पूछ लो। हो सकता है कि तब तक उसका भी मन स्थिर हो जाए, फिर तुम मुस्कुराओ नहीं, क्योंकि अगला नहीं मुस्कुरा रहा तो मत सुनो, लेकिन उनसे भाई साहब क्या हालचाल है या फिर कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है। अगर उसके दिल में घुसने की कोशिश करोगी ना, तो वो तुरंत सामने वाला बोल जाएगा कि हमारे साथ आज ऐसा हुआ है। अगर तुम्हारे पास कोई सॉल्व है तो उसे आप सामने वाले को जरूर सॉल्व दिखा देना चाहिए। अगर ये काम हम करते हैं ना, तो ये मुस्कुराहट देने वाली बात हो जाती है।
1: बस उसकी भावनाओं को समझने की जरूरत है। हाँ। और अगर आपने एक बार उनकी भावनाओं को समझ लिया, उनके दिलों के अंदर झांक लिया और उनकी मन को पढ़ लिया ना, तो मुझे लगता है कि वो भी आसानी के साथ मुस्कुरा के बात करेंगे,
0: मुस्कुरा के बात करेगा। और हो सकता है कि उसके अंदर का कोई तनाव चल रहा हो, क्योंकि आजकल ना हर छोटी बात में, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों के बीच में भी तनाव जो शब्द है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसको दूर करने के लिए अगर हमारे पास काबिलियत है, तो थोड़ा हम शांत हो जाएं और सामने वाले को भी शांत करने की कोशिश करें, हो सके तो उससे मुस्कुराहट भी देने की कोशिश करें। और अगर हमारे पास कोई उपाय है कि वो खुश हो जाए, तो उसके लिए भी हमारे पास है, वो क्या है बता दें?
1: बिल्कुल, गाना।
0: हाँ, इससे सारे तनाव खत्म हो जाते हैं।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बदलो बदलो, आदत बदलो।
6: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
5: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: विश्वजीत संदेश के बाद अपने श्रोताओं का हम फिर से स्वागत करते हैं जो हर रांची कार्यक्रम में, और हम बातें करते हैं थोड़ी मौसम की, क्योंकि मौसम की आंख मिचौली हमेशा चल रही है ना।
8: बिल्कुल, मौसम बदल रहा है तो ऐसे में मौसम की बातें हम लोग करते ही हैं। तो आज कैसा रहने वाला है इसके बारे में?
7: ये असल में हर दिन ऐसा हो रहा है ना कि अगर हम कह दें कि अभी बारिश नहीं होगी, लेकिन देखना थोड़ी देर के बाद में बारिश होने लगेगी।
8: और ये रांची की खूबसूरती है,
7: खूबसूरती है,
8: पल में मौसम बदल जाता है।
7: हाँ, और इसकी जो आंख मिचौली है ना, बस बिजली की है कि थोड़ी देर बाद देखना कितनी गर्मी है, फिर देखना ठंडी हवा चल रही है। और फिर पता चलेगा कहीं से अगर फोन लगाओ अपने आसपास क्षेत्र में, जैसे सरायकेला, जामताड़ा, खूंटी, लातेहार, कहीं भी तुम फोन लगाओगे, किसी से परिचित से बात करोगे तो बोलेंगे बारिश हो रही है। और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है।
8: बिल्कुल, अगर रांची में बारिश भी नहीं होती ना, और अगर आसपास के किसी अन्य जिलों में भी होती है, रांची में वो ठंडक
7: महसूस होती है,
8: एकदम
7: वो ठंडक लेकर आ जाती है। तो बस तो ये है हमारी रांची की बात, क्योंकि यहाँ पर मौसम के बारे में हम कम ही बात करें, बस ये देखें कि हमारे आसपास पेड़ पौधे लगे हैं कि नहीं।
8: हाँ।
7: उससे ठंडी हवा चलने लगेगी, बस हमें पता चलेगा कि मौसम सुहाना हो जाएगा। हाँ। है ना, और हमेशा मौसम के प्रति सजग रहना चाहिए। हाँ। है ना, अपने साथ में
8: मौसम के प्रति भी हमें सजग और साथ ही साथ सावधान भी रहना चाहिए। बारिश के साथ साथ वो जो गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बदलाव का भी संकेत है, तो ऐसे में अपने शरीर के लिए थोड़ा सा बेहतर रहिए।
7: और साथ में अगर बाहर का खाना से आप अवॉइड कर सकते हैं, साथ में पानी ले, छाता ले, छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मौसम सुहाने हैं तो फिर एक प्यारा सा गीत हम उन्हें सुनो।

0: विश्वजीत, मौसम की बात हम जितना करें वो कम है, क्योंकि वो हर समय बदलता है और हमें सुकून भी देता है, कभी परेशानी भी उससे होती है ना। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें सुकून भी मिलता है, कुछ सीख भी मिलती है। हाँ। जैसे कि हमारे इतिहास के पन्ने अगर पलट लो तो उसमें भी कुछ ऐसी ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो हमें कुछ नया करने को रास्ता बताती हैं।
1: बिल्कुल, हमें सीख मिलती है, इतिहास के पन्नों का पलटने का वक्त आ गया है।
0: बिल्कुल, तो चलो आज 8 जून है, आज क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ, आज ही के दिन 1936 में इंडियन स्ट्रीट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था।
0: और आज ही के दिन 1948 में एयर इंडिया ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। मालाबार प्रिंसेस नामक विमान ने मुंबई से काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन के लिए उड़ान भरी थी।
1: आज ही के दिन वर्ष 1949 में जॉर्ज ऑरवेल का प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास 1984 पहली बार प्रकाशित हुआ था।
0: और 1987 में न्यूजीलैंड ने खुद को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया था।
1: आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज हम सब मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस। महासागरों के संरक्षण और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है।
0: लेकिन इसे हम ये कहें कि हम सभी इसे मनाए हैं ना। हाँ। क्योंकि महासागर सभी की थाती है, प्रकृति की देन है, इसे हम जितना चाहें बचा सकते हैं। और इसका जब समुद्र के किनारे खड़े रहो तो इनके लहरों का जो आनंद लेते हैं ना, तो उन सभी को देखने के लिए उन्हें संरक्षण करने की पहले ज़रूरत है और उसके लिए जागरूक करने की भी ज़रूरत है। और हम ये भी बता दें कि आज
1: 1915 को आज के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक, शिक्षक, पत्रकार और किसान कैयर किन्हा रॉय का जन्म आज के दिन हुआ था। और इसके अलावा 1927 को प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक स्वामी पार्थसारथी का जन्म भी आज के दिन 8 जून को 1927 में हुआ था।
0: और 1930 में मलयालम भाषा के साहित्यकार और लेखक एम एन विजयन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और हमें ये भी बता दें कि आज के दिन 1997 में क्या हुआ था।
1: भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था आज ही के दिन।
0: और आज हम बता दें कि सन 2000 में पहली बार ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया था और इसे मनाने का एक ही लक्ष्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि मरीजों को सहयोग मिल सके और इस बीमारी से उन्हें छुटकारा मिल सके। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में भी कई लोगों को जागरूक रहने के लिए इसके शुरुआती जो दौर है उसके बारे में जानकारी दी गई, उसके लक्षणों को गंभीरता से लेने की अपील की गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि उसके लक्षण और जो जोखिम है उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। और विशेषज्ञों ने लोगों से ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूक रहने के लिए जो अपील की है उसमें यही है कि दृष्टि संबंधी समस्या होती है, चिड़चिड़ापन होता है, याददाश्त में कमी होती है, पैरों में कमजोरी, तनाव, बोलने या सुनने में परेशानी और बार बार बेहोश हो जाना, ये सभी लक्षण ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। और हमारे डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इन लक्षणों का बार बार किसी में दिख रहा है अगर शरीर में, तो उसके प्रति उन्हें सजग हो जाना है और डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी है। और इसके लिए कई तरह की थेरेपी होती है, उसका उपयोग करके स्वस्थ होने की ओर कदम बढ़ाना है। तो हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, भगवान इससे सभी को बचाए, लेकिन छोटी सी भी बीमारी जो है, जैसे कि लू लग जाते हैं अभी गर्मी में, या फिर बारिश आने वाली होती है तो गर्मी बारिश के मिलन के समय जो परेशानी होती है उससे भी बचने के लिए, या घर में अगर कुपोषण के कोई शिकार हैं या फिर नींद नहीं आती या कोई परेशानी है, किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो उनसे बचने के लिए हमें सबसे पहले जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, जागरूकता और सावधानी ही बचाव है। और ऐसे में जब भी कोई बीमारी हो या फिर बीमारी के लिए कोई भी संक्रमित क्षेत्र में आए तो ऐसे में हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो फिर आप उस बीमारी से दूर रह सकते
0: हैं, बच सकते हैं। और अगर हमें उसका कुछ ज्ञान हो तो औरों को अगर कोई परेशानी है तो उन्हें भी हम बचा सकते हैं ना।

0: और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उत्साहित रहना, खुश रहना और अपने ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए कि हम उसमें कैसे कामयाब हो सकते हैं। अगर अपने जीवन को बढ़ाना है और बीमारी से दूर रहना है तो हमें खान पान अच्छा रहना चाहिए, है ना, लोगों को भी कुपोषण से बचाना चाहिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह की परेशानी से बच सके। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमने कहा कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य बनाना आसान नहीं है, है ना, और उस पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है।
1: और निश्चित रूप से लक्ष्य बनाना तो आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्य को निर्धारित करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतनी ही मेहनत, उतने ही उत्साह के साथ आपको काम भी करना पड़ता है। लक्ष्य बनाइए और अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहतर करने के लिए थोड़े से कुछ चेंजेस कीजिए अपने डेली रूटीन में। बहुत कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कुछ बदलाव से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
0: तो इसके लिए अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दीजिए, और हम आपको एक खास ध्यान दिलवाना चाहते हैं अपने कार्यक्रम के बीच में ही कि अभी 11 बजे से हम आपको सुनवाएंगे स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूर्व उप महानिदेशक DDG ग्रेस कुजूर से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले जोहार रांची कार्यक्रम में हम आपको एक प्यारा सा गीत और सुनवाते हैं।

0: और अब श्रोताओं, हम चलते चलते बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में जिद की एक गांठ अगर छूट जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं, और बहुत से रिश्ते प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। और इसी प्यारे से सुविचार के साथ आज दीजिए अपने दोस्त उषा जायसवाल और
1: विश्वजीत
0: को इजाज़त। नमस्कार,
1: जोहार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए हम आपको बता दें कि अभी आप सुनेंगे स्वर यात्रा के 90 वर्ष पूर्व उप महानिदेशक डीडीजी ग्रेस कुजूर से मीनाक्षी शर्मा की बातचीत।

0: हवा के पंखों पर सवार होकर जो दिल तक पहुंचती है, ये केवल आवाज नहीं, ये भारत की धड़कन आकाशवाणी है। स्वर यात्रा के 90 वर्ष आकाशवाणी के इस अविस्मरणीय यात्रा के उत्सव में हम हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपकी दोस्त मीनाक्षी आपके साथ हूँ। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के रूप में प्रारंभ हुई आकाशवाणी की ये यात्रा 90 वर्षों के स्वर्णिम पड़ाव पर है। देश की तकरीबन 98% आबादी तक अपनी पहुंच रखने वाली आकाशवाणी ने जहां संगीत, समाचार, साक्षात्कार और जानकारियों को जन जन तक पहुंचाया है, वहीं हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने का बेहद शानदार काम किया है। दिलों को दिलों से जोड़ती आकाशवाणी और आकाशवाणी को सजाने संवारने वाले, आकाशवाणी को बहुत बेहतर बनाने वाले वो तमाम लोग जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के बहुत अहम साल दिए आकाशवाणी को, हम साक्षात्कारों की श्रृंखला में वैसी ही शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं वर्षों तक आकाशवाणी के कई स्टेशन पे अपना योगदान देने वाली आकाशवाणी रांची केंद्र में केंद्र निदेशक से लेकर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में DDG के पद को सुशोभित करने वाली ग्रेस कुजूर मैडम हमारे बीच हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो यात्रा का एक आप अभिन्न अंग रही हैं, उस यात्रा के स्वर्णिम पड़ाव पर, आकाशवाणी के स्वर्णिम पड़ाव पर आपके अपने स्टूडियो में आपको पाकर हम बहुत खुश हैं। मैम, बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, और आप लोगों ने जब याद किया मुझे तो खुशी हुई जरूर बहुत कि मुझे अवसर मिलेगा अपने पुराने स्टूडियो में आके माइक्रोफोन पर बात करते हुए अपने श्रोताओं के साथ भी। सभी को नमस्कार करती हूँ और बधाई देती हूँ इस स्वर्णिम काल में सभी को कि हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पहले ऐसा होता था कि माइक्रोफोन देखते मेरी कंठा सूख जाती थी कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लेकिन जब मैं चयनित होकर के पहली बार जब मेरा रिजल्ट निकला UPSC से, तो पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बाद में
0: किसी के माध्यम से आपको पता चला?
1: हाँ, पता चला जी। तब खुशी हुई। उस समय मैं स्कूल में शिक्षिका का काम कर रही थी, ट्रेनिंग स्कूल में।

0: टीचरों को उनके प्रशिक्षण कर रही थी
1: जी।
0: तो फिर उसके बाद मैंने प्रिंसिपल को कहा मुझे तो छोड़ना पड़ेगा, तो वो भी उदास हो गए कि नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे, तो ब्रदर मुझको तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि जाना है वहाँ ज्वाइन करना है।
1: बिल्कुल,
0: ये मेरी पहली नौकरी होगी। और तब पड़ोस के लोगों को भी पता चला कि आकाशवाणी में उनका चयन हो गया है, कुछ तो खुशी हुए। लेकिन मेरी मौसी ने तपाक से कहा हाँ आकाशवाणी में काम करेगी, मर्दों के बीच में काम करेगी।
1: तो आपका क्या रिएक्शन था मैम जब लोग इस तरह से आपसे कह रहे थे कि आकाशवाणी में काम करोगी, क्या काम करोगी, उस समय आपका क्या रिएक्शन था?
0: तो मैंने कहा कि नहीं मौसी, मैं तो ये इस तरह से प्रोग्राम का कार्यक्रम बनाना होगा और कैसे आकाशवाणी में कैसे प्रोग्राम भेजे जाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब करेंगे। मुझे रोज रोज बोलना थोड़ा ही है, किसी किसी दिन बोलूंगी, क्योंकि उनके घर में रेडियो था, उसमें बड़ा वाला रेडियो,
1: और वो सारे
0: शौक शौक से सुना करती थी, हवा महल तो क्या इस तरह से
1: कई
0: कार्यक्रम होते थे, तो उसको सुनते सुनते भी अच्छा लगता था कि रेडियो काश मेरे घर में भी होता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाले दिनों में मैं रेडियो के लिए ही काम करूंगी और मुझे लोग सुनेंगे।
1: कितनी बड़ी बात। मैम ये बताइए, जब पहला कदम आपने आकाशवाणी में रखा, आपकी नौकरी जो पहली नौकरी हुई और पहली बार नियुक्ति पत्र मिलने के बाद जब आपने कदम रखा, तो आपके हृदय में क्या था उस समय, वो रोमांच आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं से साझा कीजिए।
0: वो था कि यहाँ समय एकीकृत बिहार था ना
1: जी,
0: पटना, रांची, भागलपुर, जमशेदपुर, ये सब था। जमशेदपुर बाद में आया और भागलपुर छोटा स्टेशन था, बाद में वो बड़ा हुआ। लेकिन मेरी पहली नियुक्ति हुई भागलपुर के लिए एज ए प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, यहाँ रांची से दूर। उस समय शादी हुई थी जनवरी में और फरवरी में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो बोली कि अब कैसे ये जमशेदपुर में रहेंगे, मैं रहूँगी भागलपुर में। तो कहा कि नौकरी करना है, तो बोले हाँ नौकरी करना है, देखें। तो फिर हम लोग पहले भागलपुर गए
1: जी,
0: पहली बार हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर ले करके।
1: बहुत खुशी हो रही होगी मुझे लगता है।
0: हाँ कैसा है क्या है, क्योंकि रेडियो से मैं जुड़ी हुई थी
1: जी,
0: प्रोग्राम करती थी हमारी दुनिया में रूप में। उस समय के हमारे मांझी दादा थे, उन्होंने मुझे रेडियो में लाया, तो मेरे देखते देखते कि कैसा लिखती है क्या करती है, तो मुझे प्रोत्साहित किया। तो धीरे धीरे मैं अपने फॉर्म भरा, फॉर्म जो मिला था ना मुझे वहाँ से यूपीएससी से नहीं मिला था, यहाँ किसी एक क्लर्क थे जो कॉपी टाइप करके उसका बेच रहे थे,
1: तो उन्हीं से आपको मिला।
0: हाँ, तो खबर गई कि यहाँ पर तुम आओ और फॉर्म भरो यूपीएससी का। तो मैं जो फॉर्म था कहाँ से मिलेगा, तो वो बोला कि मेरे पास है, पांचवी कॉपी है इसलिए मैं 5 रुपया लूंगा, तो लो 5 रुपया लो। और बहुत फेंट था, अक्षर वगैरह
1: क्लियर नहीं थे,
0: ज्यादा इम्प्रेस नहीं था, उसी में मैं भर के भेज दी। हमने कहा कि यह तो 5वीं कॉपी है, पता नहीं इतना रद्दी सा कौन बुलाएगा,
1: लेकिन आपकी किस्मत में था।
0: लेकिन
1: और आकाशवाणी की किस्मत में आपकी सेवाएं थी और आपकी किस्मत में आकाशवाणी से जुड़ना लिखा था।
0: लंबी कहानी है इस तरह से मेरे आना और मुझे यहाँ से, तो भागलपुर गई। तो ट्रेन से उतरे हम लोग दोनों जन, तो मेरे पति ने एक रिक्शा वाले को पूछा, उनके मित्र थे एक
1: भागलपुर
0: में
1: जी,
0: वो जेलर थे, तो उसको पूछा रिक्शे वाले को, रिक्शा वाला हाँ साहब जेल चलोगे, कहता
1: मुझे वो घबरा गया होगा कि मुझे जेल क्यों ले जा रहे।
0: तो ये बात हुई, तो बोले कि नहीं जेल का जेलर साहब के यहाँ जाना है इतने क्वार्टर में, वो ले गए हाँ चलूंगा।
1: मतलब हंसी खुशी के साथ आपकी शुरुआत हुई आकाशवाणी का, जो पहला कदम आपने रखा वो बहुत हंसी खुशी
0: के साथ। तो वहाँ गए, तो फिर उनके मित्र से मुलाकात हुई, जेलर साहब थे वहाँ भागलपुर जेल के, एक दिन रहे। फिर उसके बाद दूसरा दिन आकाशवाणी ढूंढते कहा है क्या, और एकदम बिल्कुल भागलपुर शहर से एकदम 5 किलोमीटर दूर
1: किनारे हटके था।
0: हाँ, तो वहाँ गई, फिर उसके बाद में फॉर्म और भरा, सब देखा, सब ये किया,
1: उसके बाद औपचारिकताएं थी वो
0: पूरी की। फिर 2-3 दिन के बाद वो लौट गए जमशेदपुर, मैं रह गई। फिर वहाँ से शुरू किया आराम से, और सभी लोगों ने देखा कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आई है नई, दूसरे में था एक तो बंगाली दादा थे वो, तो फिर उन्हीं के साथ मैंने सब कुछ सीखना आरम्भ किया
1: जी।
0: और वहाँ पर आदर के साथ लेना।

0: चाहूंगी नाम डॉक्टर गंगेश गुंजन जी, तब फिर उनके साथ में सब परिचय हुआ, तब फिर वहां से मैंने अपने यात्रा
1: शुरू की। लंबी यात्रा रही मैम, और कितनी सुखद रही, कैसी रही आपकी ये यात्रा? हमारे श्रोता जरूर इस रोमांचकारी क्षणों को जीना चाहेंगे और आपसे सुनना चाहेंगे, थोड़ा शेयर कीजिए मैम।
0: तो भागलपुर में रोज दिन 5 किलोमीटर जाना, ऑफिस की गाड़ी होती थी एक पे मिलते थे जो लोग जिधर जिधर ये साथ जाते थे और सब इकट्ठे लौटते थे। फिर ये हुआ कि छुट्टियां कैसे मिलेंगी, कितना दिन की छुट्टी मिलेगी, ये सब करते करते अप्रैल फरवरी में ज्वाइन किया। अप्रैल में मुझे दिल्ली जाना पड़ा ट्रेनिंग के कैंप के लिए। तो वहाँ 30 दिनों का ट्रेनिंग कैंप चला हम लोगों का, पहला सब जगह घुमाया वहाँ यहाँ के डायरेक्टरेट ने, और काफ़ी लोगों से आपस में बातचीत होती रही। तो फिर खुलना धीरे धीरे हुआ और फिर मैं आकर के यहाँ भागलपुर आ गई। फिर हुआ कि मुझे वहाँ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, फैमिली वे में आ गई, तो फैमिली वे में छुट्टी लेनी पड़ी, तो मैं आ गई फिर जमशेदपुर, फिर वहाँ बेबी के साथ में फिर यात्रा शुरू हुई। चलो हम लोग जाएंगे भागलपुर, फिर वहाँ गई। फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम सब होने लगा घर में, छोटे बच्चे को देखना,
1: पूरी जिम्मेदारी
0: माँ नौकरी में होते हुए थोड़ा उसका ये करके कुछ दिनों के लिए वो भी छुट्टी लेके साथ रही। और फिर उसके बाद वो चलने आने के बाद में कोई कोई साथ मेरे साथ रहा, फिर हमने कहा कि नहीं मेरा ट्रांसफर करा दो रांची, इस सब बनाया सब ये किया और तुरंत मेरा ट्रांसफर भी यहाँ हो गया,
1: रांची हो गया। काफी लंबे समय तक आप रांची में रही और केंद्र निदेशक के रूप में हमारे अभिभावक के रूप में रही मैम, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जब आप यहाँ केंद्र निदेशक थे उस समय मैंने एक कैजुअल अनाउंसर के रूप में यहाँ पर काम किया है। और मुझे अभी भी याद आता है मैम कि जब कार्यक्रम चलता होता था आप अचानक अपने कमरे से निकल कर यहाँ तक आ जाती थी, और अगर हमारी गलतियाँ या हमसे कुछ अच्छा होता था तो आप उसकी तारीफ भी करती थी, और गलती होती थी तुरंत उसे बताती थी अरे आज तुमने ऐसा किया। तो ये चीजें जो एक अभिभावक या अपनापन जो था ना मैम, वो आज भी हम बहुत सारे कैजुअल्स को याद होगा। तो ये जो लगाव दिखाता है कि आप आकाशवाणी से ही नहीं बल्कि इसके कार्यक्रमों से कितनी जुड़ी हुई थी मैम, ऐसा कोई वाकया जो आपको आज भी याद आता है और अचानक कभी आप अकेली बैठी हो, कभी अपने घर में बैठी हो तो आपको अचानक याद आता है कि अरे जब मैं आकाशवाणी रांची में थी तो कुछ ऐसा हुआ था मैम, ऐसा वाकया कोई साझा कीजिए आप हमसे।
0: शुरू करूंगी तो शुरू में मैं अपने घर से मायके से ही आती जाती थी इटकी मोड़ में, वहाँ पर माता पिता और हम सभी भाई बहन रहते थे, तो छोटे बच्चे को भी लेकर के वहाँ रहते थे। मेरी बेटी थी छोटी सी मधु पामेला
1: जी,
0: तो माँ भी उस समय नौकरी में ही थी और पिताजी भी नौकरी में थे, तो छोटे भाई बहन उनको संभालते थे, जब तक जाती थी तब तक तो वो खुश रहती थी, वो उसको चिंता नहीं थी मम्मी कहाँ है,
1: परिवार का पूरा सहयोग,
0: मामा मौसी सबसे वो खुश रहती थी, इसलिए मुझे भी चिंता नहीं होती थी। लेकिन कभी कभी अचानक मुझको याद किया अरे ये प्रोग्राम मैंने दिया कि नहीं दिया, बीच रास्ते से गाड़ी रोक के उतर के वापस आती थी और कंफर्म करती थी कि मेरा प्रोग्राम टेप आया कि नहीं मैडम आ गया है, तब मैं फिर जाती थी।
1: मतलब इस चीज से आप आश्वस्त नहीं होती थी कि हाँ दे ही दिया होगा, आप उसे कंफर्म करने के लिए वापस
0: आई और सब देने के बाद में तसल्ली की कि हाँ सब ठीक ठाक है, फिर मैं वापस गई।
1: क्या बात है,
0: धीरे धीरे अनुभव होता गया
1: बिल्कुल
0: कैसे करना है क्या करना है। उस समय टेप हुआ करता था
1: जी,
0: ना,
1: स्पूल
0: जाते हैं उसमें प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हुआ करता था, और प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करते समय हर चीज को ध्यान से देखना पड़ता था, कहीं पर बीच में वार्ताकार ने या तो कोई कहानी ने कोई फंबल किया या तो उसको कोई काट के निकालना है,
1: मुश्किल होता था, बहुत
0: मुश्किल होता था, ने को से जो होता था ना बहुत मुश्किल होता था निकालने के लिए, लेकिन मेरे सहयोगी जो होते थे ना
1: जी
0: तो मुझसे कराते थे, उसी तरह जोड़ दिया कोई एकदम बिल्कुल
1: पता ही नहीं चला
0: कि क्या,
1: बिल्कुल स्मूथ प्रवाह हो जाता था।
0: तो वो मैंने सीखा और उसको करना शुरू किया। उस समय तो ऐसा नहीं होता था कि वो
1: कंप्यूटर पे जैसे रिकॉर्डिंग हो रही है
0: सामने कंप्यूटर तो उस समय था ही नहीं था
1: जी।
0: तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते प्रोग्राम विजन एक आना चाहिए कि मैं क्या प्रोग्राम करूं।
1: बिल्कुल।
0: और स्टेशन डायरेक्टर थे ग्रीस, ये करो ये प्रोग्राम तुमको दे रहे हैं, एक रनर। धीरे धीरे करते जैसे हिंदी वार्ता का एक अलग ऑफिसर उसको देखते थे, हिंदी वार्ता देख रहे हैं ये कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वो दिया। मैंने चुन चुन के जितना मतलब कि उसके

0: तो लोग सुनते थे, चूंकि मैं उसमें हिंदी वार्ता देखती थी, कहानी कविता और लेख और उसके बाद में और दूसरी दूसरी कविताओं
1: इसलिए चिट्ठियों का पूरा बड़ा पुलिंदा सबसे बड़ा आप ही के पास हुआ करता था। मैं
0: आते थे आते थे, उनको बुला करके यहाँ कवि गोष्ठी कराती थी, कहानी सुन ये करके फिर उसकी समीक्षा भी कराती थी। तो ये सब आप किस तरह से सोचते हैं प्रोग्राम, जो कि नहीं देख रहा है वो सुन कैसे रहा होगा, उसको विजुअलाइज करने के लिए कई तरह के उपाय रचने पड़ते थे शब्दों का।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से काफी अच्छा प्रोग्राम होता था। मार्क भी वो अच्छा होता था कि आपका तो कभी गलती नहीं होता है, कभी गलत होता होगा लेकिन कोई किसी को अंदाजा नहीं होता होगा, यही मैं कहता हूँ। बनाओ, अच्छा से जियो, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज है जो
1: बस रेडियो साथ में
0: एकदम
1: सशक्त
0: सुनना, क्योंकि एक चीज बोलते हैं ना अनसुना कर देते हैं ना, लेकिन जब रेडियो बजता है कान में
1: वो अपने आप ही चली, और कान से वो हृदय तक वो चीजें चली जाती हैं। अगर चीज अच्छी हो श्रोताओं, तो यकीन मानिए कि सिर्फ आप कान से सुनते नहीं, भले ये विजुअल मीडिया नहीं है, लेकिन ये ऑडियो जो बातें होती हैं वो हृदय तक चली जाती है और वर्षों तक बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम जो प्रार्थना करते हैं ना
1: जी,
0: प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमको ये वो है मेरी तकलीफ दूर करो, तो दिख तो नहीं रहा है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हम समझ रहे हैं कि वो सुख रहा है।
1: क्या बात है, अपने काम को अगर आपने ईश्वर मान लिया और उसके प्रति समर्पण किया तो अच्छी चीजें ही आएंगी,
0: अच्छी चीजें आएंगी। तो इसलिए कभी भी तकलीफ होती है या नहीं होता है, सबको उसको समेट करके चलना पड़ता है। और चूंकि मैं शेड्यूल बनाती थी
1: जी,
0: तीन तीन ये क्या कहते हैं महीने के लिए
1: जी,
0: तो देखती थी कि उस महीने में क्या होगा, क्या हो सकता है, उसकी संभावना को लेकर के ही शेड्यूल बनाना
1: बिल्कुल
0: करती थी। तो उससे मुझे आसानी होती थी और थोड़ा बड़ा बनाती थी ताकि जो छूट गया उसको अगले फिर ले आऊंगी।
1: बिल्कुल, तो मैम भागलपुर से आपकी यात्रा शुरू होती है आकाशवाणी की, और फिर आप रांची आती हैं, कई स्टेशन में जाती हैं, और फिर आप दिल्ली जाती हैं जो कि मुख्यालय है, डीडीजी के पद से आप सेवानिवृत्त होती हैं एक लंबा, तो वहां जो है जो आप एक उच्च पद पे चली गई हैं वहां पर, तो वहां आपकी जवाबदेही कैसी रही और वहां पर आपने आकाशवाणी को एज ए होल कैसे देखा, इसको संवारने के कौन से उपाय आपने किए?
0: तो एक चीज मैं कहूंगी कि ये सब चीजें जो होती है ना, कभी कभी तो इंट्यूशन होता है,
1: बिल्कुल,
0: कभी कभी आपको लगता है कि ऐस काश ऐसा होता है ना, लेकिन मेरे सामने जो भी आया, जो लाइन आई, मैंने उसको शिद्दत के साथ या तो पढ़ना शुरू किया या जानना शुरू किया,
1: बिल्कुल,
0: या ईमानदारी, ये नहीं कि ये किया वो किया, ऑफिस में लेट से आ रहे हैं, ऑफिस से जा रहे हैं, या खाना पीना कर रहे हैं, वो सब चीज़ नहीं, अपने समय में काम में रखो
1: जी।
0: और मैं और एक चीज़ को बताऊंगी कि जब दिमाग में मैंने सोचा कि वोट देने का अधिकार
1: जी
0: किनको किनको, फिर मैंने ये लंबी बहस रेडियो में ये की कि मैं 18 साल का हो गया हूँ, जब मेरी शादी के लिए निर्णय ले सकता हूँ तो वोट देने के लिए निर्णय कैसे
1: क्यों
0: नहीं
1: ले
0: सकता,
1: बिल्कुल,
0: इस ये को
1: ये मुहिम में
0: वो ये किया
1: जी,
0: डिस्कशन किया, तो बहुत सारी चिट्ठियां आई कि बहुत लोग अप्रिशिएट किए कि हाँ जब 18 साल में शादी करके अब परिवार बसा सकता है तो वोट क्यों नहीं सकता है, चुन सकता है, और बाद में जा करके ये 18 साल सरकार की तरफ से
1: अच्छा
0: हो गई,
1: तो आपने उठाया
0: तो
1: था
0: वो, मैं बहुत पहले उसको सोची, तो
1: मतलब जन जन की आवाज बनी, सरकार का भी ध्यान इस ओर गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैम एक जमाना था जब आपने बताया कि स्कूल पे रिकॉर्डिंग होती थी, टेप हुआ करता था, ये सब था, अब डिजिटल युग आ गया है, अब हम विश्व के किसी भी कोने में बैठकर आकाशवाणी को सुन सकते हैं, हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया। मैम वो अंतर आपको कैसा लगता है, कहाँ आप देखती हैं इस समय आकाशवाणी को, आप कहाँ?
0: तो ये समय के साथ साथ सबको चलना पड़ता
1: जी।
0: है, अगर हम समय के साथ ना चलें पीछे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अब सुनने की ही प्रक्रिया समझिए ना, पहले हम आकाशवाणी को रेडियो लगा के ट्रांजिस्टर लगा के सुनते जाते थे।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: एक किसान बैल हल जोत रहा है ना, ट्रांजिस्टर को टांगे रहता था अपना और गाना सुनते रहता था और ये चलाता,
1: समाचार भी आते रहते थे उसी में,
0: और जिसके पास ट्रांजिस्टर होता था रात बच्चे लोग शाम को ये हमारी दुनिया सुनने के लिए या तो कुछ हमारी दुनिया विशेषकर सुनने के लिए मजमा लगाए हुए रहते थे लोग। तो इस तरह से धीरे धीरे धीरे उत्तर बढ़ते गया। हाँ, तब फिर उसके बाद में जब विविध भारती ने लोगों को जन जन तक पहुंचा के चिट्ठियां बनाकर जोड़ने का काम किया
1: बिल्कुल। और विविध भारती के गाने गुनगुनाए जाते थे तो लोग भी गुनगुनाने लगे।

0: करते थे, ऐसा असर विभिन्न
1: विधि में होता बिल्कुल। और उसके बाद चिट्ठियां आती थी ना, पढ़ा जाता था कहाँ से। और ये चिट्ठियां जो है ना, और सुनने वालों के, ये झुमरी तिलैया को ना, ये पोस्टकार्ड नहीं, वो उसका किया अमीन सयानी के साथ एक बार मिले थे, तो आप झुमरी तिलैया से, ना ना ना झुमरी तिलैया से नहीं आई हूँ, झुमरी तिलैया से तो हमारे श्रोता गण आते हैं
0: सही में। और तो लोग पोस्टकार्ड में बकायदे छपा के रखते थे, छाप के रखते थे
1: स्टैंप लगा
0: रहता था।
1: और एक मजे की बात बताऊंगी आप, आर के प्रसाद जी हमारे ये उस समय यहाँ केंद्र निदेशक थे, चूंकि मैं उनको जानती थी पटना से, तो इसलिए ये थे, तो मैं हिंदी वार्ता देख रही थी। उसके बाद में वो क्या हुआ था कि गाना बजाना और सब ये करने में ना, एक ये आया, बोला कि मेरा मेरी बेटी का नाम बार बार उसमें आता है, इसे को बंद करना चाहिए,
0: फरमाइश वाले में
1: मेरी बेटी का नाम आता है। तो बोले कि आकाशवाणी क्या करेगा,
0: हाँ।
1: वो तो पत्र लिखने वाला लिखते हैं, सब ये आती है। तो फिर उसके बाद एक दो महीने के बाद ना वो व्यक्ति फिर आया शादी का कार्ड लेके, सर आपका रेडियो ने मेरा बेटी को विवाह जोड़ दिया।
0: क्या तो, यही तो आकाशवाणी की खासियत है मैम, कि इसने लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम किया। और ये आपने बहुत अच्छी बात बताई थी, विवाह के संबंध भी आकाशवाणी के माध्यम से
1: हुए हैं कि मेरी बेटी का विवाह के लिए निमंत्रण देने आया, तो हम लोग बहुत
0: खुशी हुई होगी।
1: अब इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो याद आती हैं, तो आज आपसे बात करके ये सब आ रहे हैं मेरे दिमाग में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सभी उसके बाद धीरे धीरे यहाँ रहने के बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भागलपुर से ट्रांसफर होकर आई थी
0: जी।
1: उसके बाद में इस साल के बाद में मेरा प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया और फिर जो पोस्टिंग मिली फिर भागलपुर मिली। तो बोले कि अरे भागलपुर फिर मिल गया, सब ये हो गया, ये तो पोस्टिंग फिर चलो अभी तो, बोले कि तो हायर पोस्ट में गई हो वहाँ। हाँ, तो पहला एक एएसडी था, दादा बोलते हम लोग बंगाली थे, और उन्होंने बहुत साथ दिया। और वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे हमारे डॉक्टर गंगेश गुंजन जी थे
0: जी।
1: तो वो भी थे, तो इस तरह से धीरे धीरे धीरे धीरे सब चीज़ होते गए।
0: मैम आपकी यात्रा का वृतांत सुन के, आकाशवाणी के माध्यम से जो आपकी यात्रा हुई उसे मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर किसी काम को हम बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करें और बहुत सहजता के साथ बहुत डूब के करने की कोशिश करें तो सहायता के लिए बहुत सारे हाथ आ जाते हैं।
1: बहुत आते हैं आपको, उनका सहयोग भी मिलेगा
0: जी जी।
1: उनकी सोच को भी आप समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सब चीज है कि समय रहते हैं। एक बार मुझे याद है प्रदूषण को लेकर के
0: जी,
1: प्रदूषण को लेकर के उसमें बहुत चल रहा था कि क्या प्रदूषण, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने प्रदूषण का एक लंबा ये लगाया, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्राद प्रदूषण, उसके बाद में समाज में भी जो प्रदूषण होते हैं उसके भी उस तरह से ये चलाया। उससे बड़ी बहुत मतलब लोगों को लिखने का, और बहुत दूर दूर से आते थे हमारे टॉकर्स वगैरह, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह, ये सब आते थे। और एक लंबा लोगों का
0: मतलब बदलाव, अच्छे बदलाव के लिए भी। मैम इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे अनुभव आपके हैं,
1: खत्म नहीं होगा
0: मैम। लेकिन अभी जब हम आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा का उत्सव मना रहे हैं मैम, इस समय आपको, मुझे लगता है कि हजारों लोग आपको सुनेंगे आकाशवाणी के माध्यम से, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, आपके हृदय की बात आप उन तक पहुंचाइए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैम।
1: एक चीज है ना
0: जी,
1: आकाशवाणी तो इतना सुंदर नाम है कि साक्षात देव देवताओं की जो आकाशवाणी होती थी वो सब जहन में आता है, या तो होता था पहले, लेकिन जब ये आकाशवाणी नाम दिया गया है ना, उसकी भी अपनी एक चर्चा है, लेकिन अब उसको हम अभी के समय में बात करेंगे तो लोग आकाशवाणी को कौन सुनता है कहता है, लोग सुनता कौन है
0: जी।
1: हाँ, तो जो सुनता नहीं है इसीलिए तो हमारे जीवन नहीं चलता है।
0: बिल्कुल, हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं,
1: क्योंकि इसको सुनना होता है, दूरदर्शन को देखना होता है, है ना,
0: बिल्कुल।
1: तो ये जब बच्चों को भी कहते हैं बात नहीं सुनती है, वो बात नहीं सुनता है, आप नहीं सुनते हो जी, आप नहीं करती हो जी, ये सब होता है। लेकिन सुनना, ईश्वर ने जिनको कान दिए वो कितना भाग्यशाली है।
0: बिल्कुल।

0: बेचारे नहीं सुन सकते हैं,
1: हाँ।
0: वो क्या काम करेंगे, हमको क्या काम करना है, ये सब है। तो ये सब बहुत जो हमारी इंद्रियां हैं, देखने सुनने सोचने और सुनने की जो है, तो ईश्वर का दिया हुआ ये स्वरूप है। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम ईश्वर के बनाए हुए हैं। तो इस तरह से हर काम को भी दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं हम लोग, जब अब ईश्वर के स्वरूप का अपने ऊपर ग्रहण करते हैं तो हम जो प्रोग्राम जो तैयार करते हैं उसी सोच से सुनना चाहिए कि वो जिनके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ क्या उसकी भलाई के लिए है या मनोरंजन के लिए है। दोनों चीज है, दोनों चीज को समानांतर ले करके चलिए। और चूंकि हिंदी वार्ता देखती थी तो उसमें कुछ गंभीर विषय भी आते थे, सभी आते थे, लेकिन मैंने दूर सोचने का समय सुना कि क्या हो कि हम लोगों को जब 18 साल की उम्र में शादी कर सकते हैं तो 18 साल में क्यों नहीं
1: जी
0: वोट दे सकते हैं
1: जी।
0: तो वो चीज लागू हुआ, ये मुझे लगा कि मेरी सोच अच्छी थी।
1: बिल्कुल अच्छी सोच से अच्छी चीजें आती
0: रहती हैं। और उसके बाद में कि जो चीजें हम करने वाले हैं या कर रहे हैं उसको अपने दिमाग से सोच करके चलना पड़ता है। अपने आप को ही नहीं देखना है, समाज को देखो।
1: बिल्कुल,
0: समाज को देखो, आने जाने वाले को देखो, एक छोटे बच्चे को देखो, स्टूडेंट को देखो, अपनी लाइफ को देखो। उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको शेड्यूल बनाने में काम देती हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो पहले से इस तरह से करके योजनाबद्ध तरीके से आप चलेंगे ना तो कभी कहीं भी फेल्योर नहीं है। समय से आप काम करिए और अच्छा पढ़ना भी चाहिए, पेपर में क्या आ रहा है, क्या अच्छी किताबें हैं, सब ये देख करके। तो इस तरह करके बहुत सारी चीजें हैं मीनाक्षी जी, कभी फुर्सत मिले तो आप कभी बात करेंगे तो मैं दाना दाना बताऊंगी मैं आपको।
1: बिल्कुल, और हम भी सुनना चाहते हैं मैम। श्रोताओं, बहुत अच्छी बातचीत रही और ये जो एक बड़ी शख्सियत को चंद मिनटों में समेटना, उनके विचारों को, उनके अनुभवों को, बहुत मुश्किल लग रहा है ग्रेस मैम, लेकिन समय की बाध्यता है। हम आपसे ऑफ माइक्रोफोन भी बात करेंगे, लेकिन इस समय आपने जो अपने अनुभवों को साझा किया और सबसे बड़ी बात कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आप यहाँ तक आए, ये जो खुशी है हमारे लिए, इसके लिए शायद शब्द कम पड़ जा रहे हैं, फिर भी शब्द आभार के हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे स्टूडियो तक आने के लिए और अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद मीनाक्षी, और सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत का बहुत बहुत आभार जो जिन्होंने मुझे सुना। सुनाने के लिए तो बहुत है
1: जी,
0: आप लोग बुलाइए तो मैं आऊंगी
1: जरूर।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वर यात्रा के 90 वर्ष। आज हमारे साथ थी पूर्व उप महानिदेशक DDG ग्रेस कुजूर जी, इनसे बातें कर रही थी मीनाक्षी शर्मा, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद का ये प्रोग्राम, आपकी पसंद। आप अपने फरमाइशी गीतों को इस कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी। और अब लीजिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। सबसे पहले आइए हम आपको आपकी पसंद पर एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं। इसे आवाज दी है किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है बुड्ढा मिल गया। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आर डी वर्मन। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चिपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साविया ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार, प्रभात कुमार, जीतेश, आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका। आप सभी श्रोता हैं तेनूहाट बोकारो से भगवान प्रसाद ठाकुर और पूरे परिवार के सदस्यगण, बड़ोदरा गुजरात से मौलिक पाटिल और उनके मम्मी पापा, इंदौर से प्रांजलि त्रिषा और उनके पापा, बेंगलोर से श्रेया श्री सुनीता और उनके सभी साथीगण।

श्रोताओं, आप ही के पसंद पर अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं कुदरत फिल्म का। इसमें भी आवाज है किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा है और धुन बनाई है आरटी बर्मन ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता है बाबा बैजनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद और रोशनी केसरी, ग्राम पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी पसंद के गीत, कार्यक्रम है आपके गीत। लीजिए अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं, हेमंत कुमार का संगीत किया हुआ और गुलजार का लिखा ये गीत, खामोशी फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, मोहित रोहित और इनके साथी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है श्री 420। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की। इस गीत को सुनना चाहते हैं नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, गौरी शंकर शंभू केसरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, पंकज और रोहन केसरी।

श्रोताओं, आपके पसंद कार्यक्रम में ये अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और मुकेश की ही आवाज में पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत है। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत की फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। पुराना तालाब डुबराव से वल्ली उल्ला अंसारी और आसमानाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर आदिभा। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून और गुलफराज भागलपुरी।

आपके पसंद कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं। इसे हमने लिया है खानदान फिल्म से। गीतकार हैं नक्स लायलपुरी और संगीतकार हैं खयाम। आवाज़ स्वर कोकिला लता मंगेशकर की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राहे महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, इंदिरा बिहार रायगढ़ से, अकरम नूर जहां, डब्लू नूर जहां, सईद वसीम वली उल्लाह नूर जहां, राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ इमरान इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का आपकी पसंद कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब इस समय वक्त हो चला है अपनी बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। आज आप सुनेंगे इसे नागपुरी भाषा में और इसे प्रस्तुत करेंगी सुमन तिवारी।

ग्रीन लेक्चरी कार्यक्रम सुनोइया सब श्रोता बहन मन के सुमन बहन बटले जोहार आसरा करीला हमरे कर सब सुनोइया बहन मने नगद नगद हो गए और स्वस्थ हो गए स्वस्थ आनंद और बेस रह हैं सब कुछ बेस बुझाएला है नहीं काले हमरे जे महिला मन ही हमरे ऊपर तो घर कर सभी जिम्मेवारी है चाहे कहो कि अगर घर में परिवार है छोट बाल बच्चा है अगर कोई घर में बड़ बुजुर्ग हैं उमनक कहूँ चाहे घर कर कौन में काम है तो वो सब हमरे कर महिला बहन मन उप रही है कहूँ कि हमरे कह सकेला कि नारी जो हो ना से मन घर कर थूरी हो ना और ई मन उपरे घर कर सब जिम्मेवारी होवेला और सब के निभाए बेस्तरी ई हमरे कर बहुत जरूरी भी है काले कि अगर हमरे बेस से नहीं रहब अपन स्वास्थ्य कर ध्यान नहीं रखब और हर काम के बेस से नहीं निभा तो आगे हमरे कर समाज कर ले भी जरूरी है ये सब और अगर घर में बड़ बुजुर्ग हैं तो हमरे ये भी कह सकेले कि उमन कर ध्यान रखे में हमरे के सबसे बगरा समय देवे खेला और जो बुजुर्ग हो ना वो हमरे कर समाज कर कहो कि अमूल्य धरोहर हक है काले की ई मन से हमरे अपन जीवन कर अनुभव भेलक चाहे जे भी ज्ञान है और नैतिक मूल्य कर ई मन जगन भंडार रहेला ई मन जे है हमरे कर जे आवे वाला अगर घर में कोई छोट छोड़ा मन है युवा पीढ़ी है बाल बच्चा है उ मन के भी सही मार्गदर्शन देवेना और जे भी मुश्किल परिस्थिति होवेला उकर में हौसला बढ़ाएना और परिवार में अपन जे जड़ है जेके जोड़ के एक संगे राखे में भी हमरे कर मदद करेना समाज और परिवार में बुजुर्ग कर महत्वपूर्ण भूमिका रहेला ई मन कर बिना हमरे कर समाज में हमरे रहल तो रहल आदमी लेकिन जे ई मन जगन असली ज्ञान और अनुभव कर जे खजाना है ई मन जगन ई जीवन कर सफलता और सफलता कर एक लंबा अनुभव रहेला ई मन जगन जे कि कोई किताब में हमरे के नहीं भेटी और जे भी सीख है वो युवा पीढ़ी के सही फैसला लेवे में भी ई मन कर जे ज्ञान है अनुभव है इकर से मदद मिलेला संगे संगे हमरे देखेला कि संस्कार और संस्कृति कर संवाहक भी हुए ना ई मने बुजुर्ग अगर हैं घर में तो हमरे कर सभ्यता परम्परा और नैतिक मूल्य कर एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक पहुँचाए कर बहुत सशक्त माध्यम हक है यही मन से हमरे के पता चले ला कि हमरे का जे पीढ़ी है आगे कर परिया जे पहले बीत चुक है से घर ई मन अपन घर में परिवार में हमरे कालखे समाज से राखत रही और बितात रही समय या कोई भी काम के कालखे करत रही तो इकरे बारे ई मन बताए ना और उकर से हमरे सीखी ला और आवे वाला समय में इके सीख के अपन ऊपरे उपयोग करी ला परिवार में एकता कर आधार भी हुए ना घर कर मुखिया मुखिया या बुजुर्ग

कहू सदस्य धागा में पिरोए कर एगो राखे वाला खास महत्वपूर्ण स्थान रखा है नहीं मन जे कि सब रिश्तेदार के और छुआ मन के एक संगे बांध के रखा है ना और संगे संगे मुसीबत अगर कुछ है तो उकर में एगो सबलता कर आधार भी बनाए ना और आशीर्वाद और संतावना देख के युवा मन के मानसिक रूप से भी मजबूत बनाए ना जीवन कर कोई भी तनाव चाहे संकट के हमरे आसानी से सामना कर लेवी ला अगर हमरे कर घर में कोई भी हमरे ऊपर हमरे से बड़ बुजुर्ग हैं वो मन कर सामंजस्य बैठाए के उमन संगे रही उमन कर जे ज्ञान है अनुभव है से के हमरे बैठाए के आदमी कहे ला नहीं कि बहुत बेर बुजुर्ग मन कर कि जैसे उमन से कहावत भी हमरे सुनी ला कि बाल हमरे कर इसने नहीं पाइक है हर अनुभव के सीख के देख के समझ के ही इजे बाल है पाइक है तो आदमी कहे ला कि किताब में पढ़ ले ज्ञान भेटाए ला तो किताब में पढ़ ले ज्ञान नहीं भेटाए ज्ञान और अगर जे हमरे जिंदगी जिय थी तो अपन समय कर साथ साथ जे हमरे अनुभव और ओके हर चीज के कहो कि एगो प्रैक्टिकल करे ले छुआ तो के ज्यादा जल्दी सीखी ला हमरे और एगो वह तरी अनुभव से आदमी ज्यादा जल्दी सीखे ला पढ़ के चाहे कोई ज्ञान के हासिल करके तो ये चीज हमरे के अपन बड़ बुजुर्ग जगन जरूर भेटाए ला तो हमरे अगर घर में अगर दादी नानी दादा दादी नाना नानी इवन जे भी बड़ बुजुर्ग हैं तो उमन कर सम्मान करे के चाहिए और उमन के अपन जीवन में महत्व देवे के चाहिए और बहुत अहमियत देवे के चाहिए ईमन अगर है तो कहूँ कि जड़ है हमरे कर घर कर हमरे कर बाल बच्चा कर परवरिश ले तो चलू यह बात के संगे हमरे आगे बढ़ी ला एगो लोकगीत के सुनी ला यशोदा देवी और संगमन कर गावल।

0: ई रहे यशोदा देवी और संगी मनकर गावल नागपुरी लोकगीत। चलू हमरे अब एक जानकारी कर लेला, बदलती महिलाएं बदलता भारत। भेंटवार्ताकार है नेहा गुप्ता।
1: भारत एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया जाता है। पुराने समय में महिलाओं को घर तक ही सीमित रखा जाता था, उन्हें पढ़ने लिखने, घर के बाहर काम करने के जाने के लिए और अपने फैसले लेने के लिए पूरी आजादी नहीं मिलती थी। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में, समय के साथ साथ समाज में बहुत बदलाव आया है। आज महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं और देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है और योगदान कर भी रही हैं। इसलिए कहा जाता है कि बदलती महिलाएं और बदलता भारत। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे लड़कियां लड़कों के बराबर सफलता प्राप्त कर रही हैं। और पहले गांव में लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वहां भी माता पिता जागरूक हो गए हैं और अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेज रहे हैं। और शिक्षा के कारण ही महिलाओं में आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता जा रहा है और वे अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, पुलिस, नौसेना अधिकारी के रूप में, पायलट के रूप में या नेता, हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। वे केवल घर की जिम्मेदारियां नहीं संभाल रही हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी भाग ले रही हैं। कई महिलाएं तो अपने छोटे व्यवसाय भी शुरू कर रही हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं और अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत बना रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की भी कई एक योजनाएं चल रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लड़कियों को शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि महिलाओं का सम्मान अवसर मिलेंगे तो देश में तेजी से प्रगति होगा और अंततः कह सकते हैं हम कि महिला की उन्नति ही देश की उन्नति है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनेंगी, तब भारत सच में एक मजबूत और विकसित देश बनेगा। तो बदलती महिलाएं ही नए भारत की पहचान है। आइए आज इस विषय पे हम बात करते हैं नेहा जी से। नेहा जी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: नेहा जी। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बदलती जा रही है और वो सशक्त हो रही है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी?
2: सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण, इसका अर्थ है कि महिलाओं को सम्मान, अधिकार, शिक्षा, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर देना। किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब वहाँ की महिलाएं मजबूत और आत्मनिर्भर हों। भारत में आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। इससे हमारे देश में तेजी से विकास कर रहा है। पहले के समय में महिलाओं की जो स्थिति होती थी वे अच्छी नहीं थी। उन्हें घर के कामों तक सीमित रखा जाता था, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच काफी ज्यादा बदल रही है। आज माता पिता अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं और उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा महिलाओं को जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने के लिए जरूरी होता है। पढ़ी लिखी महिलाएं अपने अधिकारों को समझती हैं और वे सही निर्णय ले सकती हैं। वह अपने परिवार और समाज में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज महिलाएं सेना, विज्ञान या फिर खेल या फिर व्यापार या फिर राजनीति जैसे जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। विदेश की सुरक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक हर जगह अपनी क्षमता दिखा रही हैं। कई महिलाएं बड़े पदों पर काम कर रही हैं और समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं। जब महिलाएं मजबूत होंगी तभी भारत सशक्त बनेगा। महिलाओं का सम्मान और उनका विकास ही एक बेहतर और उज्जवल भारत का रास्ता है।
1: नेहा जी, बदलती महिलाएं और बदलता भारत, इसका क्या अर्थ है? इस विषय पे हम क्या सोचते हैं?

0: सस्ती ले सकती हैं। वह अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देती हैं। इससे पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने की शक्ति देती है। जब महिलाएं पढ़ती हैं और काम करती हैं, तब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, समाज में समानता बढ़ती है और परिवारों में खुशहाली आती है। महिलाएं नए विचारों और मेहनत से देश की प्रगति में योगदान देती हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण देश के विकास के लिए काफी अत्यंत है।
1: महिलाओं की उन्नति से समाज में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगी? साथ ही साथ महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर भी हैं।
0: महिलाओं की उन्नति से समाज में जागरूकता और समानता बढ़ती है, परिवारों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होती है। महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं, तब समाज में गरीबी और भेदभाव कम होता है, इससे समाज का भी विकास होता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है ताकि वे अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। आत्मनिर्भर महिला किसी पर निर्भर नहीं रहती और सम्मान के साथ जीवन जीती है। वह अपने परिवार की आर्थिक मदद भी कर सकती है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उसकी पहचान मजबूत होती है।
1: नेहा जी, बदलते भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: बदलते भारत में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे शिक्षा हो गया, विज्ञान, राजनीति, खेल या फिर व्यापार जैसे जितने भी क्षेत्र हैं, वे सब में आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं समाज में जागरूकता फैलाने और नई पीढ़ी को बेहतर भविष्य देने में मदद कर रही हैं। इसलिए महिलाओं का योगदान भारत के विकास में बहुत बड़ा है। महिलाएं नौकरी, व्यापार और छोटे उद्योग के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। वे मेहनत और नए विचारों से उत्पादन और रोजगार बढ़ाने में मदद करती हैं। जब महिलाएं काम करती हैं, तब परिवार और देश दोनों आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। समाज को महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। भेदभाव और गलत सोच महिलाओं की प्रगति में बाधा बनती है। यदि समाज महिलाओं को सम्मान और समान अवसर देगा, तो देश तेजी से विकास करेगा। महिलाएं मजबूत भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, विज्ञान या फिर खेलों, ये सब में देश का विकास कर रही हैं। महिलाएं नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार और शिक्षा प्रदान कर रही हैं। इसलिए महिलाओं की प्रगति से ही भारत का भविष्य उज्जवल बन सकता है।
1: आज के युग में लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, शिक्षित भी हैं, और पहले दोनों पीढ़ियों में अंतर था, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि
0: पुराने समय में लड़कियों को पढ़ाई का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। कई परिवारों में यह माना जाता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज माता पिता अपनी बेटी को अच्छे स्कूल और कॉलेज भेज रहे हैं। अब लड़कियां केवल पढ़ नहीं रही हैं, बल्कि हर परीक्षा में अच्छे अंक भी ला रही हैं। शिक्षा ने महिलाओं का जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आज की महिलाएं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रही हैं। वे अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। पहले महिलाएं घर से बाहर काम करने में डरती थीं, लेकिन अब वे आत्मविश्वास के साथ हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। महिलाएं बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सेना या फिर जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वे सब में भी काम कर रही हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। महिलाओं के बदलने से परिवार में भी बदलाव आया है। अब घर के फैसले महिलाएं भी राय को महत्व दिया जाता है। पति और पत्नी दोनों मिलकर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इससे परिवार में प्यार और समझ भी बढ़ रही है। महिलाओं की उन्नति से ही देश की उन्नति संभव है। जब हर लड़की पढ़ेगी, सुरक्षित रहेगी और अपने सपने पूरे करेगी, तभी भारत सच में आगे बढ़ेगा। बदलती बेटियां ही नए भारत की असली ताकत हैं।
1: नेहा जी, आज इस विषय पे आपने

0: इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ई रहे नेहा गुप्ता जी हमरे के जानकारी करात रहे कि बदलती महिलाएं और बदलता भारत का लखे आगे बढ़त है। और आओ हमरे एगो और लोकगीत सुन लेला, नागपुरी लोकगीत रूना देवी और संगी बनकर गावल।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ई रहे रूना देवी और संगीमन करगावल नागपुरी लोकगीत। और अब चलू जानकारी कर लेला, हमरे कर रसोई में उपयोग होवे वाला जे मसाला है वो खाली भोजन का स्वाद बढ़ाए में मदद नहीं करे बल्कि शक्तिशाली औषधीय गुण से भी भरपूर रहेला। ई हमरे कर पाचन में सुधार और रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाए में भी बहुत मददगार है। कई तरीकर इकर विशिष्ट औषधीय लाभ भी मिलेला, जैसे कि हल्दी भेलक इकर में मौजूद करक्यूमिन एगो बेहतरीन सूजन रोधी तत्व हुएला इकर में, जे कि हमरे का जोड़ कर दर्द के कम करेला और त्वचा ले लाभकारी है। दालचीनी ई रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रित करे में मदद करेला और संगे है मधुमेह के रोगी ले भी लाभप्रद है। जीरा ई पाचन कर शक्ति के बढ़ाएला और पेट फूले गैस और एसिडिटी नियर समस्या से भी राहत दिवाएला। संगे है काली मिर्च है इकर में भी जे हल्दी कर करक्यूमिन है उके अवशोषित करेक में भी मदद करेला। और लौंग जेके कि हमरे जानी ले कि प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक हके और जेकि दांत कर दर्द चाहे मसूड़ा कर सूजन के तुरंत राहत देवेला। अदरक हमरे कर सर्दी खांसी और जुकाम ले लाभदायक है और जी मिर्च लायक के भी रोकेला और पाचन में भी सुधार करेला। धनिया ई भी शरीर के तापमान के संतुलित रखे और ठंडा प्रदान करेला और संगे संगे पाचन में भी सहायक है। तो मसाला कर सेवन हमरे अगर संतुलित मात्रा में करे चाहे करो तो इकर से कोई भी नुकसान नहीं है, और क्योंकि कोई भी चीज़ के अति नुकसानदायक नहीं होवेला। और यदि हमरे इकर विशिष्ट स्वास्थ्य समस्या जैसे कि डायबिटीज है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे पेट का समस्या है, इकर इलाज ले मसाला के उपयोग के बारे में जानने ले भी हमरे जान सकीला और सही ढंग से सही मात्रा में इकर प्रयोग कर सकीला। तो चलू ई तो रहे हमरे कर जे हमरे प्रयोग करीला खाना कर स्वाद में मसाला का इस्तेमाल करीला। मुख्य रूप से ई हमरे के पौधा से ई जो मसाला है भेटायला स्वाद और रंग देवेला और स्वास्थ्य ले भी अत्यंत लाभदायक होवेला। कई गो जो पौधा है से कर जड़ है, छाल है, फल बीज और पत्ती से भी हमरे मसाला भेटेला। तो जे की जड़ी बूटी के रूप में भी व्यवहारिक रूप में हमरे कर प्रयोग करीला। तो ई रहे मसाला कर प्रयोग कर जानकारी कर बारे में। और इकरे संगे हमरे कर आज गृहलक्ष्मी कार्यक्रम कर बेरा सिरा थे। चलू तब जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नागपुरी में गृहलक्ष्मी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर, और आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाएंगे अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कुछ अच्छे पुराने गीत हम आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में।

श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं 3 Idiots फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत है, शांतनु मोइत्रा का संगीत है और आवाज़ है शान की, और साथ में शांतनु मोइत्रा ने भी इसे गाया है।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का। कुमार सानू की आवाज़ है और इसके गीतकार और संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: आइए आइए, प्लीज कम इनसाइड। आपको देखते ही मैं जान गया था कि ज्ञान की खोज में आप यहाँ आएंगे जरूर। ज्ञान का भंडार है ये वाचनालय। ओ किताबें, ये किताबें साइंस की है जो बताती है कि आसमान नीला क्यों है, और ये साहित्य की जो ये बताती है कि लैला ने मजनू से प्यार क्यों किया। अब जब हिसाब की बात कर ही रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि आप कौन हैं, आप कहां से आई हैं और आपका नाम क्या है। लगता हूं चलिए इसी बहाने आपने पूछ तो लिया कि हम कौन हैं, और अब ये भी पूछ लीजिए कि हम कहां से आए और हमारा नाम क्या है। राजेश्वरी जी पूछिए ना।
1: अरे

आजा नचले। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। गीतकार हैं जयदीप साहनी और संगीतकार की जोड़ी है सलीम सुलेमान की। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।

अजब प्रेम की गजब कहानी। लीजिए इस फिल्म का ये गीत सुनिए। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं प्रीतम। आवाजें हैं सुजैन डिमेलो और नीरज श्रीधर।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं। बचना ए हसीनों फिल्म का ये गीत है। अन्विता दत्त गुप्तन की लिखी ये रचना है और धुन बनाई है संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर ने। आवाजें हैं के और शिल्पा राव की।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं बॉडीगार्ड फिल्म से। संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया और गीत को लिखा है शब्बीर अहमद ने। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की।

श्रोताओं, बॉडीगार्ड के इस फिल्म के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding health care coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Palta Assembly re-election held on the 21st of last month. Just 48 hours before polling, Jahangir Khan dramatically withdrew from the contest, announcing at a press conference that he was stepping aside in support of a special development package promised by Chief Minister Shubhendu Adhikari. Despite his withdrawal, Khan's name remained on the ballot beside the Trinamool symbol and he finished fourth while the BJP candidate won the election. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren suffered a major legal setback today after a special PMLA court rejected his discharge petition in a money laundering case linked to 8.86 acres of land in Ranchi's Batgai area. The court had earlier reserved its order after hearing arguments from both sides. But while delivering its verdict, the court said there were sufficient grounds and materials on record to proceed with the case. It ruled that the accused could not be discharged at this stage and dismissed Soren's plea. In his discharge petition filed in December last year, Mr. Soren argued that the allegations were baseless. The Central Board of Secondary Education, CBSE, today said the application window for verification and re-evaluation for Class 12 examination 2026 remained fully functional during the 2nd to 7th of this month. During the period, more than 1,60,000 candidates successfully submitted requests for over 3,08,000 answer books. The system remained under continuous monitoring by dedicated cybersecurity teams throughout the operational period to prevent malicious traffic and cyber threats. It reminded that only those candidates who had applied for their scanned answer books during the preceding stage were eligible to avail the subsequent stage. Akashvani is celebrating the completion of its 90 years today. On this day in 1936, the Indian State Broadcasting Service was renamed All India Radio. Post-independence, All India Radio expanded rapidly, adopting the name Akashvani in 1956. Today, Akashvani operates through 591 stations across the country. Israel and Iran have traded fresh missile attacks on each other, triggering escalation in West Asia and jeopardizing the ceasefire. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, launched a fresh wave of strikes on key Israeli military installations. The IRGC Aerospace Force said the operation, named Operation Nasr, targeted core sectors of two of Israel's most important air bases, Nevatim and Tel Nof. According to media reports, the operation was carried out in direct retaliation for recent Israeli missile strikes that hit Iranian radar sites at three separate locations across the country. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.6% lower during afternoon trade today. The Sensex fell 434 points to 70.

0: 33,809, while the Nifty dropped 145 points to 23,222 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव, विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से मिला झटका, डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल, जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई, कहा सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की यह यात्रा मानवीय सशक्तिकरण और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक सामूहिक आंदोलन बन गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले और कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पीएमएलए कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उनकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इंडी गठबंधन ने प्रत्याशियों की जीत का दावा किया।
2: हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है और 2 प्रत्याशी के साथ महागठबंधन मैदान में है, लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है उसके बारे में बताएं। इनके विधायकों को इन लोगों ने बंधक रख लिया है, बिना कैंडिडेट का नाम बताए जो हस्ताक्षर ब्लैंक पेपर पे लिया गया है वो किस तरफ इंडिकेट करता है यहाँ लोगों के सामने।
1: राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सचेतक नवीन जायसवाल के आवास में आज भाजपा विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे परिमल नाथवानी भी शामिल हुए। इधर भाजपा भी एक सीट पर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि चुनावी गणित भाजपा के पक्ष में है और पार्टी समर्थित प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे।
3: यकीन मानिए, हमारा फोकस है कांग्रेस मुक्त भारत का। कांग्रेस ने जिस बाहरी उम्मीदवार को यहाँ टिकट दे दिया, जिसका झारखंड से कोई लेना देना नहीं, उसको हम लोग यहाँ से विदा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा दांव खेलेगी ना, यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्ड अंतिम में खोलेगी और एक चीज पक्का है, हम जीतेंगे, कांग्रेस हारेगी।
1: रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जिले में तैनात सभी पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग टीम के पुलिसकर्मी शामिल थे। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी ने पुलिसकर्मियों को 24 घंटे अलर्ट में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
4: रांची जिला अंतर्गत जितने पीसीआर और हाईवे और माइक पेट्रोल में ड्यूटी करते हैं पदाधिकारी और जवान ड्राइवर, उन सभी का एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें सभी को उनके दायित्वों के बारे में बताया गया। किसी भी तरह का अगर आपराधिक एक्टिविटी हो रहा है, कोई असामाजिक कार्य हो रहा है, तो उसके प्रति इंटेलिजेंस डेवलप करना।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 जून को 10 वर्ष पूरे होने पर कल राज्यभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयुष्मान आरोग्य शिविर लगेंगे। साथ ही जिला अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों, सीएचसी और एफआरयू में विशेष पीएमएसएमए सत्र चलाकर गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच और परामर्श किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @ AR

0: में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने वीडियो संदेश में कहा कि आज पूरा राष्ट्र आकाशवाणी से जुड़ा है। आकाशवाणी के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सशक्त हो रही है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार लगभग 0.7% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 508 अंक गिरकर 73,735 पर और निफ्टी 159 अंक गिरकर 23,207 पर आ गया। इधर राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुरुकडीहा गांव में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। SDPO जीतवाहन उराव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
2: 3 बच्चियों की हत्या हुई है, जो पिताजी को हम लोग डिटेन किए हुए हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। थोड़ा मानसिक रूप से वो कमजोर भी हैं, उनसे द्वारा भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन अन्य बिंदुओं पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक की टीम के द्वारा ब्लड सैंपल और बाकी चीजों का भी हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: गिरिडीह जिले में योग के नियमित आयोजन से लोग निरोग हो रहे हैं। पतंजलि परिवार की ओर से सालों भर योग का नियमित शिविर लगाकर लोगों को निरोग किया जा रहा है। योग करने वालों ने स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में योग के फायदे बताए।
3: मैं योगा में 2 साल से आ रही हूँ। योग करने से बहुत ही फायदा होता है। पहले शुगर 400 था और अभी मेरा शुगर 125 है। स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ही जरूरी है।
4: बहुत से बीमारियों से ग्रस्त है, अब हमें बहुत उसमें आराम मिल रहा है। मैं संदेश दूंगा कि आप योग से निरंतर जुड़े रहें, और आज जो वर्तमान समय में लोगों को बीमारियां बढ़ती जा रही है, दवाओं पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो योग से ही छुटकारा मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास हो गया है और मैं आगे निरंतर योग करता रहूंगा।
0: CBSE और NCERT की पहल पर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 15 से 18 जून 2026 तक ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन 10 जून तक होगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 साल में देश ने देखे कई बदलाव। विकास का लाभ अंत्योदय तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से मिला झटका। डिस्चार्ज पिटीशन को अदालत ने किया खारिज। जमीन घोटाले से जुड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राज्यसभा चुनाव के लिए गठबंधन के दोनों उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और प्रणव झा ने अपना नामांकन किया दाखिल। जीत का किया दावा। और आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी बधाई। कहा, सशक्त हो रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्र संगीत अनुरंजनी कार्यक्रम में। आज की कलाकारा हैं श्रीमती सिप्रा बोस। इनसे आप सुनेंगे मिस्र खमा।

अनुरंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं श्रीमती सिप्रा बोस से उपशास्त्रीय संगीत, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं यह गजल, दादरा पर आधारित है। तबले पर संगत दे रहे हैं आलोकनाथ डे।

श्रोताओं, अभी आप सिप्रा बोस से सुन रहे थे। यह गज़ल दादरा पर आधारित थी और इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं हरिहरण, इनसे आप सुनेंगे चंद गजलें। लीजिए, सबसे पहले सुनिए ये पहली गजल। ये गजलकार हैं ताहिर फराज़।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत का ये कार्यक्रम, और अब आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आप सुनेंगे समाचार मिड डे न्यूज थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh

0: छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई

0: 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत

0: संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की केवाईसी निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि बीएसएनएल ने सिम केवाईसी से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती। हमारे सभी फौजी भाइयों को हमारा शत शत नमन है। वो हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा डटे रहते हैं और हर पल हम उनका दिल से सम्मान करते हैं।

हम अपने ईश्वर को हर पल धन्यवाद देते हैं कि आपके जैसे फौजी भाई हमारे देश में हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं। आपके साहस और बलिदान को हम हमेशा नमन करते हैं।

हमारे सैनिक भाई अपने परिवार से दूर, हर पर्व त्योहार, हर परिस्थितियों से दूर, हमसे दूर, एक कठिन परिस्थिति में देश की सीमा में डटे हैं। और उनके लिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि उनका मनोबल हमेशा बढ़ाएं, उनका सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे देश की अखंड पूंजी हैं।

हर गीत में हमारे सैनिकों का जोश, हमारे देश के लिए देश प्रेम और ये माँ के लिए प्यार, हर सैनिक के दिल में ये बसता है। वो अपने परिवार से दूर होते हैं क्योंकि भारत माँ का जो चरण है, वहाँ की जो सीमा है, वो उनके लिए परिवार है और सभी मिलकर अपने देश की रक्षा करते हैं। और सैनिकों के परिवार हमेशा उनके सुरक्षित घर लौटने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का जय भारती कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम ने बताया कि पूरा गठबंधन एकजुट है और अपनी जीत पर पूरा भरोसा है।
2: अपना जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसके दोनों प्रत्याशी जीतेंगे, इस विश्वास का नामांकन करें। माननीय मुख्यमंत्री है तो उनसे कोई भी मिल सकते हैं, नेताओं से सब लोग मिलते ही हैं, स्वाभाविक है। उसका अर्थ कतई नहीं होता है कि कोई हमारे गठबंधन के व्यक्ति को तोड़ दे। और मैं ये मानता हूँ कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री है और उनके लीडर से बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं।
1: उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन में एनडीए के विधायक प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नाथवानी ने कहा कि उन्होंने झारखंड में पहले भी काम किया है और यदि दोबारा अवसर मिलता है तो वे राज्य के लिए पहले से अधिक काम करेंगे।
3: मैं पुराना झारखंडी हूँ और झारखंड में रहा हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जीत बहुत अच्छी होगी। सबका सहयोग मिलेगा तो मैं जीतने वाला ही हूँ।

0: झारखंड के लिए मैंने क्या काम किया हुआ है, मेरा दो टर्म आपने देखा है, उससे ज्यादा ही होगा। मैंने यहाँ हॉस्पिटल बनाई थी, IIM भी बनाया था, तो ये सब मेरा काम तो इधर है ही सबके सामने।
1: रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में PMLA की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने माना कि मामले में विचारण के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इस स्तर पर आरोप समाप्त करने का कोई आधार नहीं बनता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिसम्बर 2025 में याचिका दायर कर खुद को मामले से मुक्त करने की मांग की थी। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। दोनों आरोपियों पर अंतर्राज्यीय पेपर लीक और सॉल्वर गिरोह के एजेंट होने का आरोप है। मामले में अब तक 160 से अधिक अभ्यर्थियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि गिरोह से जुड़े कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अपनाई जा रही ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर दोनों पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में CBSE की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोडरमा जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं करने के आरोप में सतगावा थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने यह कार्रवाई लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की है, साथ ही उन्हें तत्काल पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता,

0: सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का लिखते हैं।
1: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
0: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
0: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
1: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
1: जी।
0: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
1: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
1: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
1: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
0: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
0: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
1: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाक घर भारत के किस गांव में पड़ता है?
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,

प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक

कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: को यूं वधू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाव बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।

0: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला।
2: हाँ?
1: आह, देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
2: हाँ हाँ।
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये, हाँ, ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।

0: गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
2: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
2: चल चल चल चल।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
1: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
0: महाराज ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा, इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज, गायन वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
1: अरे तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
0: महाराज इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
1: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं, राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
0: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
1: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे, तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली, लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे

0: उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं केंद्र की NDA सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय है स्वास्थ्य सेवाएं। परिचर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय और श्री चंदन कुमार मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं पूनम क्रिकेटा।
6: नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा करेंगे, और आज की परिचर्चा का विषय है स्वास्थ्य सेवाएं। देश भर में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर हम आज बातचीत करेंगे, और इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं डॉक्टर आत्रेय गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ रांची, और श्री चंदन कुमार मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार रांची। डॉक्टर गंगोपाध्याय, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्कार। जोहार।
6: जोहार। और मिश्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद। जोहार।
6: आपसे मैं शुरुआत करूंगी मिश्र जी। हमने जो यात्रा की है इतने सालों तक, और अभी पिछले 12 सालों की जो हमारी यात्रा 12 सालों से जो चल रही है, उसमें ये जो स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उसकी क्या उपलब्धि रही, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी।
8: जी पूनम जी, मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो स्वास्थ्य क्षेत्र है पूरे देश का, अगर हम ग्रामीण अंचल से लेकर महानगर तक का भी हाल देखें
6: जी,
8: तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत काम करना जरूरी था। बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जा सकता है
6: जी।
8: लेकिन प्रमुख रूप से जो उपलब्धि

0: हम कहें कि भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में इस क्षेत्र में सबसे अधिक किस चीज पर जोर दिया है, तो मुझे लगता है कि 2-3 बातें जो हैं बताने लायक है, मन महत्वपूर्ण जो है, बाकी चीजें तो हैं ही, सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर ही रही है। लेकिन एक है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में चर्चा है, यह बहुत ही छोटे स्तर पर प्राथमिक सेवा कर सकते हैं, मोहल्ले के स्तर पर 1,86,000 इकाइयां कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था है, जहाँ पे लोगों को चाहिए कि वह प्रारंभिक जांच हो जाए लोगों को, तो इस मामले में ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। हालांकि यह बहुत अपर्याप्त है भारत जैसे विशाल देश के लिए, जहाँ 150 करोड़ की आबादी हो, लेकिन फिर भी एक प्रयास है, शुरुआत अच्छी है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, ऐसा देखने को मिला।
1: और ये प्राथमिक जो सुविधा है, सुरक्षा है, वो अगर हम इस तरीके से देखें कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि अगर प्राथमिक तौर पर ही अगर सही चिकित्सा मिल जाए तो वो रोग को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है।
0: जी जी। एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको इसमें शामिल कर दूं कि एक सबसे बड़ी समस्या थी कि जो हमारे समाज गरीबी रेखा से बहुत बड़ी संख्या में लोग नीचे रहते हैं, और संकट क्या है कि अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए और कमाने वाला एक व्यक्ति हो तो समझिए कि पूरा परिवार पस्त हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड, करीब भारत सरकार ने 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किया है, और मुझे लगता है कि करीब करीब 1,80,435 करोड़ रुपए इसमें अब तक खर्च किए जा सकते हैं। मतलब ये है कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का है चिकित्सा व्यवस्था है परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर, और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और इसको और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए तो मुझे लगता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम आम आदमी को जितनी सुविधाएं सरकार देना चाहती है ये मिल जाएगी।
1: इसी पर मैं डॉक्टर गंगोपाध्याय से पूछना चाहूंगी कि ये जो 5 लाख रुपए पर ईयर तक की ये जो योजना है, इससे लगभग क्या क्या बीमारियां और उनके इलाज कवर हो जाएंगे?
2: मैक्सिमम बीमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमण वाली बीमारियां इससे कवर हो जाती है। कैंसर कुछ हद तक कवर होती है, लेकिन अगर कैंसर में आगे का इलाज चले तो उसमें अगर चिकित्सक उसके बारे में सही से फॉर्म भर के दे तो वो भी आगे तक कवर हो जाती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड समस्याएं इससे कवर हो जाती है। नवजात शिशु और 1 साल से नीचे शिशु के कुछ गहन बीमारियां इससे कवर हो जाती है। मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के जगह कुछ रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। मलेरिया और निमोनिया हमारे देश में बहुत कॉमन बीमारी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हमेशा इसका ओपीडी से इलाज नहीं कर सकते हैं।
1: भी है सर।
2: भरी मरीज को 3 से 5 दिन भर्ती करना पड़ता है। मध्यम वर्ग में अगर कमाने वाला बीमार पड़ गया वो 3 से 5 दिन की कीमत एक प्राइवेट अस्पताल में 1 लाख से ऊपर जा सकती है। वो लोन के लिए एलिजिबल है नहीं तो वो महाजन से सूद लेता है। वो बीमारी से बच गया और वो 1 लाख चुकाने में उसको 5 साल लग गया। तो कहीं ना कहीं आयुष्मान ने इस मध्यम वर्ग को एक ट्रीटेबल बीमारी में मदद भी कर दिया, और क्योंकि उसको आयुष्मान से मदद मिल गया तो उसको लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारी गरीबी रेखा को बेहतर करने में आयुष्मान योजना इनडायरेक्टली मदद कर रही है। एक 70 साल के व्यक्ति जो रिटायरमेंट के बाद उनकी हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो गई ऑफिस के तरफ से, उनके 3 बेटी थे, बेटा नहीं थे। 3 बेटी का कहना है कि हम लोग अपना बच्चा को देखे या बाबा को देखे, बाबा को किडनी फेलियर हो गया। लेकिन जिस दिन वयस्क में आयुष्मान योजना की 70 के ऊपर सबको आयुष्मान योजना देना है उस दिन वो उसमें आ गए और 6 महीने के अंदर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उनको नई जिंदगी मिल गई।
1: ये योजना है आयुष्मान भारत वयोवंदना।
2: तो ये तो मैं देखा हूँ मेरे मरीज में, उनकी बेटी अभी भी बोलते हैं कि अगर ये योजना नहीं रहता तो लोग अपने बाबा का इलाज नहीं करा पाते।
1: सरकार ने बीमारियों की जांच के लिए भी जो योजना बनाई है वही योजना है जो मिस्टर जी मेंशन कर रहे थे, आरोग्य मंदिर फ्री जांच, ये कितना लाभदायक होगा मरीजों के लिए?
2: हमारे देश में किडनी मरीज एक बहुत गंभीर चीज है, क्योंकि डायबिटीज और पेशाब के रास्ते में पथरी हमारे देश में किसी भी देश से ज्यादा कॉमन है। अच्छा। जो किडनी खराब करती है। दुर्भाग्य से किडनी खराब के सिम्टम साइलेंट होते हैं शुरुआत में, और जब वो पकड़ाते तब करने को कुछ नहीं रहता है। तो जब तक मरीज को फ्री जांच समय पर नहीं मिलेगा उनका किडनी डिजीज नहीं पकड़ाएगा। 45 से

0: 70% कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में पकड़ा है तो पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, वो भी 3 से 6 महीना के इलाज में,
1: बशर्त की जांच।
0: और फर्स्ट स्टेज कैंसर भी साइलेंट होता है
1: जी।
0: कैंसर के लक्षण थर्ड स्टेज से पहले आता ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: तो कहीं ना कहीं ये आरोग्य मंदिर हम लोगों को यहाँ पर मदद करेगा
1: जी। जी मिश्र जी, सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
2: जी, जी।
1: जिसमें कई लाख नागरिकों के हेल्थ रिकॉर्ड्स डिजिटली सुरक्षित रखे गए, ये कैसा कदम और कितना बड़ा कदम है?
2: कि आज के समय में जब पूरा का पूरा विश्व डिजिटल क्षेत्र में चला चुका है तो स्वास्थ्य को आप उससे वंचित नहीं रह सकते। तो एक डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत एक योजना चल रही है भारत सरकार की, और इसमें करीब करीब 47 करोड़ से अधिक टेली मेडिसिन जो है परामर्श दिया जा रहा है। अब आप अनुमान लगाइए कि जो व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता है, लेकिन अगर ये सुविधा उन लोगों तक पहुंच रही है जो डॉक्टर से घर बैठे परामर्श ले सकते हैं, तो इस योजना की सफलता पर हम बिल्कुल ही हैं कि आम लोगों के लिए कितना लाभकारी होगा उस पर निर्भर कर रहा है और लोगों को लाभ मिल भी रहा है। करीब 90 करोड़ से अधिक ऐसे जो केसेस हैं उनको आईडी उनका पंजीकृत किया गया, रजिस्टर्ड किया गया है, और लोगों को कभी भी इस तरह की जो सुविधाएं हैं उससे वंचित ना हो उसका लाभ मिल रहा है। एक चीज और मैं एक जानकारी दे दूं, उस पर डॉक्टर साहब से आप चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक भारत सरकार की योजना चल रही है इंद्रधनुष मिशन, ये दरअसल है क्या कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने वाला है। तो आज हमारे देश में समस्या ये है कि गर्भस्थ बच्चों को ही बचाना है, महिलाओं को किसी तरह इन्फेक्शन से बचाना है, और ये समस्या जब गर्भवती महिलाओं के साथ ज्यादा होती है। तो ये योजना मुझे लगता है एकदम मिशन के तौर पर चलाया जा रहा है, इंद्रधनुष मिशन। तो इसमें जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो लगभग 5.5 करोड़ बच्चों को अब तक टीका लगाया जा चुका है, करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को। तो इसका लाभ तो हम लगता है देश के ऐसे नागरिकों को भी मिलना चाहिए, मिल रहा है, जो वंचित हैं, उपेक्षित हैं, या किसी कारणवश ये सुविधा नहीं ले पाते हैं, भारत सरकार ये सुविधा दे रही है जी।
1: और सरकारी रिकॉर्ड्स में भी ये बताया गया है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत करीब करीब 98% लोग कवर किए गए हैं, 2% जो बाकी हैं दूर दराज के इलाकों में वो भी जल्द ही कवर कर लिए जाएंगे। और इसके तहत एक सुमन योजना भी है, सुरक्षित मातृत्व आवासन, उस पर डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: इंद्रधनुष योजना तभी सफल होगा अगर उसको सुमन योजना के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि सुमन में होता है दुर्गम जगह में रहने वाले लोगों को सुरक्षित वाहन दी जाती है उनके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के लिए, जो गर्भवती है प्रसव के लिए और छुट्टी के बाद घर जाने के लिए, और 1 साल से नीचे गंभीर शिशु को अस्पताल पहुंचाने के लिए
1: जी।
0: तो जो दुर्गम, जैसे हमारे झारखंड में अभी छुट्टियां चल रहा है, लोग खुशी खुशी नेतरहाट जाते हैं, बेतला फॉरेस्ट जाते हैं, सिंघूम के जंगल जाते हैं, वहां जो लोग रहते हैं आप सोचिए उनको एक अस्पताल पहुंचने के लिए कितनी कष्ट होती है
1: जी।
0: इंद्रधनुष योजना से, डिजिटल भारत मिशन से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है दूरभाष से कि उनके उम्र के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और सुमन उनको वो वाहन दे रही है ताकि वो अस्पताल पहुंच के उस कमी को दूर कर सके। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एक साथ मिलके मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड जीडीपी तीनों को फेवरेबल दिशा में मोड़ रहा है
1: जी। और इस योजना जो फ्री व्हीकल है उसका नाम है ममता वाहन।
0: ममता वाहन हमारे राज्य झारखंड में है
1: जी,
0: और ऑल ओवर इंडिया उसको सुमन के नाम से ही बोलते हैं। हमारे राज्य में ममता वाहन जो आयुष्मान के अलग भी चलता है और आयुष्मान के साथ भी चलता है
1: जी। और ये जो फ्री ट्रांसपोर्ट है इसके लिए सरकार बहुत ही सख्त है, सरकार ने ग्रीवेंसेस नंबर भी दिए हैं कि अगर कोई उनके कॉल पर नहीं आता है, समय से नहीं आता है, देर करता है, इनकार करता है, तो शिकायत दर्ज की जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो इन सब सुविधाओं को देने के लिए सरकार बहुत ही दृढ़ संकल्पित है। जैसा हम बात कर रहे थे डिजिटल मिशन की, रिकॉर्ड्स की, तो इससे जांच में क्या फायदा होगा डॉक्टर साहब?
0: कुछ कुछ बीमारी होती है जो बचपन में ही उनके लक्षण पता चल जाते हैं
1: जी।
0: लेकिन बहुत समय दुर्गम जगह में रहने के कारण या किसी अज्ञानता के कारण पता नहीं चलता है। ऐसा भी हो सकता है उनके एरिया में जो स्वास्थ्य कर्मी हो वो उस बीमारी से अवगत नहीं हो, लेकिन जैसे ही कोई डिजिटल मिशन में आएगा तो उनके बचपन से हेल्थ रिकॉर्ड्स, उनका ग्रोथ चार्ट, ये हमें आगे बताने में मदद करेगा कि इनको क्या बीमारी हो सकती
1: Diagnosis.
0: है। जैसे इतना सुंदर एक बात आपने कहा कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो कहीं ना कहीं ये कोई भयंकर बीमारी फलीभूत होने से पहले उसके बारे में बता देगा।
1: जी, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि ये जो स्वास्थ्य सेवाएं और इनका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है, आगे चल के न केवल स्वास्थ्य लेकिन अपराध नियंत्रण रोकथाम और इसमें भी काम आ सकता है। अभी ये बहुत ही स्पेकुलेटिव स्टेज है, लेकिन अगर सारे लोगों के रिकॉर्ड्स रहें सरकार के पास तो
0: अभी भी हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य बहुत कमजोर है
1: जी,
0: लेकिन रोजमर्रे के जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल रहता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं ना कहीं अगर हमें बचपन में ऐसी कुछ चीजें पता चल जाए और उनको हम लोग सही विशेषज्ञ सलाह दे सके तो भविष्य में कोई अपराधी को हम लोग अपराधी बनने से रोक सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: नशा एडिक्शन उसको रोक सकते हैं। अगर बचपन में हम लोग ये सब चीज को हेल्थ रिकॉर्ड से पता करें तो बहुत हद तक हम लोग नशा एडिक्शन को फाइट कर सकते हैं। अगर नशा करने वाला नहीं रहेगा तो नशा बेचने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। यही सब चीजें हैं जो आगे चल के क्राइम को बढ़ावा देती हैं, कुछ हद तक क्राइम भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती थी कि ये जो जेनेरिक दवाएं लाई गई हैं, जन औषधि, ये लाने के पीछे जो सरकार का ध्येय रहा है उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी।
0: किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए
1: जी।
0: तो अगर वो बेचने का बजट हट जाए तो उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम हो जाती है
1: जी।
0: तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जेनेरिक दवा उसी कारखाने में बनती है
1: जी
0: जहां कमर्शियल दवाएं बनती है
1: जी।
0: तो दोनों में गुणवत्ता में कोई अंतर होता नहीं है,
1: लोग डाउट करते हैं।
0: तो सरकार को जोर शोर से प्रचार करना होगा कि अगर दोनों एक ही कारखाने में बनते, जिसका मैं सबसे साधारण उदाहरण देता हूँ, टीबी की दवाएं
1: जी।
0: टीबी की दवाएं डॉट्स के नाम से सरकार मुफ्त में देती है, जो 6 महीना से 2 साल तक हो सकते हैं। वही टीबी की दवा कोई प्राइवेट में खरीद भी सकता है, जबकि दोनों एक ही कारखाने से बनती है
1: जी।
0: तो दोनों की गुणवत्ता समान होती है
1: जी।
0: तो बाकी रोजमर्रा की दवाएं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मिर्गी की दवाएं, अगर ये सब दवा में सरकार जोर शोर से प्रचार करे कि अगर एक ही फैक्ट्री से बन रहे तो गुणवत्ता में कोई अंतर है नहीं, तो लोग जरूर वो लेंगे। और कहीं ना कहीं उसमें उनकी खर्चा डेली के जीवन में, मानिए जिनको भी डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, उनके दवाओं के पीछे महीना में 3,000 खर्चा हो सकती है, वो जेनेरिक में अगर उनको खरीदना भी पड़े तो आधा हो जाएगी
1: जी।
2: आपके सवाल को
1: मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि ये जो जनऔषधि केंद्र हैं, लोगों के बीच कितने पॉपुलर हुए हैं?
2: सही बात हमने कहा, इस सवाल डॉक्टर साहब ने तो थोड़ी बात बताई, एकदम स्पष्ट कहा इन्होंने। अब देखिए, इतने बड़े देश में अभी तक जो हम लोगों के पास जो सूचनाएं आंकड़े हैं, सरकार ने भी जो जारी किया है उसके हिसाब से 18,000 जनऔषधि केंद्र है, लेकिन नहीं लगता है कि कितनी छोटी संख्या है ये। इसको अगर हम इस संख्या बढ़े तो दोनों बातें होंगी कि उस जेनेरिक दवा के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा और उसके अलावे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच होगी। और सबसे बड़ी बात आज की यही है कि जेनेरिक दवाएं बाजार में हैं, कई केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन उसके बगल में जो कॉस्टली दवा वाली दुकान है वहां भीड़ ज्यादा रहती है। तो सरकार की ये भूमिका यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे अधिक है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करें। ये जो एक दवा जिसकी कीमत 5 रुपये हो सकती है, वो बाजार से वही दवा उस प्रोडक्ट के नेम से 25 या 30 रुपये में, उससे भी ज्यादा कहीं लोग खरीदते हैं मजबूरी। लेकिन एक चीज और भी है कि जो डॉक्टर रेगुलर काम कर रहे हैं, खासकर प्राइवेट प्रैक्टिस वाले, वो बताते हैं कि जेनेरिक दवा असर नहीं करती है। अगर इस तरह का कोई प्रयोग चल रहा है, इस तरह का कोई कहीं प्रचार है, कोई प्रचार, तो इसको रोकने का क्या उपाय होना चाहिए?
0: कभी कभी प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार होता है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, वैक्सीन का प्रचार अभिनेता करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स स्टार करते हैं, सेलिब्रिटी करते हैं, तो लोग वैक्सीन लेते हैं। तो अगर अभिनेता, स्पोर्ट्स स्टार यही जेनरिक दवा लेके बोले कि मैं भी अपने घर में जेनरिक दवा लेता हूँ, तो कैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे? और हर चिकित्सक चाहता है कि उनका मरीज कम पैसे में स्वस्थ हो, तो वो अगले बार भी उनके पास आएगा, निजी चिकित्सक। तो निजी चिकित्सक ऐसा भ्रामक प्रचार करने का हिम्मत ही नहीं करेंगे। आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है और सब कोई सोशल मीडिया से डरता है, खास करके जिनका भी पब्लिक डीलिंग होता है वो सोशल मीडिया से तो डरता है। लेकिन जिस दिन हमारे सेलिब्रिटी प्रचार करने लगे कि वो भी अपना घर में जेनरिक दवा लेते हैं, तो लोग जरूर विश्वास करेंगे और लोग भी जेनरिक दवा लेंगे।
1: जी, एक और योजना है पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, इसके तहत जो योग्य हैं उनके लिए फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड डायलिसिस दी जाती है, ये लोगों को कितना लाभ पहुंचा रही है डॉक्टर साहब?
0: डायलिसिस जब किसी का चालू होता है वो जिंदगी भर के लिए होता है, क्योंकि सब कोई ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं होते हैं।
1: जी,
0: समस्या ये होती है कि सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस करानी पड़ती है,
1: बहुत खर्ची,
0: उसके घर में एक जन को साथ जाना पड़ता है तो उसका भी 3 दिन काम छूटता है, तो कहीं ना कहीं किडनी फेलियर एक मरीज या उस परिवार को इकोनॉमिकली कमजोर कर देता है।
1: जी,
0: वहां अगर एक डायलिसिस प्रोग्राम सरकार की तरफ से मिले तो अगर वो खर्चा बच जाए, सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस का खर्चा अगर किसी का बच जाए या सब्सिडी में हो जाए, तो बहुत हद तक वो उस घर को इकोनॉमिकली बचा सकता है। क्योंकि जो लोग डायलिसिस सही तरीके से कराते हैं उनकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जितनी बराबर होती है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल तक डायलिसिस कराए हैं। हाँ, वो बहुत ही एफ्लुएंट परिवार से थे। तो अगर इस तरह की सरकारी योजना रहे तो जो मध्यम वर्ग से है या निम्न वर्ग से भी है वो भी डायलिसिस सही तरीके से करा के नॉर्मल जिंदगी जरूर जी सकते हैं।
1: जी, अभी हमारे देश में HIV के मामले बहुत ही गिर गए हैं, उस पर इन योजनाओं का क्या असर हुआ, इस पर
0: मैं पत्रकार महोदय के सामने खुलकर उनके फील्ड का तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि HIV के पीछे एक भय एक शर्म रहती है, लेकिन जितने हमारे देश के पत्रकार हैं इनके ऊपर जितना काम किया है और कहीं ना कहीं हमारे समाज से वो स्टिग्मा को हटाने में सबसे बड़ा भूमिका इन लोगों का रहा है।
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: वो स्टिग्मा हटेगा तो लोग जांच भी कराना चाहेंगे, इलाज भी कराना चाहेंगे। HIV की दवाएं किसी भी सरकारी HIV सेंटर में जो हर जिला में है वहां मुफ्त में मिलती है, हर महीने कुछ HIV की जांचें होती है वो भी वहां मुफ्त में होती है, तो कहीं ना कहीं इसने HIV के ट्रांसमिशन रेट को भी कम किया है और HIV मरीजों का सर्वाइवल को भी बढ़ाया है।
2: पहले लोग लज्जाजनक मानते थे इसे जांच कराना, किसी को बताना, डॉक्टर के पास तक जाने में लोग संकोच करते थे, मुझे लगता है ये चीजें खत्म हुई हैं और अब लोग जाते हैं जांच भी कराते हैं और दवाइयों से अपना इलाज भी उनका चल रहा है। एक चीज पूनम जी, मैं एक चीज जोड़ दूं, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है स्वास्थ्य की, हमारे देश में सबसे बड़ा था कि अभिशाप कि टीबी से बहुत ज्यादा लोग मरते थे, मौतें बहुत अधिक होती थी और टीबी जिसको हो जाए समझिए उस व्यक्ति के लिए एक तरफ पूरे पारिवारिक तो अभिशाप था ही, सामाजिक अभिशाप रहता था, वो किनारे में छोड़ दिया गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, सुनी भी है, कथा कहानी की किसी को टीबी हुआ तो ले जाकर सैनिटोरियम में छोड़ दीजिए, वो अपना बेचारा भाग के भरोसे है। लेकिन अब ये चीजें बदली हैं, टीबी से जो वैश्विक दर है मौतों की वो बहुत तेजी से गिरावट आई है और ये एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी चीज मलेरिया के बारे में, मलेरिया के बारे में तो झारखंड जैसे राज्य में हम लोगों ने देखा बड़ी संख्या में लोग मरते रहे। पालसीफेरा मलेरिया होता है जिस सर पे चढ़ जाता है, सामान्य मलेरिया, हमारे कई पुलिस और सेना के जवान जो अपने अपने क्षेत्र में तैनात थे उनको मलेरिया का शिकार हुए हैं। लेकिन एक रिकॉर्ड है 2017 तक देश के अंदर में करीब 78% कमी आई है, तो ये मुझे लगता है डॉक्टर साहब इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे कि ये मलेरिया पे हम लोगों ने कैसे क्यों नियंत्रण कर पाने में सफलता पाई है और आगे कब तक इसे पूरी तरह कंट्रोल।
0: बहुत समय ना हम लोग ये बड़े बड़े संख्या समझ नहीं पाते हैं, इसका मैं सबसे सीधा उदाहरण देता हूँ। आयुष्मान भारत आने के बाद से टीबी मलेरिया और मेटरनल मोर्टेलिटी में जितना सुधार हुआ है, मतलब जितने लोगों की जान बची है, यूरोप के 2-3 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस योजना ने इतने लोगों को निश्चित मृत्यु से बचा दिया है और ये निश्चित मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था कि 3 से 5 दिन भर्ती के पैसे नहीं होने के कारण, निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग में वो फंड्स नहीं होने के कारण मलेरिया निमोनिया टीबी से मृत्यु होती थी। जो जब से ये सरकारी योजनाएं आए हैं और लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सुविधा मिलने लगी है वो बचने लगे हैं, और अगर 12 साल के आंकड़े को पकड़ेंगे, इतने लोग बचे हैं जिनकी जनसंख्या इसमें यूरोप का 1 से 3 देश समा सकता है
1: जी।
0: कैंसर पहले मध्यम वर्ग सोचता ही नहीं था, कैंसर सुनते ही हथियार डाल देता था
1: जी।
0: लेकिन आजकल मुफ्त में जांच के कारण कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा रहा है, कैंसर का प्रारंभिक ट्रीटमेंट जल्दी हो रहा है, जो आगे कैंसर को वापस लौटने से बचने के लिए भी उस परिवार को सक्षम लग रहा है
1: जी। और अभी हमने हाल ही में देखा कि कोविड ने कैसे त्रस्त कर दिया न केवल भारत को लेकिन पूरे विश्व को।

0: और कोविड जैसी बीमारी को पहले ही जांचने परखने के लिए या फिर उसको फैलने से रोकने के लिए योजना के तहत पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की तैयारी के लिए योजना लाई गई पीएम अभीम। ये पीएम अभीम जो है वो सर्वेलांस, स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट करती है। ये कितना दूरदर्शी सोच है सरकार की, इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी मिस्टर जी।
1: मुझे लगता है कि कोविड पे सचमुच कहा जाए तो विश्व के अंदर जितने बड़े बड़े देश जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उससे कहीं आगे बढ़कर हमारी सरकार ने काम किया। और कोविड का जो वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर साहब ने अभी प्रारंभ में कहा कि जो लोगों के प्रति गलत दुष्प्रचार था वो दुष्प्रचार ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि जिन लोगों ने इस दुष्प्रचार को आग भी लगाई या इसे आगे बढ़ाया वह सारे लोग इसमें शामिल हुए। वैक्सीनेशन होने के बाद से मुझे लगता है कि मोर्टेलिटी रेट भी घटी और बड़ी संख्या में लोगों की जान बची, और ये हमारी सरकार की, भारत सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र में कदम रखना कि भाई जब पूरा पेंडेमिक पूरा फैला हुआ हो, चारों तरफ जान पर बनी है, और ऐसे में वैक्सीन तैयार करना, करवाना, उसका टेस्ट करवाना, और खुद प्रधानमंत्री आगे चलकर पहले स्वयं अपना लेते हैं वैक्सीन, तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि विश्वास पैदा करने के लिए कि लोग पहले मैं ही लेता हूँ, मरना होगा तो मैं मरूंगा। कहने का मतलब ये कि एक पूरे विश्व को सामने एक नजीर रखी है, और कई देशों को हम लोगों ने भेजा भी वैक्सीन जहां उन लोगों की जान बचाई गई। इसलिए इस क्षेत्र में तो कम से कम मैं स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले डॉक्टर, जो टेक्नीशियन है, जितने विशेषज्ञ हैं, इन सबों को बधाई देना चाहिए। मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों ने बधाई भी दी है कि इनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि लोगों ने जान भी बचाई और ये इस क्षेत्र में सफलता पाके, वैक्सीन बना के एक बहुत बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जी पूनम
0: जी, जी सरकार इन सब योजना के अलावा, या हम कहें कि इसी में समाहित है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। ये टोबैको भी आगे चल करके जो हमारा स्वास्थ्य समीकरण है उसको बहुत बिगाड़ती है, तो ये जो टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है वो किस तरीके से सहायता करेगी स्वास्थ्य में?
2: क्योंकि टोबैको से एक बहुत बड़ा राजस्व मिलता है तो सरकार चाह के भी उसको बंद तो नहीं कर सकती है
0: जी।
2: लेकिन डिजिटल मिशन से मेरे जैसे चिकित्सक या मिश्रा जी जैसे जर्नलिस्ट
0: जी।
2: या सोशल वर्कर जितना हम लोग ज्ञान बढ़ाए कि टोबैको से क्या क्या नुकसाने होती है
0: जी।
2: तो कहीं ना कहीं हमारे जनसंख्या के मन में वो चीज आएगा कि टोबैको से हटो
0: जी।
2: जब टोबैको की डिमांड कम हो जाएगी तो टोबैको का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी
0: जी।
2: तो कहीं ना कहीं डिजिटल मिशन को इसमें आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बात जहां टोबैको से शुरू होती है तो अपने आप बाकी सारे नशाकारी पदार्थ में चली जाती है
0: जी।
2: तो उन सबको रोकने का सबसे मजबूत उपाय है हेल्थ एडुकेशन
0: जी।
2: और कहीं ना कहीं डिजिटल मिशन हमारे हेल्थ एडुकेशन को बहुत आगे तक ले जा रहा है
0: जी। ये सब जो सुविधाएं हैं आयुष्मान भारत के तहत, लोगों को पता चले इसके लिए सरकार ऐप भी लेकर आई है कि ऐप के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिले। लेकिन भारत जैसे देश में एक बड़ी समस्या होती है भाषा की, हर क्षेत्र में इतनी भाषाएं हैं, तो इंग्लिश सभी के समझ में नहीं है, हिंदी भी बहुत सारे क्षेत्र में नहीं बोली जाती, तो सरकार ने 19 भाषाओं में इस ऐप को ट्रांसलेट किया है जिससे कि लोग हर योजना के बारे में जानकारी लें और अपनी चुनी हुई भाषा में। ये आज के डिजिटल युग में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।
1: इसमें और मैं जोड़ दूं आपके अपने जो जानकारी दी भाषा के क्षेत्र में, एक स्टैटिस्टिकल अपना जो स्टैटिक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, इन लोगों ने 2025 में एक आंकड़ा जारी किया था। आंकड़ा होती है कि भाई सर्वे किया गया, उस सर्वे में 13 लाख से अधिक परिवारों का जो सर्वे किया था उसमें पता चला कि पहले से कहीं अधिक जो भारतीय हैं, अपने हमारे देश के नागरिक हैं। पहले होता क्या था कि किसी को बीमार पड़ा तो गुनी ओझा गांव तक में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी ये समस्याएं थी, डॉक्टर पास बहुत कम जाना, अपने से मेडिसिन ले लेना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब है क्या कि अधिकतर परिवार जो है, आंकड़े देखें तो 13 लाख से ज्यादा परिवारों ने क्या है कि ये भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उसके साथ जुड़कर उसकी सेवाएं ले रहे हैं। उसमें नतीजा ये है कि सरकारी अस्पतालों में आप देखें या क्लिनिक्स में देखें तो बाहरी जो आउटडोर पेशेंट हैं उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ी दिखी जाती है, चाहे उनका परामर्श लेना हो। लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक भी हो गए हैं कि जरूर सलाह लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है, डॉक्टर साहब बताएं क्या करें। ये चीजें नहीं थी पहले। उसके अलावा फिर निदान वगैरह का काम तो चल ही रहा होता है, फिर उसमें जांच करवाना, फिर दवाइयां जो प्रिस्क्राइब की जाती
0: है, आयुर्वेद पे बहुत ज्यादा,
1: हाँ आयुर्वेद पे ज्यादा करते थे, कुछ ट्रेडिशनल जो अपना हमारी चिकित्सा पद्धति थी गांव में उस पर डिपेंडेंट ज्यादा थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।

0: लोग सब कुछ करते हुए भी कि भाई कोविड के समय भी देखा कि कुछ चीजें थी ठीक है कि कुछ चीजें हम लोग घर की बनी हुई चीजें खाते पीते ये करते थे, लेकिन अल्टीमेटली कहते हैं ना कि जान तो बचाया, वैक्सीन ने लोगों को प्रोटेक्ट किया। तो ये जो चिकित्सा पद्धति है बात अगर इसकी जो सुविधाएं जितनी मिल रही हैं लोग उसको अवेल कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और एक अलग मसला है कि हमारी जो कैपेसिटी है अस्पताल और डॉक्टर नर्सेज ये और ज्यादा होनी चाहिए।
1: जी जी, और सरकार ने जुलाई 2023 में एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है आयुष वीजा, और ये योजना है उन फॉरेन नेशनल्स के लिए जो भारत में आकर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी योजना है कि ऐसी योजनाएं सिर्फ हम तक सीमित ना रहें, लेकिन हमारे आसपास के पड़ोसी देश या फिर और अन्य देश जो अगर भारत आना चाहते हैं एज अ पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, उनको फायदा होगा। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी डॉक्टर साहब।
2: कोरोना काल में कहीं ना कहीं हम लोग दिखाए कि हम लोग सही में विश्व गुरु थे
1: जी।
2: कि उस समय हम लोग हमारे करेंसी या इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा, कितने लोगों को बचाया जा सकता है उसके बारे में सोचा
1: जी।
2: ये निस्वार्थ चिकित्सा सेवा की भावना जो हमारे देश में है विश्व के बहुत देशों में है ही नहीं। तो हमारे देश को हमेशा चिकित्सा के लिए आसपास के देश विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारा राज्य झारखंड में नेपाल के साथ एक इमोशनल रिलेशन है, क्योंकि पहले जो बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस थे उसके अधिकतर नियुक्ति नेपालीज नेशनल थे
1: जी।
2: वे कुछ झारखंड में रिटायरमेंट के बाद रह जाते थे, कुछ वापस लौट जाते थे, लेकिन अभी भी बिना किसी योजना से वो नेपाल से मरीज रांची ले आते हैं या झारखंड धनबाद टाटा ले आते हैं इलाज के लिए। तो अगर इस तरह का आयुष्मान वीजा योजना में ये आ जाए कि आसपास से देश से भी लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए यहाँ जरूर आना चाहेंगे।
1: मिश्र जी, आयुष वीजा इसके क्या दूरगामी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं हमारी इकोनॉमी को?
0: मुझे लगता है कि बाहर से जो ऐसे देश जहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं है और ऐसे लोग जो बाहर की चिकित्सा व्यवस्था से बहुत अधिक संतुष्ट नहीं होते हैं, उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा हब हो सकता है। और उसका लाभ उन नागरिकों को भी होगा जो भारत से जुड़े हैं या भारत के हैं, एनआरआई वगैरह हैं।
1: तो स्वस्थ नागरिक एक विकसित देश और स्वस्थ देश की नींव होते हैं, और इसी दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। श्रोताओं, आज की चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे थे डॉक्टर आत्री गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ रांची, और श्री चंदन कुमार मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार रांची। डॉक्टर गंगोपाध्याय और मिश्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सी बातें बताई, बहुत सी शंकाएं दूर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद,
0: आपका भी धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर विशेष परिचर्चा। आज की परिचर्चा का विषय था स्वास्थ्य सेवाएं। परिचर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर आत्री गंगोपाध्याय और श्री चंदन कुमार मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार रांची। परिचर्चा का संचालन कर रही थी पूनम क्रिकेटा। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुन रहे थे।
4: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उनके उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है। मंत्री डॉ इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं। वहीं भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि एनडीए के विधायक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए मतदान करेंगे। नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग ले रहे हैं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हैं। स्वच्छ भारत मिशन और सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है।

0: रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। रांची में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में आरोपी मोनू कुमार और सोनू शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें। आज चर्चा होगी ग्रामीण विकास में जेएसएलपीएस की भूमिका और उपलब्धियां, आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण में जेएसएलपीएस का योगदान। भेंट वार्ताकार हैं श्री मुकेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर जेएलएसपीएस और मांझी। इनसे बातचीत कर रही हैं सिंधु मिश्रा। प्रस्तुति गौरव पांडे की।

0: कार्यक्रम अवसर चले की एक और कड़ी के साथ मैं सिंधु मिश्रा आप सबसे मुखातिब हूँ, करती हूँ आपका कार्यक्रम में स्वागत। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे पूरे झारखंड राज्य में महिला समूहों का निर्माण करके बेहद सफलतापूर्वक सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। SSG ग्रुप से जुड़कर महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उन्हें आजीविका भी उपलब्ध कराई जा रही है और वे महिलाएं जो ग्रामीण स्तर से उठकर अब शहर की ओर आ रही हैं, साथ ही साथ जो महिलाएं अपने घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो बाहर निकल रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ हो रही है और साथ ही साथ वे परिवार के भरण पोषण में भी अपना सहयोग दे रही हैं। श्रोताओं, महिलाओं का समूह बनाकर काम किए जा रहे हैं। महिलाओं के समूह का निर्माण करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया जा रहा है और इसमें एक अहम भूमिका निभा रही है JSLPS आजीविका मिशन के द्वारा। महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है, साथ ही साथ जिन महिलाओं की जिस क्षेत्र में रुचि है उस अनुरूप उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी रुचि के अनुसार उन्हें काम दिए जा रहे हैं ताकि वे काम मन लगाकर करें और साथ ही साथ उन्हें उसमें सफलता भी मिले और इस हेतु JSLPS तत्पर है। आज हमारी कार्यक्रम में बातें हो रही हैं JSLPS किस तरह से महिला समूहों को सुदृढ़ बनाने में और स्वरोजगार दिलाने में सहयोग कर रहा है और महिला समूहों के लिए JSLPS द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं, आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। ओरमांझी प्रखंड में कार्यरत JSLPS के BPM श्री मुकेश कुमार जी से कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: मैं आपसे मुकेश जी एक जानकारी लेना चाहूंगी कि JSLPS के द्वारा क्या क्या योजनाएं यहाँ पे प्रमुख रूप से प्रखंड में चलाई जा रही।
1: JSLPS 2012 में ओरमांझी ब्लॉक में शुरू हुआ था।
0: अच्छा।
1: और 2012 से कंटिन्यू एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में और JSLPS काम कर रहा है और JSLPS के द्वारा बहुत से बेनिफिशियरी लोग को लाभ मिला है और यहाँ पे बेसिकली जब हम लोग काम करते हैं तो गांव की जो पुअर से भी पुअर जो महिलाएं हैं उन लोगों के बीच में काम करते हैं और हम लोग अभी तक ओरमांझी प्रखंड में लगभग 1220 समूह का गठन किए हैं। 1220 समूह पूरा एकदम अच्छे से बैठक करते हैं, बचत करते हैं, अपना इंटरलोनिंग करते हैं, पंचसूत्रा का पालन करते हैं और जो JSLPS का नॉर्म्स है सभी चीज़ को वो फॉलो करते हैं। समूह बनने के बाद हम लोग यहाँ पे ग्राम संगठन का निर्माण किए हैं और अभी तक 89 BO का ग्राम संगठन का हम लोग ने निर्माण कर चुका है और हरेक BO में लगभग 10 से 25 महिला समूह को जोड़ करके हम लोग

0: एक ग्राम संगठन का निर्माण किए हैं और ये ग्राम संगठन का निर्माण में हम लोग की ICRP ड्राइव चलती है। ड्राइव के माध्यम से हम लोग बीओ का गठन करते हैं।
1: अच्छा।
0: उस बीओ में बीओ के बाद हम लोगों ने CLF का गठन किया है। यहाँ पे 4 CLF है और जिसका फॉर्मेशन लास्ट ईयर 2000 CLF है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। और क्लस्टर लेवल फेडरेशन में लगभग 10 से 25 बीओ मिला करके एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन बना जाता है। वो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है और सभी CLF के माध्यम से दीदी लोग को हम लोग जो भी सरकार की योजनाएं होती है, गतिविधि होती है, उसको हम लोग वहाँ बताते हैं और लेक डाउन बीओ के माध्यम से, SAG के माध्यम से वो नीचे के स्तर से दीदी लोग तक पहुँच जाता है ये समाचार। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग ने बनाया है कि CLF के माध्यम से, बीओ के माध्यम से और SAG के माध्यम से हम लोग कोई भी काम आसानी से जमीनी स्तर पर काम को शुरू कर सकते हैं। और हमारे ओरमांझी प्रखंड में लगभग 4 क्लस्टर है। 4 क्लस्टर को अलग अलग जोन में हम लोग डिवाइड किए हैं, जिसमें एक ओरमांझी क्लस्टर है, बारीडी क्लस्टर है, चुटुपालू क्लस्टर है और कुच्चू क्लस्टर है।
1: अच्छा।
0: और सभी क्लस्टर में लगभग 265 से 325 के बीच में अलग अलग समूह बने हुए हैं।
1: अच्छा।
0: सभी को अगर हम लोग मिला देते हैं तो 1220 समूह हमारे यहाँ पे बना हुआ है। सभी समूह में 890 समूह को हम लोग ने बैंक से जोड़ा है। बैंक से जोड़ने का मकसद है कि जो गरीबी स्तर से डूबी हुई दीदी लोग है, उन लोग को कैसे आजीविका को हम लोग बढ़ा सकते हैं।
1: हाँ।
0: और उस आजीविका में खेती से संबंधित कुछ काम करते हैं, कुछ गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, कोई लोग दीदी लोग जो बांस का काम करती है उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे करके उनके बांस के सामान को हम लोग रांची या सरस मेला लगता है तो उसमें हम लोग उन लोग को भेजते हैं। इस तरह से हम लोग एक ग्राम स्तर से, विलेज स्तर से, पंचायत स्तर से हम लोग के यहाँ पे कैडर दीदी लोग है।
2: ये बात तो आपने बहुत ही अच्छी बताई कि आपने 1220 के तकरीबन आपने स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रखा है, विशेष तौर से ओरमांझी प्रखंड में। मुकेश जी, ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है कि जो महिलाएं बिल्कुल नीचे स्तर की, यानी गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाली जो महिलाएं हैं, आज वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और जो आपने कहा कि मुख्य उनका उद्देश्य है आजीविका, तो आजीविका के लिए आप प्रयासरत हैं और मैं समझती हूँ, और जो मैंने देखा है और यहाँ की महिलाओं से मैंने भी जो बातचीत की है और उन्हें देखा है, तो आज वो दृढ़ता उनमें देखने को मिल रही है। मुकेश जी, मैं जानना चाहूंगी कि JSLPS किस तरह से इन स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं अपने पैरों पर जो खड़ी हो रही हैं, स्वरोजगार के लिए इच्छुक हैं और स्वरोजगार कर रही हैं, ऐसी महिलाओं को JSLPS किस तरह से सहायता पहुंचाता है?
0: मैम, ऐसा है कि यहाँ पे जैसे हम लोग की स्वयं सहायता समूह बनी हुई है, तो स्वयं सहायता समूह में ही हम लोग जब हमारी ड्राइव चलती है, जब SAG जब हमारा बनता है या जब हमारा ग्राम संगठन बनता है, उस समय एक आम सभा होता है। आम सभा में लगभग उस गांव के जितने भी घर है, अगर उस गांव में एक उदाहरण लेते हैं, अगर हमारे ओरमांझी गांव है, उस गांव में अगर हमारा 150 परिवार है, तो 150 परिवार उस आम सभा में लोग आते हैं।
1: अच्छा।
0: और वहां पे लोगों का चुनाव किया जाता है।
1: अच्छा।
0: कि जिसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर कोई दीदी बोलती है कि नहीं, हम कृषि में अच्छा काम कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: और हम 5 एकड़ जमीन में खेती करते हैं, और अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो हम लोग वहाँ वोटिंग करवा लेते हैं। कि अगर हम लोग वोटिंग नहीं कराएंगे तो लोग सोचेगा कि नहीं, इनको जिसको मनाता है उसका सिलेक्शन कर देते हैं। इसलिए गांव की दीदी लोग आपस में ही वो वोटिंग का काम करती है। अगर वोट में जिसका नाम ज़्यादा लिया जाता है तो उसको दीदी का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसी में हम लोग AKM दीदी है, आजीविका कृषक मित्र, वो खेती से संबंधित काम करेगी। जितने भी तरह का खेती होगा उसको हम लोग चयन करके, जितने भी दीदी लोग हैं उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं। बाहर में मतलब हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो सरकार के साथ हमारा कन्वर्जेंस होता है, वहाँ हम लोग उनको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। वहाँ वो 3 दिन का या 5 दिन का खेती से संबंधित चाहे जो भी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का काम हो, ड्रिप इरिगेशन का काम हो, वेजिटेबल क्रॉप का काम हो, सभी का काम वो वहाँ पे सिखाया जाता है। उसी तरह जब हमारा जब ग्राम सभा हुआ तो एक तो हो गया हमारा आजीविका कृषक सखी का चयन हो गया, उसी तरह हमारा आजीविका पशु सखी का भी सिलेक्शन किया जाता है। पशु सखी का काम है कि जो गांव में है, बैल है, मुर्गी है, बत्तख है, बकरी है, इन लोग को टीकाकरण अगर समय पे नहीं होता तो मर जाता है, और मरता है तो दीदी लोग को बहुत ज़्यादा पैसा का हार्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए वैसे दीदी को हम लोग चुन लेते हैं कि उसी गाँव की रहेगी, कम से कम मैट्रिक पास हो और उसको जानवर के साथ अच्छा लगाव हो, तो वैसे दीदी का भी उसी आम सभा में सिलेक्शन किया जाता है ताकि उसको अच्छा से हम लोग सिखा सके। तो एक प्रशिक्षण का वो भी माध्यम था कि हम खेती के लिए भी दीदी को चुन लिए, पशु सखी के लिए पशु का जो भी काम होगा वो उस दीदी को सिलेक्शन कर लिए, और ये दोनों का प्रशिक्षण हम लोग करवा लेते हैं। करवाने के बाद ये लोग अपने फील्ड में काम करना शुरू करती है। दवा हम लोग को या तो JSLPS के द्वारा मिल जाता है या कन्वर्जेंस हम लोग ब्लॉक से करवा देते हैं। सरकार बहुत सारी दवा जो है मुफ्त में देती है, लेकिन हम लोग मुफ्त वाला जो काम है वो अब छूट दिए हैं। अच्छा। कुछ पैसा अगर देते हैं तो दीदी को भी काम करने में अच्छा लगता है, और अगर बेनिफिशियरी को भी लगता है कि हम खरीद के लिए हैं तो उनको भी काम करने में अच्छा लगता है कि नहीं हमारा जानवर सही होता है। और फ्री फ्री अब हम लोग मतलब इस बार से बंद कर दिए कि अब कोई भी दवा जो है वो फ्री में नहीं मिलेगा। जो दीदी को लागत लगेगा सरकार जो भी उसको 10 रुपए में दे रही है, 15 रुपए में दे रही है, तो वो बेनिफिशियरी से हम लोग वो लेते हैं।
2: अच्छा।
0: इस तरह करके उनको प्रशिक्षण दिया गया, और अभी हम लोग के ओरमांझी प्रखंड में 45 पशु सखी है।
2: अच्छा।
0: पूरे हम लोग गांव को तो सैचुरेशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन 45 समूह है आजीविका पशु सखी है। अच्छा। वो लोग पूरे गाँव में अपना वैक्सीनेशन का काम करते हैं, जिसमें से बत्तख को दवा पिलाती है, मुर्गी को दवा पिलाती है, खैरा रोग होता है या नाखून में पीलापन हो जाता है तो उस सब के लिए वो दवा उनके पास अवेलेबल है।
2: अच्छा।
0: और वो दवा हम लोग JSLPS के माध्यम से दिलवाते हैं। उसी तरह जब हमारा खेती का सीजन आता है तो हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से कन्वर्जेंस किए हैं।
2: अच्छा।
0: कन्वर्जेंस के माध्यम से उन लोगों को सीड मिल जाता है, धान का सीड मिल जाता है, उसमें कभी अगर 50% सब्सिडी होता है, कभी 60% सब्सिडी होता है। तो इस तरह खेती का काम अभी हम लोग के यहाँ पे अभी हम लोग SRI विधि से खेती कर रहे हैं। द लाइन सोइंग होता है, उसको हम लोग स्त्री विधि से खेती करवा रहे हैं, और खेती में बहुत कम पानी में अच्छा धान भी लग जाता है, और स्त्री विधि में जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो JSLPS के माध्यम से दिया जाता है। तो जो भी दीदी हमारी जो आजीविका कृषक मित्र है उन लोग को प्रशिक्षण है, वो गांव की दीदी लोग को कन्विंस करते हैं कि आपको श्री विधि लगाएंगे तो पानी बचेगा। अभी तो ऐसे भी पानी का सीजन बहुत खत्म हो गया है तो पानी हो नहीं रहा है, तो स्टार्टिंग में एक बार अगर उसको पानी मिल जाएगा तो उसका ग्रोथ जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो इस तरह करके वो लोग करते हैं। अभी वेजिटेबल क्रॉप भी हम लोग लगवा रहे हैं, और वेजिटेबल क्रॉप भी हम लोग सीरीज वाइज लगा रहे हैं, मतलब उसको उसका भी जो काम होता है वो लाइन सोइंग ही हो रहा है।
2: अच्छा।
0: सेम। और अभी हम लोग का अभी दो नया प्रोजेक्ट हम लोग अभी शुरू किए हैं।
2: अच्छा।
0: एक जायका प्रोजेक्ट जापान से वो प्रोजेक्ट मिला है JSLPS को, एक NRET पे प्रोजेक्ट है वो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। NRET पे जो है वो क्लस्टर बेस्ड काम होगा।
2: अच्छा।
0: क्लस्टर में मतलब एक क्लस्टर हम लोग चुट्टूपालू आजीविका महिला ग्राम संगठन जो है उसको हम लोग बनाए हैं, और यहाँ पे NRET में पहले क्या होता था कि लोग नन फार्म खाली खेती करते थे, ऑफ फार्म को ध्यान लोग नहीं देते थे, तो इसलिए इस बार सरकार का जो योजना आया है कि ऑफ फार्म को भी हम लोग बढ़ावा देंगे, चाहे वो ग्रोसरी का दुकान हो, ब्यूटी पार्लर हो, चाहे बांस का अगर कोई बांस वस्तु का कोई काम करना चाहते हैं तो उस तरह का हम लोग का काम करेंगे। तो ये अभी इनिशियल फेज में मार्च से हम लोग का शुरू हुआ है।
2: अच्छा।
0: तो अभी दो तीन अभी कम से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है, ये अभी लंबा चलेगा, और इसमें भी वही स्वयं सहायता समूह है, वही VU है, वही CLF के दीदी लोग है। और एक अभी नया हम लोग PG बना रहे हैं, प्रोड्यूसर ग्रुप।
2: अच्छा।
0: जैसे गाँव में बहुत सा इमली का पेड़ है, महुआ का पेड़ है, लेकिन वो लोग उसका कुछ काम नहीं कर पाते हैं, तो प्रयोग नहीं कर पाते, तो हम लोग PG बना करके, और ये PG भी उस ग्रुप की दीदी ही है, लेकिन एक अलग ग्रुप हो गया।
2: अच्छा।
0: कि वो केवल मार्केटिंग का काम करेगी।
2: क्या बताया आपने?
0: प्रोड्यूसर ग्रुप।
2: प्रोड्यूसर।
0: हाँ, अगर मान लीजिए वही महुआ का काम हो रहा है, इमली का काम हो रहा है, कहीं मधुमक्खी का काम होगा, तो ये ग्रुप जो है इनिशिएटिव लेकर आगे काम करेगा।
2: अच्छा।
0: क्योंकि स्वयं सहायता समूह जो है SHG जो है वो छोटे पैमाने पे है, उसका जो मॉनिटरिंग का चीज है वो नहीं कर पाते हैं हम लोग।
2: हाँ।
0: और 15 दीदी में हो सकता है कि 2 दीदी ही इंटरेस्ट ले, बाकी 8 दीदी लोग इंटरेस्ट ना ले, तो वैसे करके हम लोग जब ग्राम संगठन बना तो ग्राम संगठन में भी इसका नॉमिनेशन किया गया कि कौन दीदी जो है वो PG समूह में रहना चाहती है। तो इसमें कम से कम 50 दीदी एक प्रोड्यूसर कंपनी जो बनेगा उसमें 50 दीदी को इन्वॉल्व करना है,
2: यानी दीदियों की रुचियों का भी
0: रुचि के ध्यान रखा गया है।
2: सही बात,
0: रुचि रहेगा तभी हमारा काम होगा, रुचि नहीं रहेगा तो हमारा काम जो है एकदम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसलिए रुचि को ध्यान करके इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया कि इसको अच्छा से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाए। तो अभी तक हमारे ओरमांझी में 20 जो है पीजी हमने बनाया है और 20 पीजी में 3-4 जो पीजी है वो काम करना शुरू कर दिया है अपना।

0: हमारा जो है अच्छा से प्रोग्राम चल रहा है, और जायका जो प्रोग्राम है इसमें सरकार एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है, उसमें बड़े किसानों को उसमें लाभ होता है। और जो जायका प्रोग्राम है
1: जो बड़े पैमाने पे
0: कृषि कर रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना,
1: अच्छा,
0: तो वो उसमें है कि एक एकड़ जमीन कम से कम होना चाहिए तभी हम उसमें ड्रिप लगा सकते हैं। और हमारा जो JSLPS है और जायका जो फंडिंग प्रोजेक्ट है इसमें 25 डिसमिल अगर जमीन है हमारे पास तो हम आराम से खेती कर सकते हैं।
1: सही बात है।
0: तो ये बेनिफिट अभी हम लोग किसान लोग को दे रहे हैं, जिसमें से हमारे पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा ड्रिप अगर लगा है तो ओरमांझी ब्लॉक में लगा है। यहाँ पे लगभग 250 फार्मर को हम लोग ने ड्रिप इरिगेशन से खेती करना शुरू करवा दिया है। और एक ड्रिप इरिगेशन जब लगता है तो एक साल में वो 3 क्रॉप निकाल लेते हैं। और ऐसे अगर हम लोग सामान्य खेती करें तो एक खेती के बाद लोग के पास या तो पैसा का अभाव हो जाता है या पानी का अभाव हो जाता है या फिर वो सीजन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं हमारे पास तो पानी है नहीं तो हम खेती कैसे करें। पर ड्रिप में अगर हमारे पास पानी का थोड़ा सा भी स्रोत है, अगर कुआं भी है, तालाब भी है और अगर बोरिंग है तो हमको तो टपक सिंचाई से मतलब है, तो बूंद बूंद से हमारा खेती जो है बहुत अच्छा हो जाता है। और अभी हमारे 2-3 अच्छे किसान हैं, हम लोग 250 के साथ लगाए हैं, तो 55-60 ऐसे किसान हैं जो साल में अभी हम लोग तरबूज वाटर मेलन का खेती किए हैं।
1: अच्छा।
0: और कम से कम यहाँ 10 टन तरबूज हम लोगों ने कोडरमा बंगाल उड़ीसा ऐसे करके हम लोगों ने इसको भेजा है और कम लागत में अच्छा उपज है। अगर हम 5,000 का पूंजी हम उस ड्रिप में लगा रहे हैं तो हम 50,000 भी वहाँ से कमा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी ड्रिप इरिगेशन अभी ओरमांझी में चल रहा है।
1: मुकेश जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, कृषि के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है इस प्रखंड में। और साथ ही साथ आपने बताया महिलाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है जैसे इमली के पेड़ों पर, महुआ पर, बहुत अच्छी बात है। मुकेश जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो खेती का कहा कि ड्रिप इरिगेशन से खेती की जा रही है इसमें किसानों को लाभ पहुंच रहा है, लेकिन इसमें जो बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पे जो कृषक काम कर रहे हैं उनको इससे ज्यादा फायदा पहुंचेगा।
0: मैम कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसमें एक एकड़ में 7,000 रुपया लगता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन उसका जो वो लोग टेक्निकल सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अगर कंपनी है, अगर हमारा नेटा फेम अगर हमारी कंपनी है या कोई कंपनी है तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको केवल लगा देंगे जमीन पे, उसके बाद वो खराब हो रहा अच्छा हो रहा उसे उसको कोई मतलब नहीं है। बट हमारा जो ये जायका जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग उनको ड्रिप तो लगा देते हैं और अच्छा ड्रिप लगाते हैं, क्योंकि देखिए कम अगर जमीन है तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें इनपुट अपना लगा सकते हैं। पर हमारे यहाँ पे फील्ड थेमेटिक कोऑर्डिनेटर लोग जो है वो फील्ड में रह करके उन लोगों को एग्रीकल्चर का सपोर्ट हमेशा देते रहते हैं। मतलब कहने का कि अगर हम उनको अच्छा बीज के बारे में बता सकते हैं, इसको कैसे लगाना उसके बारे में बता सकते हैं। पर अभी हम लोग एकदम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मतलब बढ़ रहे हैं, अभी हम लोग केमिकल फार्मिंग एकदम मतलब छोड़ने के लिए दीदी लोग को प्रयास कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें जो भी अगर वो लोग फसल लगा रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको मार्केट से लिंक करा दें। पर अभी हम लोग जैसे जो बड़े बड़े रिलायंस वाले हैं या विशाल मेगा मार्ट है उन लोग से हमारा मतलब बात हुई है हमारी संस्था को, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन लोग का जो भी फसल पैदावार है उसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कंपनी को बेचें।
1: अच्छा।
0: और ये प्रोसेस शुरू भी हो चुका है।
1: अच्छा।
0: शुरू हो गया यहाँ पे ओरमांझी से लोग आते हैं और रिलायंस वाले या बिग बाजार वाले तो यहाँ से अपना प्रोडक्शन जो है ले करके जाते हैं। तो इससे है कि दीदी लोग को बाजार में बैठना नहीं पड़ रहा है, उनको मेहनत करना नहीं पड़ रहा है कि दिन भर हम 8 घंटा बेचेंगे, मतलब खड़े रख करके बेचेंगे तो हमको क्या फायदा होगा, और घर से वो लोग तोड़ करके ले जा रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने मुकेश जी। अभी देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ विशेष तौर से देखा जाए झारखंड की बात अगर करें तो झारखंड में तो है ही, साथ ही साथ पूरे देश में जल शक्ति अभियान चलाई जा रही है जो केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और जल संरक्षण के लिए एक बहुत ही कारगर कदम ये उठाया गया है। और मैं समझती हूँ कि जो आपने ये ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताया खेती किसान कर रहे हैं इसमें, तो पानी की बचत के साथ साथ और जो मेहनत उनको उसमें मशक्कत करनी पड़ती है,
0: वो नहीं करना पड़ रहा है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। जल शक्ति अभियान जो चलाई जा रही है मुकेश जी, मैं उसके बारे में भी आपके द्वारा मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह का ये अभियान है और क्या लगता है भविष्य।

0: भविष्य में इसका क्या फायदा हमें मिलेगा?
1: जल शक्ति अभियान जो है ये भी प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा पहल है और पूरे झारखंड में क्या पूरे भारत में इस तरह का योजना चल रहा है, लेकिन हम अपने उरमांझी ब्लॉक का बात बताना चाह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारी सखी मंडल की दीदी है वो काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और इसमें सबसे मतलब अच्छा है कि हम लोग एक कन्वर्जेंस कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक का हो, CDPO के द्वारा हो, ICDS के द्वारा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो, SBM के द्वारा हो और JSLPS के द्वारा हो, सभी लोग यहाँ 5 डिपार्टमेंट मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा। और हमारे साथ BDO सर का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो हम लोग को गाइड करते हैं और उनके गाइड के अनुसार हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जल शक्ति अभियान में रैली निकलवाया है, यहाँ पे हम लोग ट्रेंच कटवाना शुरू कर दिया है और ऐसे 2-3 गाँव हैं जहाँ एक मॉडल हम लोग बना रहे हैं। लगभग हमारा एक गांव है आरा किरम गांव है जिसका लास्ट मंथ में प्रधानमंत्री जी भी अपनी वाणी से उस गांव का नाम लिए हैं और उसमें जब गांव का नाम लिए हैं तो उसमें अगर काम हुआ है तो JSLPS के द्वारा बहुत ज़्यादा उस गांव को हम लोग ने बढ़ावा दिया है और हर क्षेत्र में वहां हमारी महिला समिति भी है, हमारी VO भी है, हमारी PG भी बनी हुई है, वहां एग्रीकल्चर इक्विपमेंट भी दिया गया है और दीदी लोग बहुत अच्छे से वहां पे ग्राम संगठन का मीटिंग करते हैं, वहां वन रक्षा समिति बनाया गया है। तो हर एक गांव में हम लोग काम किए हैं जिसमें अभी जो स्वच्छता अभियान को लेकर के जहां भी चापाकल बने हुए हैं तो वहां हम लोग छोटा छोटा बना करके उसको हम लोग काम कर रहे हैं ताकि पानी का सोखता गड्ढा बन जाए, पानी कहीं वेस्टेज ना जाए, कहीं नदी में नहीं चला जाए, क्योंकि यहाँ पे 2-3 ऐसी पहाड़ की नाले हैं जो उरमांझी से होते हुए भेड़ा नदी या दामोदर नदी में चली जाती है। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि हर एक गांव में जहाँ भी चापाकल है या जहाँ भी आंगनबाड़ी सेंटर है और जहाँ पे दीदी लोग का घर है वहाँ पे एक छोटा छोटा डोभा टाइप का हम लोग बना रहे हैं या कंपोस्ट बना दे रहे हैं ताकि वहाँ सारा पानी, घर का भी पानी उस सोखता गड्ढा में चला जाए ताकि हमारा जो प्रधानमंत्री का जो सोच है कि पानी को हम लोग को बचाना है तो हम लोग सभी SAG के साथ बैठ करके, VO के साथ बैठ करके और हर गांव में हम लोग ने रैली निकाला है, दीदी लोग को जल शक्ति अभियान के बारे में बताया है और बताने के साथ साथ में हम लोग उनके साथ गांव में जा करके नाली साफ किए हैं, रोड का साफ सफाई किए हैं, जहां हम लोग को कंपीट बनाना था तो हम लोगों ने कंपोस्ट भी वहां बनाया और श्रमदान सभी दीदी अभी कर रही है। तो दीदी लोग भी जो है, सखी मंडल के दीदी जो है बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है और अच्छा भी लग रहा है कि इस तरह का प्रधानमंत्री सर का हम लोग का सोच है कि सभी जगह इस तरह का कार्यक्रम हो और हम लोग हमारे भी सोच है कि कम से कम हम जिस प्रखंड में काम करते हैं वो प्रखंड पूरी तरह से स्वच्छ हो। तो इस तरह से हम लोग ने बहुत अभी काम करें और आगे भी काम करते रहेंगे।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद मैडम आपका भी।
0: श्रोताओं, महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य हमारा भी है। हम अगर सशक्त होंगे तो हमारा परिवार, हमारा समाज, राज्य और पूरा देश सशक्त होगा और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हम कर सकेंगे। श्रोताओं, इस बातचीत के बाद आइए आपको लिए चलती हूँ मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाती हूँ एक प्यारा सा गीत।

श्रोता मित्रों, इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम आओ साथ चले का वक्त यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज इजाजत दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ साथ चलें, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार का प्रसारण किया जाएगा। 5:02 का समय होगा युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युववाणी का। पांच बजकर 30 मिनट पर श्रमिक लोक, शाम 6:00 प्रादेशिक मुख्य समाचार का प्रसारण किया जाएगा। 6:02 पर खेती बारी, 6:30 का समय होगा हमारी दुनिया कार्यक्रम का। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा, 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का। रात्रि 8:00 रजनीगंधा, 8:10 पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। विषय है वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। रात्रि 8:45 से हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10:00 संगीत का कार्यक्रम सुनहरी यादें। 10:30 शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार सबिता राय को। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा, उसके पश्चात अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म फना के इस गीत के साथ।

आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा। है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म बागबाँ से।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Die Escena.
1: आइए संतराल के बाद सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। ये गीत है फिल्म रंग से।

इस गीत के साथ ही हमारा आज का सांझ सरगम कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और प्रणव झा की जीत सुनिश्चित है। मंत्री डॉ इरफान अंसारी और दीपिका पांडे ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। रांची के बड़गाई क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़ा और धन शोधन मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने यह आदेश सुनाया। खूंटी पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र के तांबा गांव के पास छापेमारी कर लगभग 12 लाख रुपए मूल्य की करीब 2 किलो अवैध अफीम के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में जिला स्थापना सह अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य अनुकंपा नियुक्ति के दो मामले में से एक को स्वीकृति दी गई, जबकि दूसरे मामले को जांच रिपोर्ट के बाद अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपने रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ आपका दोस्त अस्मित।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं

0: नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। नशा आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है, क्यों अस्मित?
1: बिल्कुल,
0: यह न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसके परिवार, समाज और देश के विकास को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है।
1: बिल्कुल, इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना, युवाओं को नशे से दूर रखना और नशे की लत से पीड़ित लोगों को परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना है।
0: बिल्कुल, और नशे के कारण व्यक्ति की फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होती ही है, साथ ही साथ उसकी कार्य क्षमता घटती है, फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होती है और पारिवारिक संबंधों में भी तनाव होती है।
1: नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। घर में तनाव, आर्थिक कठिनाइयां और रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। और नशा केवल एक बुरी आदत नहीं अंकिता, बल्कि व्यक्ति की प्रतिभा, आत्मविश्वास और जीवन की संभावना को भी धीरे धीरे समाप्त करने वाला एक जाल है।
0: हाँ, इसमें तो नशा मुक्त भारत अभियान केवल नशे के विरुद्ध एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है, जो हर नागरिक को यह संदेश देता है कि स्वस्थ शरीर, जागरूक मन और सकारात्मक सोच ही सच्ची प्रगति का आधार है।
1: और जब देश का हर नागरिक नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, कौशल और राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएंगे, तभी एक सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत का सपना साकार होगा। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके सपने, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह देश के भविष्य को दिशा देते हैं। लेकिन जब वही युवा नशे की लत का शिकार हो जाते हैं तो उनका भविष्य, उनका स्वास्थ्य और उनके सपने सब खतरे में पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और अस्मित, नशा शुरुआत में आकर्षक या तनाव से राहत देने वाला लग तो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह व्यक्ति को कमजोर बना देता है। कई युवा गलत संगति, जिज्ञासा या दबाव में आकर नशे की ओर बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, युवावस्था जीवन का वह दौर है जब सपने सबसे बड़े होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए शक्ति भी उतनी ही अधिक चाहिए होती है। लेकिन नशे की लत इन सपनों को धीरे धीरे निगल जाती है। एक युवा जो डॉक्टर, टीचर, ऑफिसर बन सकता है, वह नशे के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाता है।
0: इसलिए जरूरी है कि युवा टेम्पररी अट्रैक्शन के बजाय अपने करियर को प्रायोरिटी दे। याद रखिए, नशा कुछ पल का सुख दे सकता है लेकिन सफलता जीवन भर का सम्मान देता है।
1: नशे से बचा हुआ युवा केवल अपने जीवन को ही नहीं संवारता बल्कि अपने परिवार की उम्मीदों और समाज के विश्वास को भी मजबूत करता है।
0: और एक जागरूक युवा अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इसलिए हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां युवा अपने सपनों को उड़ान दे सके, ना कि नशे की बेड़ियों में बंध जाए। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड ओशन डे पे। यह हर साल 8 जून को मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में महासागरों के महत्व को और उनके संरक्षण की आवश्यकता को याद दिलाने के लिए समर्पित है।
1: जी हाँ, महासागर हमारी पृथ्वी का लगभग 70% हिस्सा है। यह न केवल समुद्री जीवों का घर है बल्कि ये पूरी पृथ्वी के इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं।
0: बिल्कुल अस्मित, हम जो सांस लेते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा महासागरों में मौजूद समुद्री पौधों से आता है, और तो और या पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
1: और इसके अलावा अंकिता, दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी आजीविका के लिए महासागरों पर निर्भर हैं, चाहे वो मछली पालन हो या फिर पर्यटन।
0: लेकिन अस्मित, आज हमारे महासागर गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में गिर रहा है जिससे समुद्री जीव मर रहे हैं। समुद्र का बढ़ता तापमान रीफ को नुकसान पहुंचा रहा है। ओवर फिशिंग से समुद्री जैव विविधता कम हो रही है।
1: बिल्कुल अंकिता, और इसे रोकने या कम करने में हम भी कुछ योगदान दे सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि स्ट्रॉ, वाटर बॉटल्स वगैरह, और अपने आसपास के लोगों को महासागरों के महत्व और प्रदूषण के बारे में शिक्षित करें, और साथ ही साथ समुद्री तटों की सफाई के अभियानों में भी हिस्सा लें और ऐसे उत्पादों का समर्थन करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
0: और याद रखिए दोस्तों, महासागर केवल पानी का एक विशाल भंडार नहीं है, वे पृथ्वी की धड़कन है। अगर हम उन्हें सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी विचार के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।
2: काल नमस्कार आदाब, ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आप

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ब्राज़ील दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने 1900

0: नहीं की जा सकती है अनलेस एंड अनटिल आप उसको वाइंड अप कर दें।
1: और दोस्तों एपलेट शार्क या शार्क की एक अनोखी प्रजाति है जो अपने फिन्स का यूज समुद्र के तल पर चलने के लिए करती है।
0: और दोस्तों फिलीपींस का झंडा शांति के समय झंडे में नीली पट्टी ऊपर रहती है, लेकिन यदि देश युद्ध की स्थिति में हो तो लाल पट्टी को ऊपर करके फहराया जाता है।
1: और आगे बढ़ते हुए आइए बात करते हैं कुछ इतिहास में घटित दिनों के बारे में। 1936 आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था।
0: और दोस्तों आज ही के दिन 1948 में एयर इंडिया ने पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मुंबई से लंदन के लिए भरी थी। एयरक्राफ्ट का नाम था मालाबार प्रिंसेस और इसमें कुल पैसेंजर्स थे 35। और दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में।
1: लियोनेल मेसी प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बने।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर और वैशाली ने टोक्यो में आयोजित महिला रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जीता।
1: विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है।
0: और एयर मार्शल आशुतोष को वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया है।
1: दक्षिण कोरिया हान से ओंग शुक को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया है।
0: और दोस्तों भारत और नेपाल ने एशियाई संचालित बहुभाषी भाषा मंच विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं।
1: इसी के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, युवा वर्ग देश के विकास के लिए किसी न किसी रूप में तत्पर रहा है। आज का युवा इस बात को समझ चुका है कि यदि देश के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले जो कार्य वो कर रहा है उसे पूरी निष्ठा व लगन से करें।
1: हाँ स्मित, और यदि वह अपने द्वारा किए जाने वाला कार्य ईमानदारी एवं ठीक प्रकार से करता है तो वह देश के विकास में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा अपने घर और समाज को बेहतर दिशा देने के लिए उसे अपनी विचारधारा में भी थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि देश का निर्माण अच्छे समाज से ही होता है।
0: बिल्कुल अंकिता, युवाओं की सोच देश व समाज के प्रति लगातार बदल रही है। पिछले दशकों में आसानी से रोजगार मिलने के बाद अब कठिनाइयां सामने आने पर युवा शिक्षा में डिग्रियों के साथ ही साथ स्किल्स पर भी गंभीर हैं।
1: करियर के साथ साथ हम युवाओं को समाज के बारे में भी सोचना चाहिए। समाज की मजबूत नींव हम तभी रख सकते हैं जब हम अपने व्यक्तिगत में अच्छे गुणों का समावेश करें।
0: और समाज के लिए कुछ करते वक्त ये ना सोचे कि ये काम मैं ही क्यों करूं। इस भावना को अपने भीतर से समाप्त कर दें। युवा को आज अपने करियर के साथ ही साथ समाज के लिए भी कुछ करने का जज्बा होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तभी एक बेहतर कल का निर्माण हो सकेगा।
1: और दोस्तों, नशे की लत न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट करती है, बल्कि पूरे परिवार को भी गहरे संकट में डाल देती है।
0: बिल्कुल, आज के दौर में यह कड़वी सच्चाई है कि कई युवा केवल कूल दिखने, दोस्तों के बीच अपनी इमेज बनाने और खुद को मॉडर्न साबित करने के चक्कर में नशे की शुरुआत करते हैं। उन्हें लगता है कि सिगरेट का कश लेना या शराब का गिलास थामना उन्हें भीड़ से अलग और स्वैग वाला बनाता है, और उन्हें लगता है कि अब लोग उन्हें बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग समझेंगे।
1: बिल्कुल अस्मित, अक्सर युवा नशे की शुरुआत पीर प्रेशर में करते हैं। असल में जो व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वह कूल नहीं बल्कि कमजोर है। नशे से मिलने वाला वह क्षणिक उत्साह कूल नहीं है बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है।
0: बिल्कुल, और एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए, ये जो कभी कभार वाला नशा, इसकी आदत एक बार लग गई तो स्टाइल खत्म हो जाता है और संघर्ष जो है ना वो बाकी रह जाता है। तो दोस्तों, हमें बातें तो और भी करनी थी मगर समय अभी हमें इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसी विचार के साथ मैं आपका दोस्त अस्मित
1: और मैं आपकी दोस्त अंकिता,
0: हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम श्रमिक लोक में, जिसे लेकर हाजिर हैं हम, मैं आरती और मेरे साथ है प्रीति। प्रीति आपको भी नमस्कार।
1: बिल्कुल नमस्कार, और मेरा भी अभिनंदन स्वीकार कीजिए श्रमिक साथियों। आरती, तुम्हें नहीं लगता कि हमने प्रकृति के साथ इतनी बदसलूकी की और अब धीरे धीरे उसका परिणाम जो है वो सामने आने लगा है?
0: बिल्कुल सही कहा प्रीति तुमने, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम इधर उधर की बातें ना करके सीधे मुद्दे पर आ गई हो। तो साथियों, आज प्रीति बहुत गंभीर और चिंतित है, और हो भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत धरती पर हमने इधर उधर कचरा प्लास्टिक फेंक कर इतनी गंदगी फैला दी है। चारों तरफ हरियाली रहती थी पहले, और आज हर जगह प्लास्टिक के कचरे का अंबार लगा हुआ है।
1: बिल्कुल साथियों, हर वर्ष हम 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य महासागरों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना है।
0: बिल्कुल, तभी मैं कहूँ कि तुम इतनी गंभीर क्यों हो। साथियों, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा महासागरों से ढका है, और ये महासागर साथियों पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, क्योंकि दुनिया की कुल ऑक्सीजन का कम से कम 50% हिस्सा समुद्री पौधों और जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कह सकते हैं कि महासागर में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन और अन्य समुद्री पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए वायुमंडल की आधी ऑक्सीजन बनाते हैं।
1: बिल्कुल, ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आरती, तुम्हें पता है समुद्र पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का घर और दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है।
0: बिल्कुल साथियों, महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन, आर्थिक विकास और मानव अस्तित्व के प्रमुख आधार भी हैं। और इसके अलावा महासागर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है ना प्रति, उसको बड़ी मात्रा में को शोषित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी करने में सहायता करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, सोचो कि कितना अहम इनका रोल होता है।
1: बिल्कुल, हालांकि महासागर आज कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समुद्री प्रदूषण सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है, जिससे समुद्री जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश कर खाद्य श्रृंखला के माध्यम से आखिरकार मनुष्यों तक भी पहुंच ही जाते हैं।
0: देखो, ये कहते हैं ना कि अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो फिर मिला जुला के वापस प्रकृति अपना जो ये है रिवेंज ले ही लेती है। ये हमने कोरोना काल में भी देखा कि हमने प्लास्टिक से धरती को ढका तो प्रकृति ने हमें प्लास्टिक से ढक दिया, है ना। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही सोचने वाली बात है प्रीति, कि हर कोई अगर अपने

0: तरफ से ना थोड़ी जिम्मेदारी निभाए कि प्लास्टिक को बिल्कुल ना कहें, अपने साथ में थैले लेकर जाएं, कोशिश करें कि धरती पे प्लास्टिक का कचरा बिल्कुल नहीं डालें। मैं वैसा करती हूं,
1: खासकर सिंगल यूज।
0: हाँ, बिल्कुल नहीं। तो आप सोचिए कि छोटी छोटी भूमिका निभा के भी हम अपनी धरती को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और साथियों, विश्व महासागर दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह मानवता को अपने जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। और महासागर पृथ्वी के भविष्य से सीधे जुड़े हुए हैं। यदि समुद्र स्वस्थ रहेंगे तो जलवायु, जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और मानव जीवन भी सुरक्षित रहेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। प्लास्टिक के उपयोग में कमी, कचरे का उचित प्रबंधन, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग में और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपना कर हम सभी महासागरों के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और समुद्र महासागर सुनिश्चित करना हमारी एक अहम जिम्मेदारी है। कहते हैं ना कि आप क्या देकर जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कहीं ना कहीं अगर हमने अपने पृथ्वी को स्वच्छ रखा तो ये हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम एक अच्छी पृथ्वी यानी कि अच्छा पर्यावरण जो है जहाँ वो अपने आने वाली पीढ़ी को देकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब हमारी जिम्मेदारी ही है और मतलब जरूरी है कि हम इसे निभाए, कर्तव्य कहें।
0: प्रीति, ये भी देखने को मिलता है ना कि जो पर्यटन, जो पर्यटक स्थल है जहाँ समुद्री के हैं और वहाँ पे आप जाइए तो हम घूमने जाते हैं, अब सुकून पाते हैं, प्रकृति के करीब होते हैं, तो वो सुकून लेकर आइए। और हम बदले में क्या देकर आते हैं? प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के कचड़े, ढेर सारे इधर उधर फैले सामान जो कि हमारे समुद्र को, वो सारे समुद्र अपने अंदर में लेके चले जाते हैं और उतना कचड़ा समुद्र के अंदर जाता है। तो ये ऐसा कतई ना करें, अपने साथ एक ऐसा थैला लेके जाए कि कोई भी कचड़ा हो तो उस थैले में डाल के वापस लेकर आए ताकि समुद्र के पास बिल्कुल ना फैले। तो ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखकर हम अपनी भी भूमिका निभा सकते हैं और ये हम सबकी अहम जिम्मेदारी है। और प्रीति, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो इस पे हम जितनी भी बातें करें ना कम है और बहुत कुछ बताने के लिए हमारे साथियों को, लेकिन जिम्मेदारी है तो भाई उनके मनोरंजन की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। तो चलो पहले ये गीत सुन लेते हैं, फिर बातें और भी होंगी।

0: प्रीति, कितना खूबसूरत गाना तुमने सुनवाया और मन को नो डाउट बहुत सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल, जब आप टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो कहीं प्रकृति की गोद में चले जाइए, देखिए
0: हाँ,
1: कितना अच्छा लगता है। और इस
0: बहुत
1: गीत में भी जहाँ प्रकृति की बात है
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: बड़ा मन को सुकून मिल रहा है।
0: और फिर आसपास हम महसूस भी करने लगते हैं कि हमारे

0: सामने हरी हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है,
1: पक्षी जो है वो चहचहा रहे हैं।
0: बिल्कुल। तो सुकून की बात अगर हम करें प्रीति, तो आज हम सभी भाग दौड़ के जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं, है ना। तो साथियों, हमें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है, जिससे हम अपना कार्य अच्छे से कर सके। और वैसे भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और इस पे हम ध्यान बिल्कुल नहीं देते। बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब ध्यान देने की बात आती है तो हम कहते हैं कल से करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता है।
1: सही कहा आपने। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात कहें या करें, तो सबसे पहले नियमित रूप से योग, ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तुमने बहुत ही पते की बात कही प्रीति, क्योंकि यही हमने कहा ना कि हमें पता है कि हमें योग करना चाहिए, ये हमारे मानसिक और शारीरिक हमें बिल्कुल अच्छे से उस रूप से स्वस्थ करता है, लेकिन फिर भी हम ये कार्य नहीं करते। लेकिन साथियों, आप यही समझें कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से पैसे कमा पाएंगे, घर परिवार में सुख शांति रहेगी। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते तो आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई जो है वो डॉक्टर और दवाई में चली जाती है। तो भाई, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना, तो सबसे पहले तो अपने आप को निरोगी रखें, और निरोगी रखना तो सबसे पहले योग करें। तो शुरुआत अपने दिनचर्या की योग से करें साथियों, विशेषकर मानसिक तनाव से मुक्ति और मन की शांति के लिए योग जो है ना वो सबसे बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है। योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान और आहार प्रत्याहार शामिल है, तो योग के निरोग रहें।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है ये जून का महीना जब आता है ना, तो सारे लोगों को ये लगने लगता है कि भाई हमें योग करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जून के महीने में योगा दिवस भी आता है। और दोस्तों, अब आइए आपको सुनवाते हैं वार्ता, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वार्ताकार है वीणा कुमारी।
2: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 90। नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपके समक्ष बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 90 वर्षों का सेवा संकल्प पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। इस विषय पर सिर्फ एक संस्था की उपलब्धियों का वर्णन नहीं होता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा, सूचना एवं जन सेवा की भावना परिलक्षित होती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अर्थ है अधिक से अधिक लोगों के हित एवं सुख के लिए कार्य करना। यही भावना भारत के सार्वजनिक प्रसारण माध्यम आकाशवाणी की आत्मा है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुई, बाद में इसे आकाशवाणी का नाम मिला। आज 2026 में हमने 90 वर्षों का सफर तय कर लिया है। यह रेडियो केवल समाचार सुनाने वाला माध्यम नहीं, बल्कि यह देश को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की आग में जल रहा था, तब रेडियो ने ही लोगों में जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को जगाने का काम किया। इसके बाद 1959 में दूरदर्शन का आगमन हुआ। धीरे धीरे दूरदर्शन भारत के हर घर तक पहुंच गया, और फिर एक समय ऐसा आया जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर समाचार, शैक्षिक कार्यक्रम, कृषि से संबंधित कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने लगा। कहने का तात्पर्य यह है, यह संचार माध्यम केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, नैतिकता और राष्ट्रीय एकता का प्रचार प्रसार करने वाला एक सशक्त माध्यम है। जब प्रसार भारती की स्थापना हुई, उसके अंतर्गत रेडियो और दूरदर्शन दोनों को शामिल किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनहितकारी संदेश लोगों तक पहुंचाना। आकाशवाणी की यह 90 वर्षों की यात्रा अनेक उपलब्धियों से भरी हुई है। इसने देश के कोने कोने तक सूचना पहुंचाने का कार्य किया, चाहे प्राकृतिक आपदा का समय हो, चुनाव हो, क्रिकेट या मनोरंजन की दुनिया हो, महामारी हो या कोई राष्ट्रीय उत्सव हो, लोगों तक सटीक जानकारी पहुंचाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोविड-19 की ही बात करें तो उस महामारी के दौरान जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब दूरदर्शन और आकाशवाणी ने लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा और जागरूकता पहुंचाने का काम किया। उस वक्त जब पूरा देश आपात स्थिति से गुजर रहा था, तब गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए

0: शिक्षा का सशक्त माध्यम बना। आकाशवाणी ने भारतीय संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत अनेक भाषा एवं संस्कृति वाला देश है और आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से इन्हीं भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भाषाओं को कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। लोक संगीत, लोक गीत, लोक भाषा और क्षेत्रीय कला को पहचान दिलाने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि के क्षेत्र की ही बात करें तो इसे भी बढ़ावा देने में आकाशवाणी और दूरदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी देना, मौसम की जानकारी, खेती के नए नए उपाय और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रसारित कर उन्हें लाभान्वित करने का काम आकाशवाणी और दूरदर्शन ने किया है। आज डिजिटल युग में अनेक निजी चैनल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के प्रति लोगों की अगाध विश्वसनीयता और प्रेम का बने रहना अपने आप में एक अलग बात है। इन सब का एक महत्वपूर्ण कारण है इसकी निष्पक्ष जनसेवा और राष्ट्रीय हित की भावना। तभी तो आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी नए नए ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। आकाशवाणी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि यह लोकतंत्र की आवाज है। लोगों को जागरूक बनाता है, शिक्षा देता है और समाज को जोड़ने का काम करता है। आज जब हम 90 वर्षों के इस गौरवशाली यात्रा को याद करते हैं, तभी हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए किसी भी संस्था की सफलता सिर्फ तकनीक से नहीं बल्कि इसके उद्देश्य, सेवा भावना और लोगों का इसके प्रति विश्वास से तय होती है। आकाशवाणी ने हमेशा जनसेवा को सर्वोपरि रखा है। यदि आप अपने ज्ञान, प्रतिभा और मेहनत का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, तभी बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना सच्चे अर्थों में सार्थक होती है। और इसी उद्देश्य को लेकर चलने वाला आकाशवाणी आज अपने इस लंबे 90 वर्षों का सफर तय कर अपने मुकाम तक पहुंचा है। आज के समय में जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम और इंटरनेट सेवा जैसे ढेरों विकल्प भरे पड़े हैं, तब लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर एक माध्यम जो सबसे पुराना और विश्वसनीय माध्यम है वो है रेडियो, जिसने पीढ़ियों से आज तक लोगों का मनोरंजन किया है और कर रहा है। जब से ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, तब से यह आम आदमी की आवाज बनकर अपनी पहचान पर कायम है। सुबह सुबह आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले संकेत धुन और वंदे मातरम से जब पहले प्रसारण की शुरुआत होती है, तो यह धुन जनमानस के मन में बैठा हुआ है। संकेत धुन से शुरू होने वाला आकाशवाणी का यह प्रसारण दिन भर जारी रहता है। पहले रेडियो के कार्यक्रमों का प्रसारण 3 सभाओं में होता था, परंतु इसकी लोकप्रियता का ही परिणाम है कि अब यह प्रसारण 24 घंटे अनवरत जारी रहता है। आज के डिजिटल युग में जब एक क्लिक पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है, ऐसे समय में भी रेडियो का प्रासंगिक बने रहना इसकी लोकप्रियता को परिलक्षित करता है। साथ ही लोगों के बीच इसकी कितनी विश्वसनीयता और प्रेम है यह उजागर होता है। जब हम संचार माध्यमों की बात कर रहे हैं, तो आज रेडियो सबसे सस्ता एवं सुलभ माध्यम है। इसके लिए न तो महंगा डेटा चाहिए और न ही बड़े स्क्रीन की जरूरत होती है। छोटा सा ट्रांजिस्टर पॉकेट में रख लिया और जुड़ गए देश दुनिया की खबरों से। इसलिए आज भी गांव देहातों में, दूर दराज के क्षेत्रों में यह सबसे भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। रेडियो सुनते हुए आप पढ़ सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, यूं कहे यह हमारे व्यस्त दिनचर्या में बिल्कुल फिट बैठता है। आज भी गांव देहात में शाम को जब चौपाल लगती है, तो लोग बाग बैठकर बड़े चाव से रेडियो के कार्यक्रमों को सुनते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और सभी बातों को यदि हम छोड़ भी दें, तो रेडियो की महत्ता को वहां पर नहीं भुलाया जा सकता जब सीमा पर हाथों में हथियार लिए हमारे जवान बर्फीली, रेतीली, पथरीली जमीन पर देश की सुरक्षा में 2400 घंटे तैनात रहते हैं। उनके हाथों में न तो मोबाइल होता है, न ही उन्हें इंटरनेट की सेवा उपलब्ध होती है। तब इसी रेडियो से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनकर वे कुछ पल के लिए हंसते हैं, गाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। इसलिए रेडियो की लोकप्रियता को कभी नकारा नहीं जा सकता। आकाशवाणी ने 90 वर्षों तक देश की सेवा करते हुए सूचना, शिक्षा, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकता को एक नया आयाम दिया है और इसे मजबूत बनाया है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भले ही तकनीक बदल गई है, लेकिन रेडियो की आवाज, विश्वास और प्रभाव आज भी कायम है और आने वाले समय में भी यह संस्था भारत की आवाज बनकर जनसेवा करती रहेगी, क्योंकि रेडियो संचार का ऐसा माध्यम है जो आंखों को नहीं बल्कि मन और कल्पना को साकार करता है।
1: ये वार्ता हम सुन रहे थे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय 90 वर्षों का सेवा संकल्प, और वार्ताकार थी वीना कुमारी। और प्रीति, सचमुच में आकाशवाणी जो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का ये रखता है, कितनी चीजें हम इससे सीखते हैं। और दोस्तों, आकाशवाणी भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद, जाहिर सी बात है कि जनसंचार माध्यम है, जो अपनी स्थापना के बाद से 9 दशकों तक यानी 90 वर्षों तक देश की विविधता को एक सूत्र में पिरो आ रहा है।
2: 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। बाद में 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। और आपको पता है ये आकाशवाणी नाम कब दिया गया था?
1: बताओ।
2: 27 जुलाई।
1: अच्छा। और ये आकाशवाणी ही है जो हम अपने श्रमिक साथियों के साथ रूबरू होते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं, उनके लिए जो योजनाएं हैं वो बताते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, है ना। और आज आकाशवाणी नेटवर्क के पास सैकड़ों स्टेशन मौजूद हैं जो भारत के 98% से अधिक क्षेत्रफल और जनसंख्या तक अपनी पहुँच को रखता है।
2: बिल्कुल। और दोस्तों, आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि यह पूरे भारत में 23 भाषाओं और 146 से अधिक बोलियों में कार्यक्रम, समाचार और लोक संस्कृति प्रसारित करता है।
1: इसीलिए हर किसी को अपना सा लगता है आकाशवाणी, है ना, क्योंकि उसमें अपनी मिट्टी की खुशबू रहती है, अपनी, जो कहते हैं कि जब क्षेत्रीय भाषा में हम बात करते हैं तो लोग उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं।
2: तो और अगर हम बात करें अपने ये स्टेशन की, रांची आकाशवाणी जो है इसकी, तो यहाँ भी मुझे लगता है कि झारखंड में जितने भी भाषाएं हैं उन सब में कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आजाद हिंद रेडियो से लेकर आधुनिक युग के मन की बात तक इसने राष्ट्रीय एकता को हमेशा मजबूत किया है।
2: आकाशवाणी का मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, जिसे इसने हमेशा सार्थक किया है।
1: तो चलिए, हम भी अपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर गर्व महसूस करें और आगे भी इसी प्रकार रेडियो जन जन तक पहुंचे, इसकी कामना करें। और हमारे जो श्रमिक साथी हैं, हम उनसे भी यही उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा और श्रमिक साथी हमारे कार्यक्रम श्रमिक लोक से भी जुड़े, है ना।
2: बिल्कुल। और दोस्तों, अगर कहीं भी आपको लगता है कि कार्यक्रम में और भी सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें पत्र लिखकर भी ये बता सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, अब आइए बातें करते हैं कौशल विकास योजना की, जिसने वास्तव में देश की तस्वीर को बदल के रख दी है।
2: स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं ने करोड़ों ग्रामीण और शहरी युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के नए द्वार खोले हैं।
1: और इस योजना के तहत 1.6 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिससे उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर नौकरियां मिल रही है। क्योंकि प्रीति, हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या सबसे जटिल समस्या है और बढ़ती हुई आबादी बढ़ रही है, रोजगार कम हो रहे हैं। तो इस योजना के तहत बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात है वो बहुत ही अहम है और सभी के लिए बहुत जरूरी है, है ना।
2: बिल्कुल। और साथ ही साथ पारंपरिक हुनर को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत की गई है। युवाओं को आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण देकर उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और बहुत सारे हमारे जो युवा साथी हैं वह जुड़ भी रहे हैं, बल्कि कई लोगों के जो जो जुड़े हैं और जिन्होंने लाभ पाया है, हमने उनकी जो भेंटवार्ता है वो भी सुनवाया अपने दोस्तों को।
1: और बात करें अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, उन्हें भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जानकारी लोगों को कम है, तो बकरी पालन, मछली पालन, ऐसे बहुत सारे चीज है, हाँ, तो उनको उसका प्रशिक्षण देके उन्हें रोजगार मुहैया कराई जा रही है। इवन कि हम कह सकते हैं कि जो स्वरोजगार है, क्योंकि अगर स्वरोजगार आप अपना करते हैं तो आप लोगों से जुड़ते भी हैं और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कौशल विकास जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए।
2: बिल्कुल, और कौशल विकास की राष्ट्रीय नीति ने श्रम बाजार की जरूरतों को भी पूरा किया है, जिससे योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ी है और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।
1: तो अगर आपने अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है तो आज ही कौशल विकास

0: उद्यमिता मंत्रालय के वेबसाइट पर जाकर अपने नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर और को उपलब्ध कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें अपने आप को जरूर से जोड़ें।
1: तो बिल्कुल, और हम बता दें कि 40 से भी ज्यादा जो विषय हैं वो इसमें रखे गए हैं, तो कोई ना कोई विषय आपको तो पसंद होगा ही, तो आप जरूर जुड़े
0: और हमारे साथ भी ऐसे ही जुड़े रहें ताकि हम आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहें। तो प्रीति, देखो हमारी जो स्टूडियो की घड़ी वो भी दस्तक दे रही है, तो इस वादे के साथ कि हमारे साथियों से फिर से मुखातिब होंगे, तब तक के लिए अपनी दोस्त आरती
1: और प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक। लीजिए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जबकि जीत के लिए 28 मतों की आवश्यकता है। रांची के पिठौरिया क्षेत्र में 2 जून को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मदनपुर निवासी फिरोज अंसारी पर हत्या की नीयत से गोली चलाई गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में मामला वर्ष 2022 के एक हत्या केस में गवाही को लेकर विवाद से जुड़ा पाया गया है। सिख पंथ के 5वें गुरु अर्जन देव की 401वीं जयंती के मौके पर पूर्वी सिंहभूम के जिला न्यायालय परिसर में विशेष छबिल का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। धनबाद जिले में आगामी 28 जून को आयोजित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 4,24,729 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई पर राय ली जा रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी दुनिया। अच्छा, माँ कीजिएगा, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: गछ लगाओ जंगल बचाओ।
1: सब सुनिया भाई बहन मन के, मार्गरेट बहन बट से जोहार, और झालेश्वरी बहन तोर के भी जोहार।
0: हाँ जोहार जोहार मार्गरेट बहन, और खेती बाड़ी सुनैया सब भाई बहन के झालेश्वरी बहन बटले जोहार। और का हाल समाचार है?
1: हाल समाचार तो एकदम बहुत बढ़िया।

0: है और हमरे मन उम्मीद करा थी कि हमरे कर जितना सुनवाइया भाई बहन मन है
1: सब
0: सब
1: बढ़िया
0: एकदम
1: होवे।
0: बढ़िया।
1: हाँ
0: तो आजकल तो एकदम मौसम भी एकदम बदलते
1: तुरथे
0: जाते
1: एकदम गरम तो तुरथे ठंडा एकदम कने कने तो इतना आंधी तूफान आवे लागे कि
0: आज
1: ना
0: तो
1: कहू कौन
0: हाँ आज तो
1: कने
0: बिहाने से
1: तो
0: बुझाते कि कितना
1: रौद
0: बदरी
1: इतना से कत
0: बदरी
1: रहे।
0: रहे
1: हाँ रहे लेकिन रौद इतना से कत रहे बहिन
0: बहुत रौद
1: कि
0: रहे लेकिन
1: तो मौसम के देख के हमरे मन के सब करे के चाही। ये नहीं कि रौद से कत है हमरे मन नहीं निकलब उसन तो
0: नहीं
1: कामे
0: करे का
1: नहीं
0: है
1: है। हाँ
0: खाली
1: तो
0: कि मौसम पर निर्भर रहेला खेती फसल सब
1: हाँ वही ले देखो रौद मुरुख से कहते हलहो हमरे मन के छाता तो पानी एकदम धैर्य रहे के चाहिए कहो नहीं।
0: एखन तक लू लगत है तो
1: हाँ
0: मौसम कर हमरे कर जीवन में बहुत महत्व है के भाई बहन मन और जितना भी हमरे कर खेती और फसल लागेला सब मौसम पर निर्भर है
1: हाँ और देखो मौसम के देख के करब तो फसलों बढ़िया हुई।
0: बहुत बढ़िया हुई।
1: हाँ
0: और
1: तो मौसम के कर पूर्वानुमान तापमान देखो पानी मन हो आवेला हवा चलेला इकर कई रूप में ध्यान में रख के काम करे के चाहिए।
0: आजकल तो देखो कि अब हम इनकर जितना भाई बहन किसान भाई बहन मन है के सब अब धान रोपाई कर तैयारी करत है। अब तो कोड़ी तो करे के
1: अच्छा हाँ
0: पड़ी
1: नगद करी हमें तो देखो कहले परसों अथी बुना बुन देली ने हिने तो नहीं बुने ना हुने तो का करब बगरा रोपा मन हो रोपे लाइज के तो भेटा बुनी करे नहीं सेले आगे बुना मन बुन देली।
0: बुन के एकदम चुपचाक हो
1: हाँ हाँ
0: जाए
1: हाँ
0: तो मौसम कर बहुत प्रभाव पड़ेला सेले मौसम के देख के आदमी तैयारी करे।
1: तैयारी करी। हाँ हाँ
0: हाँ
1: हाँ तो मौसम के देखते हुए तो तैयारी करब नहीं। ये नहीं कि आप पहुँच जैसे घरी की करब कि नहीं माइन खरसी मन के पाछे फेंकब उसन कर ले तो कहिया काम होई ओहे
0: बहुत
1: में तो
0: देरी हो
1: पूछो ही
0: जाएला।
1: जाइला। हाँ
0: हाँ तो
1: से
0: पछवाए के नखे आगे आगे
1: हाँ
0: करा
1: तो हेले सही समय से रोपल से नहीं सब बेस रहेला। और
0: अब जितना तो जानकारी अब तो हमरे मन कर अब लेकिन कुछ रिच रंग भी तो होवे के चाहिए जरूरी है
1: हाँ
0: तो चलो एक ठो हमरे मन कृषि गीत के सुनब देवदास विश्वकर्मा और संगीमन कर गावल गीत।

0: तो एखन हमरे मन कृषि गीत सुनत रही देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल गीत, तो बहिन बताउ तखने तो कहत रही कि मौसम के देख के खेती बाड़ी करे के चाही। अच्छा माइंड मन हो कहत रही नी कि रवरे मन बगरा का माइंड मन के दे
1: जो हमरे कर जितना घर और छगरी मन का जितना महीने के महीने गाढ़ा मैंने फेंका है ना, सेखे उपयोग करे खेके।
0: हाँ नगद कहा थी देखो ऊपर से माटी हो बढ़िया रहेला
1: काले की खाली खेत के इस्तेमाल करे ना खे देखभाल कर बहुत जरूरी होएला,
0: बहुत जरूरी है।
1: तो जितना भी माइंड गड़ा से माइंड निकलावा और एकदम फेंके शुरू करा।
0: हाँ, के
1: एकदम जमा करा।
0: हाँ,
1: काले की बहुत जरूरी है कि हमरे कर खेत कर जे
0: खेत के बचाए,
1: उपजाऊ वाला क्षमता है कैसे के बनाए बहुत जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है। सही बात
1: तो जरूरी है कि जितना खेत में माइंड मन डालवा उतना बहुत बढ़िया उपजाऊ हो।
0: हाँ बहिन, ताकि देखो खेत कर जे उर्वरा शक्ति जे रहेल से बनल रहे,
1: बनल रहे,
0: ताकि प्राकृतिक और जैविक तरीका में जोर देख सबसे बढ़िया उपाय है।
1: उपाय है के
0: हाँ,
1: और जैविक खाद तो एकदम सबसे आजकल कर एकदम।
0: हाँ, और कहब नहीं कि कोनो कोनो खेत मने ओहे खेती हर ओहे खेती करते रहेला, तो उसन बदल बदल के खेती कर लेल कैसन
1: बहुत बढ़िया होएला कि
0: हाँ
1: उपजाऊ क्षमता एकदम बढ़ते घटते
0: घटते रहे। हाँ हाँ, से ले बदल बदल के करे के चाही, ये नहीं कि एक गो हियाँ उखे हर उखे कर अब तेल तो और दूसरा कैसन उपजल से कर पता नहीं चली।
1: और माइंड डाले से सबसे बगरा फायदा का हो उकर में केचुआ बहुत ज्यादा हो जाए।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: और केचुआ डाले से का हो कि माटी कर असल दोस्त जो है के वो केचुआ है के।
0: केचुआ है के, हाँ।
1: तो केचुआ खाद जैविक खाद के डाले हमरे कर खेत मन में एकदम सोना है के।
0: हाँ,
1: केचुआ खाद
0: सही बात।
1: तो केचुआ और खाद डाला जरूर डाला,
0: और माटी कर हो जाँच मन हो करवा के चाहिए कहो नी।
1: हाँ, और से पता चले ला ना कि का लेके का कमी है,
0: का कमी का मिसी। हाँ हाँ, तो वह लेकर माटी कर हो जाँच करवा के चाहिए, और माटी से लाभ देखो हमरे मन के भेटावे करेला, और इके कम से कम हर 2-3 साल में नजदीकी कृषि विभाग जे रहेला नी से यहाँ जाइ के करवा के चाहिए।
1: इकर से एकदम बहुत बढ़िया जानकारी रौरे एकदम एखन कहत हिस।
0: हाँ
1: ओके, जरूर अपनावा रौरे मन। और चलू तब बातचीत तो होते रही।
0: हाँ हाँ,
1: अब हमरे मन एक जानकारी करब।
0: चलू तब एगो, हाँ हाँ जानकारी है, मोटा अनाज और प्रसंस्करण

0: हेतु उपयोगी मशीन के बारे में बताते हैं डॉक्टर निशा तिवारी और उनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: किसान साथियों नमस्कार। आज पूरा विश्व मोटे अनाज यानी श्री अन्न की ताकत को पहचान रहा है। रागी, बाजरा, कोदो और कुटकी जैसे अनाज न केवल हमारी सेहत के लिए वरदान हैं, बल्कि खेती के लिहाज से भी ये कम पानी और कम लागत में तैयार हो जाते हैं। लेकिन अक्सर हमारे किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है इनका प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग। कैसे इन अनाजों को साफ किया जाए, इनका छिलका उतारा जाए और इन्हें बाजार के लायक बनाया जाए, तो इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर निशा तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र गुमला। डॉक्टर निशा, आपको नमस्कार है।
2: जी नमस्कार।
1: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि मोटे अनाज क्या है।
2: मोटे अनाज सबसे पुराने अनाज हैं सर, जो छोटे बीज वाले घास कुल के पौधों के समूह में से हैं। इनकी खेती प्रतिकूल मौसम में भी की जा सकती है, जिसमें कम उर्वरक एवं कम कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। मोटे अनाज को उनके आकार के आधार पर प्रमुख मोटे अनाज एवं लघु मोटे अनाज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ को प्रमुख मोटे अनाज, जबकि काकुन, चीनी, कोदो, सांवा, कुटकी को लघु मोटे अनाज के रूप वर्गीकृत किया गया है सर।
1: जी, तो भारत में मोटे अनाज की स्थिति क्या है?
2: भारत में मोटे अनाज लगभग 13.80 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 17.30 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ में उगाए जाते हैं, जो एशिया के उत्पादन में 80% और विश्व उत्पादन में 20% और देश के खाद्यान्न उत्पादन में 10% का योगदान देता है।
1: मोटे अनाज के पोषण संबंधी क्या लाभ है?
2: मोटा अनाज प्रोटीन, फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ मोटे अनाज में लगभग 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट, 15-20% फाइबर होते हैं।
1: इनमें स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या लाभ है मोटे अनाज?
2: मोटा अनाज लस युक्त मुक्त होता है, मतलब उसमें ग्लूटेन नहीं होता है और नॉन एलर्जिक होता है। इसके खाने से जल्दी से कोई एलर्जी नहीं होती है। इसमें कई पोषण, न्यूट्रासेरिकल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला गुण भी होते हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि मोटे अनाज हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, मधुमेह से बचाता है, पाचन तंत्र में सुधार करता है, कैंसर के खतरे को कम करता है, शरीर को डिटॉक्सिफाइड करता है, श्वसन स्वास्थ्य में प्रतिरक्षा बढ़ाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, मांसपेशियों तथा तंत्रिका तंत्र में सुधार करता है और सुरक्षात्मक होता है सर।
1: जी, तो आप ये बताएं कि जैसे वर्तमान समय में मिलेट्स यानी जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, कुटकी है, सांवा है, ये सब जो श्री अन्न आते हैं, इनकी पहचान इसी रूप में होती है। तो ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, है ना, तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इनके बेहतर उपयोग एवं मूल्य संवर्धन के लिए प्रसंस्करण अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि प्रसंस्करण है क्या?
2: भारत में 9 प्रकार के मिलेट उगाए जाते हैं।
1: जी,
2: ज्वार, बाजरा, फिंगर मिलेट जैसा कि रागी या फिर उसको मड़ुआ भी कह सकते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ये नग्न मोटे अनाज होते हैं, जबकि बाकी मिलेट जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नयार्ड बाजरा है, प्रोसो मिलेट है, कोदो है, ब्राउन टॉप मिलेट भूसी के अंतर्गत आते हैं और इन अनाजों को खपत के लिए छीलने की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद अनाज को साफ करना, छिलका हटाना, पीसना, पैकिंग करना तथा विभिन्न खाद्य उत्पाद बनाना ही प्रसंस्करण कहलाता है।
1: तो ये लघु मिलेट प्रसंस्करण में चुनौतियां कौन कौन से हैं?
2: मिलेट के दानों में रेत के कण, छोटे पत्थर, मिट्टी के गोले और अन्य अक्रिय अशुद्धियां की उपस्थिति प्रसंस्करण की अवधि को बढ़ाती है, मशीनों के जीवन को कम करती है, घटिया गुणवत्ता वाले मिलेट उत्पाद से बाजार में कम कीमत प्राप्त होती है, दानों में कीट के प्रकोप से मिलेट की लाइफ कम हो जाती है, अनाज में अधिक नमी की उपस्थिति से उन्हें प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है और मिलेट की रिकवरी नीचे चली जाती है। एक प्राथमिक मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए सफाई, ग्रेडिंग, डी हलिंग और मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। आइए हम प्रत्येक मशीन के एक करके चर्चा करते हैं।
1: जी।
2: इसमें से मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है मशीनों को।

0: के तहत पृथक्करण के लिए विभिन्न अंशों, अशुद्धियों, अनाज और मिलेट और टूटी हुई गुठली जैसे छिलके वाले अंशों के बीच घनत्व में अंतर का उपयोग करता है, जिससे कि उसकी सफाई हो जाती है। मिलेट डीहलर या डिकॉर्टिकेटर भी कहते हैं। मिलेट डीहलर जो है कोदो, कुटकी और बाजरा जैसे मिलेट का बाहरी कठोर छिलका हटाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। मुख्यतः भूसी को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है
1: जी।
0: मिलेट पॉलिशर है, डीहलिंग के बाद अनाज को चमकदार आकर्षक बनाने के लिए पॉलिशर मशीन का भी उपयोग किया जाता है। ड्रायर मशीन है, अगर अनाज में नमी पाई जाती है तो उसे ड्रायर मशीन के द्वारा सुखाकर उसका भंडारण क्षमता को बढ़ाता है। फिर द्वितीय प्रसंस्करण मशीनें क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे। द्वितीय प्रसंस्करण में फ्लोर मिल या आटा चक्की होती है, जिसको पल्वराइजर के भी नाम देते हैं, जिसमें रागी, बाजरा एवं ज्वार का पौष्टिक आटा इसी से तैयार किया जाता है। मतलब मोटे अनाज का आटा तैयार करने के लिए हम आटा चक्की पल्वराइजर के नाम से मशीन का नाम है उसमें किया जाता है। फिर उस पल्वराइजर मशीन मतलब जो मोटे अनाज उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनका पाउडर तैयार करता है। रोस्टर मशीन है, मिलेट को भूनने के लिए रोस्टर मशीन का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लार्ज स्केल में अगर मिलेट का कुछ उत्पाद तैयार करना, लड्डू ही तैयार करना है, तो हाथ से रोस्टिंग करने से मशीन में डाल देंगे तो अच्छे से वो उसकी रोस्टिंग हो जाएगी, मतलब उसकी भुनाई हो जाएगी। फिर है एक्सट्रूडर मशीन, जैसे बाजार में आजकल स्नैक्स, नूडल्स, पास्ता, रेडी टू ईट उत्पाद बनाए जाते हैं, तो ये इस मशीन से आसानी से बनाए जा सकते हैं। मिक्सर एवं ब्लेंडर मशीन है, विभिन्न प्रकार के जैसे आटे को मिलाना है, मल्टीग्रेन आटा तैयार करना है, तो उसके हेतु हम मिक्सर एवं ब्लेंडर मशीन का उपयोग करते हैं। तृतीय प्रसंस्करण मशीनें में पैकेजिंग मशीन का नाम आता है। तृतीय प्रसंस्करण मशीनें जैसे कि पैकेजिंग, संरक्षण, विपणन में इसका उपयोग किया जाता है, और इनमें से है पैकेजिंग मशीन। आटा, कुकीज, नमकीन एवं अन्य उत्पादों को आकर्षक पैकिंग बनाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। फिर सीलिंग मशीन है, पैकेट को एयर टाइट बंद करने के लिए सीलिंग मशीन आवश्यक है, इससे उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। अगर हम सही से सीलिंग और पैकिंग नहीं करते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे, उत्पाद होंगे, वो खराब होने के चांसेस होते हैं, तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है
1: जी।
0: फिर लेबलिंग मशीन है, उत्पाद पर ब्रांड नाम, निर्माण तिथि एवं पोषण जानकारी अंकित करने के लिए लेबलिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है, उत्पाद की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु वैक्यूम पैकिंग की जाती है। बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी आजकल आ गए हैं, जैसे ओवन कई प्रकार के आ गए हैं, डीजल ओवन है, गैस ओवन है। तो आप अगर बेकरी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें एक डीजल ओवन की, अगर बड़ा लार्ज स्केल पे आप यूनिट खोल रहे हैं तो डीजल ओवन की आवश्यकता होती है, या फिर गैस ओवन की, जो कि 18 ट्रे का एक ओवन होता है, एक बार में 18 ट्रे बिस्किट आप तैयार कर सकते हैं। तो मिलेट बिस्किट है, कुकीज है, केक है, रेडी टू कुक उत्पाद बनाने हेतु विभिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक बेकरी एवं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स भी हैं
1: जी। तो किसान भाइयों, आज निशा तिवारी जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि कैसे हम आधुनिक मशीनों का उपयोग करके मोटे अनाज की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर हम केवल अनाज न बेचकर उसे प्रोसेसिंग करके आटा, सूजी या अन्य उत्पाद बनाकर बेचें तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी दोगुनी हो सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निशा तिवारी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाज की फूड प्रोसेसिंग मशीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, धन्यवाद सर।
2: तो एखन हमरे मन जानकारी करत रही बहिन मोट अनाज कर प्रसंस्करण हेतु उपयोग और मशीन कर बारे में जानकारी देवत रहे डॉक्टर निशा तिवारी, और उनकर से बातचीत कर रहे हैं कृष्ण जीवन पौराणिक। तो देखो मोट अनाज मन के हमरे मन के करे के चाहिए कि नहीं,
3: बहुत जरूरी है। काली खाली उपजाए से थोड़ी होवेला, उके बढ़िया से रखे भी बहुत जरूरी है।
2: हाँ हाँ,
3: तो आजकल तो इतना मशीन मन निकल जाए है जेकर से साफ सुथरा करके आप सालों भर रौरे
2: रख सकेला। हाँ हाँ,
3: तो मोट अनाज में जितना धान देखू, गेहूँ, मन के चतरा के छिलका जितना भी करके, आजकल तो मशीन आ जाए, पहले बहुत समय लगत रहे।
2: हाँ,
3: लेकिन आजकल समय कर बचत है तो काले की
2: मशीन नहीं जी है,
3: आसानी से समय के बचाओ और अनाज के सुरक्षित रखो।
2: हाँ हाँ, तो क्या कहा थी अरे गो
3: एक तो गीत और एकदम
2: जरूरी
3: है।
2: हाँ, तो एगो नागपुरी लोकगीत सुन लेविला जेके गई है बसीर अंसारी और संगीमन।

0: तो देखो बहिन, हमरे कर झारखंड राज्य में तो सबसे बगरा का के रोपन
1: सभी के रोपन बहिन धान मन कहू कि और जमा दिन आप तो खेती बाड़ी होते रहे ना?
0: होते रहेला, लेकिन भी काले की मौसम के देखे देखते हुए सबसे ज्यादा बगरा का के धान के रोपन।
1: हाँ, धाने के रोपीला।
0: तो मौसम जे है के वो किसान मन का जीवन में बहुत बड़का रोल निभाएला। काले की आजकल कर देख रवरे देखू कि मौसम विभाग इतना तत्पर है के कि हाँ। 3 घंटा पहले हमरे के बात पता चल जाएगा कि कखन पानी आ सके। तो एक विभाग है के जे एकदम तत्परता से काम करत।
1: हाँ, हाँ।
0: तो रवरे एकदम सुनू और देखू कि का लेके सूचना आवत है सके
1: आवत। हाँ, हाँ।
0: और वैसे एकदम तैयारी करू। आजकल तो अब हाल बैल सब के तैयारी करके अब जाए खेत में।
1: हाँ, हाँ।
0: और ज्यादा धूप मन होएला तो उकर में का कहना हमरे कर जितना क्या कहना ओके जे माटी कर जांच करे ना सके उमन कहे ना कि पलटावा माटी।
1: हाँ,
0: के
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: ताकि धूप उकर में लागे और जितना है के कीड़ा मकोड़ा मन मारी
1: हो
0: तो कोड़ा मन कर के कोड़ के माटी के पलटाए बहुत
1: जरूरी है। हाँ, बड़ा नगद कहत ही। और देखो हेले कीड़ा मकोड़ा जे रहेल से

0: मर जाएला और मट्टी हो बेस रहेला। कोड़ा तो करबे करीला, कोनो लागेल से कि कोड़ा कैसे नहीं करिल नहीं,
1: एकदम जरूरी है कि कोड़ा करे।
0: हाँ,
1: बढ़िया से कोड़ा करके मन से खाद के निकलावा और एकदम छीट देवा।
0: हाँ,
1: ताकि एकदम आवे वाला समय में धान रोपे के लिए एकदम फर्स्ट क्लास ले तैयार हो जाए खेत।
0: हाँ, देखो मौसम चक्र कर आधार में किसान हमरे मन खरीफ मानसूनी रबी फसल करीला, सर्दी और गर्मी कर हो फसल उगैला। बगरा पानी कर अनुमान हो से खेत में पानी निकासी कर व्यवसाय पहले से करूँ तो ये बहिन और तो गुठी आप कहत रही, लेकिन खेती बाड़ी कर तो बेरा है जगह सिरात है कहो नहीं,
1: एकदम सिरा गए लक्की।
0: हाँ, तो कहीं जाए के नखे अब और करीला हमारी दुनिया।
1: तो हमारी दुनिया कार्यक्रम में सभी सुनवाइया भाई बहन बहन कर फिर से जोहार
0: जोहार।
1: तो आजकल देखो कि सबसे बड़का विकास में का बाधक हो जाए है।
0: बाधक तो ये हो जाए है कि अंधविश्वास बगरा हो जाए है।
1: काल के इतना अंधविश्वास बढ़ते चल जाए है, आजकल शिक्षा कर इतना एकदम धुरी हो जाए है, इतना शिक्षा बढ़ जाए है, लेकिन
0: हाँ अंधविश्वास
1: आज तक हमरे कर गांव घर में अंधविश्वास नाम कर चीज मौजूद है।
0: हाँ,
1: काल ऐसा हुआ थे कि इतना शिक्षा व्यवस्था बढ़ जाए है, सैकड़ों में आजकल अंधविश्वास इतना फैल जाए है सके, जहाँ देखो हुआ अंधविश्वास हर गांव में हर मोहल्ला में।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: छोट तो, रहे चाहे बढ़ रहे, बीमार पड़बे होले झाड़ और
0: फूक
1: काले ऐसा कर रहे। हर गांव में आजकल हॉस्पिटल बन जाए है, छोटा मोटा क्लिनिक हो जाए है, तो रवरे हुआ जाओ झाड़ फूक ना कराओ, ये झाड़ फूक सब अंधविश्वास है के।
0: अंधविश्वास है के, हाँ नगद कहती जैसे कि कहो जाती हल हो कब कि कोनो अगर आगे से पार हो गेलक हल नहीं नहीं जाए सही, ये तो गड़बड़ ही गेलक जिसे डहर काट देलक कहे नहीं
1: डहर रवरे रवरे कर ओहे डहर और उकरो भी ओहे ओहे डहर, अब वो कहाँ जाए भला।
0: हाँ,
1: अब तो वो तो हुआ से जरूरे पार हुई।
0: हाँ,
1: तो ये सब बेकार बात है के ऐसा। हाँ, ना सोचबा और अंधविश्वास में एकदम अंधविश्वास के बढ़ावा ना दे रवरे।
0: हाँ, नहीं तो अंधविश्वास से हमरे मन आगे बढ़ के नहीं सकब कहो
1: एकदम की।
0: तो ई सब देखो अंधविश्वास बगरा कमजोर आदमी में होला बहिन, से ले अंधविश्वास नहीं करे के चाही। इकर अलावे अशिक्षित जे रहे ना और कई गो आय वर्ग कर वाला में भी देखल जाए लाई। देखो भारत कर अंधविश्वास में अविश्वसनीय विश्वास होय कर चलते उके अंधविश्वास कर गढ़ कहल जाएला।
1: कितना बड़का रौरे एकदम बात कहली।
0: हाँ, देख
1: शिक्षा के हमरे कर जीवन में बहुत महत्व है के।
0: हाँ,
1: आजकल जितना छोट से छोट छुआ चाहे बड़ आदमी चाहे बुजुर्ग सब ले शिक्षा इतना महत्वपूर्ण हो जाए, पढ़े हाँ, कर कोनो उम्र है के
0: नहीं, नहीं
1: नहीं है के, तो जानकारी लेवे कर भी कोनो
0: उम्र नखे। हाँ हाँ,
1: तो जानकारी ले शिक्षा के बढ़ावा दे उकर से का होई फायदा, अंधविश्वास से रौरे दूर
0: रखो। हाँ हाँ, तो हमरे करी देश में तो समाज में अंधविश्वास पहले से चलते आवे थे का कहो। और इकर अलावा अलग अलग जाति धर्म में भी बहुत बहुत प्रकार से देखल जा सकेला।
1: आजकल इतना छोट छोट जाति बड़ जाति ऊंच और नीच जाति ये सब कर हमरे कर समाज में जगह नाखे।
0: हाँ,
1: शिक्षा है हमरे कर सर्वोपरि चीज है के।
0: चीज है के, हाँ हाँ।
1: छोट बच्चा छोट रहे चाहे बड़ रहे सबके शिक्षा कर उतना ही महत्व जाने के चाहिए जितना कि रौरे का कहते।
0: हाँ, सही कहा थी बहिन।
1: पहले का समय में देखू बहिन की कितना डाइन बिसाही और का रहत रहे ऐसा कहत रहे रौरे सुन रही जरूर
0: सुन ही।
1: आजकल ऐसा हो का
0: नहीं नहीं
1: आजकल हो कन्हो कन्हो आप सुनबे काल ऐसा सुनायला कि शिक्षा कर कमी है कि जानकारी कर अभाव में रौरे कहल और सुनल बात में यकीन कर लेबिस। ऐसा नहीं करे के चाहिए, जब तक तो अपन आँख से ना देखू तब तक
0: अंधविश्वास ना करू। हाँ,
1: और अंधविश्वास के बढ़ावा भी ना दे।
0: हाँ हाँ, ए बहिन तो बातचीत तो नहीं सिरे का कह थी,
1: बातचीत तो एकदम चलते रही काले की आजकल
0: डबल दिन भेटाइए।
1: तो चलो।

0: एखन हमरे मन एक ठो रिज रंग जरूर एकदम करेक पड़ी
1: हाँ
0: नागपुरी लोकगीत के हमरे मन सुने सुना जेके गाए हैं जानकी देवी और संगी
1: हाँ
0: मन।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: तो बहिन रिझ रंग कर संगे आप तनिक जानकारी होन हो करिक चाहिए कहो।
2: बहुत जरूरी है।
1: हाँ तो एगो जानकारी है, पच परगनिया में वर्तमान परिवेश में
2: बाल
1: श्रम रोके कर चुनौती जेके जानकारी देवत हैं सविता कुमारी मुंडा।
3: बनते जाते हैं। सरकार इस समस्या लेक निपटे के खातिर बेजाइन कदम उठाया है। समस्या के विस्तार और गंभीरता के देखोत के इके एक ता सामाजिक आर्थिक समस्या मानल जाते हैं, जेटा चेतना के कमी गरीबी और निरक्षरता लेक जुड़ल आहे। इस समस्या के समाधान के चलते समाज के सौ वर्ग द्वारा सामूहिक प्रयास के दरकार आहे। छोटे छुआ खोने के समय टा सौ लोग खातिर बेजाइन अनमोल होयला। उमर के कोनोई मोड़ महने जबे उस समय के याद आयला तो एकटा मधुर मुस्कानटा हमरे केर होंठ महने आए जायला। मंतुक जबे हमरे अपन समाज महने रास्ता आज जात के रेलवे प्लेटफॉर्म महने चाहे गली गिला महने नजर जायला तो अनगिनत छुआ कूड़ा कचड़ा आर गंदा केर ढीपा महने कागज के टुकड़ा गिला चाहे सामान बहुत के चाहे कोने सेठ साहूकार केर हुआ काम करोत के देखे पाबा। आज उमन केर समस्या हमरे केर पासे चुनौती बन कहन खड़ा है। भारत माने बेजान छुआ 4 केर छोटे उम्र लेके काम माने लाइक जानला। भारत माने काम करैया छोटे छुआ केर संख्या संसार भर माने सब लेक बेसी आहे। ईटा केर मुख्य कारण माँ बाप माने छुआ केर पालन और भविष्य केर प्रति लापरवाही जागरूकता केर कमी छुआ गिला केर सही मार्गदर्शन केर अभाव बेजान गरीबी विस्थापन प्यार सुरक्षा आर देखभाल माने कमी खाना कपड़ा आर शिक्षा केर कमी आदि है के गरीब माँ बाप के ई संतुष्टि रहेला कि उकर छुआ काम हुनर आर पैसा सिखोते हैं जेटा उकर जीवन जिए केर खातिर काम आवी। शुरू शुरू माने तो बाल श्रम गिला केर तो कोनो वेतन नहीं मिलेला। कोतना छुआ गिला कालीन बुनाई दस्तकारी आर सिल्क कला आर माचिस उद्योग माने बस एक धाव केर भात खाए खोने काम करेला। जहां बाल कल्याण केर खातिर पंडित जवाहरलाल नेहरू केर जन्म दिवस माने प्रत्येक बछर बाल दिवस के रूप माने मनाल जायला। जहां एक बटे बाल कल्याण लेख संबंधित बेजाइन मामला माने संसार केर लोक गंभीरता लेख सोचो तेहन आज संसार माने लगभग 25 करोड़ काम करोया छोटे छुआ आहेन। संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसारे भारत महने काम करोया छोटे छुआ के संख्या सब लेख बेसी आहे। भारत महने अनुमान आहे कि काम करोया छोटे छुआ के संख्या 440 लाख लेख 1,000 लाख तक आहे। मंतु अधिकृत रूप लेख इकोर संख्या 17.5 लाख बताल जाय है। कुल श्रमिक के 30% खेतीहर मजदूर आर 30.5% कल कारखाना गिलाय काम करोते हैं। शेष भाग पाखना खदाने चाय दुकाने ढाबा आर होटल आर घर केर काम महने लागोला हैं आर गुलामी केर जीवम जिए जियोते हैं। इस सब आंकड़ा समस्या केर गंभीरता के सूचक है के सस्ता दर महने काम करोया छुआ गिला केर पावैया आर कानून केर ढिलाई लेक बेरोजगारी केर समस्या टाउ विकराल रूप धारण करोते हैं। ऐसन देश माने जहां 36 करोड़ जवान बेटा छुआ बेटी छुआ केर खातिर रोजगार केर साधन उपलब्ध निखे ई बाल मजदूर गिला केर स्थिति बेजाइन दनीय अमानीय और अप्रकृतिक आहे। उमन के दिन भर खाटल बादो कमई वेतन 90 लेख 100 टका महीना रहेला। यही चलते काम केर स्थिति माने सुधार लाए केर दरकार आहे। तो भई उमन केर जैविक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे पारिला। इस उधार दुई रकम लेख होए पारेला। पहला ऐसा काम करवाइया छोटे छुआ जे खतरा काम माने लागो लाहेन उमन के मुक्त कराना और उमने ग्रह केर व्यवस्था करना माने नैतिक और सामाजिक जागरूकता लायक हुई। हमरे के ई देखे हुई कि काहे ई छुआ गिला घर द्वार लेक बहराए कहन रोड माने पहुंची गेलोय। ईटा केर पेछुए असल कारण का है के गरीबी और विस्थापन टा के दूर करे खातिर हमरे के भूमि सुधार रोजगार के साधन उपलब्ध कराए होई और जेकर पासे भूई नेखे उमन के न्यूनतम मजदूरी उपलब्ध कराए छुआ गिला के शिक्षा के उचित प्रबंध कराए छुआ गिला के पूरा सामाजिक सुरक्षा और देखभाल देख माँ बाप और समाज माने छुआ गिला के अधिकार गिला के चलते सामाजिक चेतना और जागरूकता आना शामिल है। दूसरा रकम माने ऐसा काम करैया छोटे छुआ जे कोनो उद्योग धंधा माने लाइक कहन कोनो काम सिखोते हैं आर आपन परिवार आर भाई बहिन गिला के खातिर आर्थिक रूप लेक सहारा है कोई। ऐसा छुआ गिला जे पहिल लेके काम माने लागोल आहेन उमन के व्यक्तित्व के विकास माने पूरा अवसर मिलना चाहिए। काम माने कुशलता के संगे संगे शिक्षा के रो पूरा व्यवस्था होक जहाँ काम बादे छुआ दो लेख तीन घंटा पढ़े और लिखे सीखो। बाल श्रमिक गिला के शिक्षा के अलावा चिकित्सा और डॉक्टरी सहायता के सुविधा मिलो। उमन के व्यक्तित्व के विकास के खातिर खेल कूद मनोरंजन के साधन और छुट्टी के पूरा व्यवस्था होक। ई रकम काम के संगे संगे कुशल शिक्षा और तकनीकी ज्ञान टा के बांटना है के एकनुक समय माने पंचायती राज संस्था गिलाऊ बाल श्रमिक आहे चाहे छोटे खनेक ले काम करोया छुआ के सुरक्षा माने कड़ा नजर रखे पारेला। ईटा के अलावे गावे स्वरोजगार कार्यक्रम लघु उद्योग धंधा खेती काम हस्तकला और पूर्णा घरेलू उद्योग धंधा गिला के पुनः जीवित करे के आर उमन के नावा और आधुनिक तकनीक लेक जोड़ना ईटा के एकटा दुर्गामी उपाय होय पारेला। संविधान निर्माता गिला 1950 माने बाल श्रम माने प्रतिबंध प्रावधान राख रहे हलो 1986 तक भारत केर भविष्य कहैया छुआ गिला केर संगे खिलवाड़ होत के रहते। भारत सरकार आज समाज बाल श्रम निषेध आर नियमन कानून बना लय आर लागू कर लय मंतुक हमरे दुयो सोब कबो मन लेख ई प्रण नहीं कर ली कि हमरे छुआ गिला के मजबूरी और बदहाली के जीवन लेख मुक्त कराए कहन उमन के शिक्षा के संगे जोड़ देवी। पहिल लेके

0: दोषपूर्ण ई बाल श्रम कानून टा सरकार आरोही कमजोर बनाए कोशिश करोते हैं। नवा संशोधन के प्रस्ताव टा के ले कोहन संसदीय स्थायी समिति टाउ चिंता जाहिर कोई रहे। उमने मानना है कि पारिवारिक कारोबार चाहे घरेलू उपकरण गिला महने 14 बच्चर के छुआ गिला के जे रकम काम करे छूट दिल जाए है। कहल जाते हैं कि उटा लेक पता लगाना मुश्किल होई की छुआ पारिवारिक या घरेलू उपकरण गिला माने काम करोते हैं या बाल मजदूरी करोते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिनियम शिक्षा केर अधिकार अधिनियम टाउ ई कथा माने बल देला कि 14 बच्चर ले कम उम्र के सब छुआ के निशुल्क शिक्षा देव आर संशोधन कानून इतरे शिक्षा सिर्फ गिनती केर कुछ घंटा तक सीमित रही। ई रकम शिक्षा केर अधिकार केरो हनन होई। ईटा केर अलावे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित कन्वेंशन 138 ई तथ्य माने बल देला कि छुआ गिला के कोनोई रकम केर काम माने करेक उमर उमने स्कूल केर शिक्षा समाप्त करेक उमर ले कम नहीं होना चाहिए। ई उमर माने छुआ गिला के मानसिक और शारीरिक विकास होएला जबकि काम केर दौरान उमने मानसिक और शारीरिक शोषण केर शिकार होएक पड़ेला। दरअसल बाल श्रम गिला केर संगे बेजाइन आरो अन्य समस्याओं जुड़ल आहे। यह चलते बाल श्रम लेके जुड़ल कानून गिला के आरो सख्त करे के दरकार आहे नाही कि उटा माने ढील देख मंतुक मौजूदा कानून माने जे संशोधन केर प्रस्ताव आहे उटा लेख छुआ गिला केर भविष्य सुरक्षित होई ईटा कहना बेमानी होई।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दिलें जेकि पचपरगनियामे जानकारी दिलें वर्तमान परिवेशमे बाल श्रम के रोके करेगो चुनौती है जे वार्ताकार रहे सविता कुमारी मुंडा। तो अब एगो पचपरगनियामे लोकगीत सुनिल बहिन।
2: हाँ जरूर
1: चलो तब जेके गई हैं सुभाष कोइरी और संगीवन।

0: तो एखन हमरे उनपच परगनिया लोकगीत सुनत रही सुभाष सुभाष गोरी और संगी मनकर गावल गीत। तो माइग्रेट बहिन
1: अब हमरे कर विदा लेवे के समय
0: हो गेला। हाँ हाँ तो चले के चाहिए तब कहो।
1: हाँ
0: तो जाए से पहले बताई देव थी कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल। तो चलो तब
1: जोहार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं। खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज। एनडीए ने परिमल नाथवानी को दिया समर्थन। इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ। हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर। आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिस कर्मी। रांची में प्रशिक्षण शुरू। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए 380 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान है, जबकि अब तक किसान लगभग 86 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीद चुके हैं। राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दावा किया कि गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन है।
1: हम लोग की कॉन्फिडेंस में तो कोई सवाल उठना नहीं चाहिए। हम लोग के पास पर्याप्त संख्या है और दो प्रत्याशी के साथ महागठबंधन मैदान में है। लेकिन इस राज्य में फिर से जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का प्रयास भाजपा कर रही है, उसके बारे में बताएं।
0: वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम दलित समाज से आते हैं और स्थानीय उम्मीदवार हैं, इसलिए भाजपा को भी उनका समर्थन करना चाहिए।
2: आज तक भाजपा ने कभी इस दलित को यहाँ से राज्यसभा नहीं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रतिनिधि है वैद्यनाथ राम, वो स्थानीय भी है और पहली बार कोई दलित यहाँ से राज्यसभा जाएगा, तो उनको वैद्यनाथ राम जी के पक्ष में वोट करना चाहिए।
0: दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के हर निर्णय के साथ हैं।
3: उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय करेगी इसमें हम लोग उसके साथ रहेंगे, इसलिए इसमें कोई उचित अनुचित के बारे में सोचने की बात नहीं है। पहले ही स्पष्ट कर दिया था हमने, जैसा भी करें भाजपा के लोगों ने जो तय किया है हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम लोग बहुत होगा तो उनको अपना वोट दे देंगे।
0: नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करने का निर्णय लिया है।
4: सब लोग बार बार पूछते थे कहाँ से लाइएगा, तो हम लोगों ने इसलिए दल की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं दिया। हम लोगों ने तय किया कि चलो भाई परिमल नाथवानी भी पहले भी यहाँ से दो दो बार सांसद रह चुके हैं राज्यसभा के, और उन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा ही काम किया, किसी को कोई निराश नहीं, तो हम लोगों ने तय किया भाई एक ट्रस्टेड व्यक्ति है उसको सपोर्ट कर।
0: नई दिल्ली में आज दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित हुई। विभिन्न विपक्षी दलों के नेता बैठक में भाग लिया। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता

0: उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले शामिल हुए। झारखंड के अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने संबंधी जनहित याचिका का झारखंड उच्च न्यायालय ने निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान बताया कि अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू कर दी गई है और इस संबंध में संकल्प भी जारी किया जा चुका है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने के लिए झारखंड के देवघर जिले का चयन पायलट प्रोजेक्ट के लिए किया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी। इस परियोजना के तहत आज देवघर के सूचना भवन में जिले के थोक और खुदरा उर्वरक विक्रेताओं के लिए फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य उर्वरक वितरण प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता फीडबैक अभियान के अंतर्गत हजारीबाग नगर निगम ने विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। महापौर अरविंद कुमार राणा ने बताया कि स्वच्छता फीडबैक अभियान के माध्यम से नागरिकों से साफ सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था पर उनकी राय ली जा रही है, जिससे शहरों की स्वच्छता रैंकिंग तय की जाती है।
1: हजारीबाग सहित देश के सभी जिलों में स्वच्छता का रैंकिंग चल रहा है कि जो शहर जितना अच्छा होगा फीडबैक के आधार पर जनता जो वोट करेगी उसे उनकी रैंकिंग होगी और फिर जैसे देश में उनका नाम होगा और उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। इंदौर हमारे पलन बताता है, हम चाह रहे हैं कि जो छोटे शहर में हजारीबाग गिनती होती है हजारीबाग टॉप 10 में आ जाए, इसलिए हमारा प्रयास चल रहा है।
0: राज्य भर में पोलियो मुक्त अभियान चलाया जाएगा। धनबाद जिले में भी 28 जून को आयोजित पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 4,24,729 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक देंगी। सिख पंथ के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव की 401वीं शहादत के मौके पर पूर्वी सिंहभूम के जिला न्यायालय परिसर में विशेष छबिल का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं, न्यायिक पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। रांची के पिठौरिया क्षेत्र में 2 जून को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मदनपुर निवासी फिरोज अंसारी पर हत्या की नीयत से गोली चलाई गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रारंभिक जांच में मामला वर्ष 2022 के एक हत्या केस में गवाही को लेकर विवाद से जुड़ा पाया गया है। रांची में साइबर अपराध अनुसंधान पर 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें झारखंड पुलिस के 78 पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के विशेषज्ञ डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल साक्ष्य, सोशल मीडिया अपराध, डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामलों की जांच की जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों की साइबर अपराध जांच क्षमता को मजबूत बनाना है। जापान में आयोजित अंडर 18 एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अंपायरिंग कर लौटी रांची की नीतू कुमारी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। नीतू 29 मई से 6 जून तक जापान के काका मेगाहारा में आयोजित प्रतियोगिता में अंपायरिंग करने वाली झारखंड की दूसरी महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर बनी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कच्चे तेल, गैस और उर्वरकों की कोई कमी नहीं, खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, केंद्र सरकार ने जताया भरोसा। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी

0: गर्मी तेज, एनडीए ने परमल नाथवानी को दिया समर्थन, इंडिया गठबंधन भी जीत को लेकर आश्वस्त। झारखंड के अधिवक्ताओं को मिलेगा स्वास्थ्य बीमा लाभ, हाईकोर्ट ने सरकार के कदम पर संतोष जताया। खाद वितरण में पारदर्शिता लाने की पहल, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल हुआ देवघर, आधार प्रमाणीकरण के बाद मिलेगा उर्वरक। और साइबर अपराध से निपटने के लिए झारखंड पुलिस के 78 कर्मियों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण, डिजिटल फ्रॉड और डार्क वेब की जांच सीखेंगे पुलिसकर्मी, रांची में प्रशिक्षण शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: प्रस्तुत है जिले में आज

0: अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद जिले में बीते सप्ताह विधानसभा की ध्यानाकर्षण विशेष समिति की बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त तो कार्यालय में लंबित बीसीसीएल से जुड़े सभी सीएनटी के मामलों को एक माह के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अंचल कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों का भी एक महीने के अंदर निपटारा करते हुए आवश्यक अनुमति देने पर सहमति बनी। समिति सदस्य निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि बैठक में यह भी तय हुआ कि जिन रैयतों की जमीन पर बीसीसीएल द्वारा ओबी डंप किया गया है उन्हें भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
2: जितने भी पेंडिंग सीएनटी केसेस है जो उपायुक्त के कोर्ट में, उसको इमीडिएटली एक महीना के अंदर दो मोजा के एटलीस्ट सुनूंगा और एक कोई मोजा है वो इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया है। बाकी सारा जो पेंडिंग सीएनटी एक्ट का ये है वो भी इमीडिएटली क्लियर करने के लिए बोला गया, ताकि बीसीसीएल उसको जो डायरेक्ट रैयत से वो परचेज कर सके।
1: धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कल विद्यार्थियों के शैक्षणिक करियर और व्यक्तित्व विकास को लेकर धनबाद कोचिंग एसोसिएशन ने मार्गदर्शन 4.0 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 52 कोचिंग संस्थानों के 520 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बीबीएमकेयू के कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह ने कहा कि आज तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं लेकर आए हैं, लेकिन गुरु का स्थान हमेशा सर्वोच्च रहेगा।
3: एआई व्यक्ति का न विकल्प था, न है, न होगा, क्यों जितना आप पूछेंगे उतना ही बताएगा। उसके पीछे का भाव एआई अभी तक जितना है वो नहीं समझ पाएगा, इसलिए गुरु का स्थान पहले भी सर्वश्रेष्ठ था, आज भी सर्वश्रेष्ठ है और आगे भी सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
1: धनबाद पुलिसिंग को और प्रभावी व जवाबदेह बनाने की दिशा में बीते सप्ताह पुलिस केंद्र में विशेष ब्रीफिंग कार्यशाला की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले के एसआई स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि अब तक डीएसपी, थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर स्तर के अधिकारियों को ब्रीफिंग दी जाती थी, लेकिन अब धनबाद पुलिस ने नई व्यवस्था के तहत सब इंस्पेक्टर और सहायक सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को सीधे ब्रीफ करने का निर्णय लिया है, ताकि निर्देशों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
4: लगभग 850 ऑफिसर्स हैं सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक, जिसमें लगभग 340 सब इंस्पेक्टर और बाकी 500 प्लस एएसआई। तो हम लोग बहुत दिन से ये फील कर रहे थे कि हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो टाइम टू टाइम थाना प्रभारी को, डीएसपी को, सर्कल इंस्पेक्टर्स को देते हैं और वो भी डाउन द लाइन इंस्ट्रक्शन पास करते हैं और उससे फिर काम होता है। हम लोगों ने महसूस किया कि एक बार हम लोगों को डायरेक्ट जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो ऑन फील्ड हैं, एएसआई हो या सब इंस्पेक्टर हो, सबको हम लोग बताएं कि उनसे क्या उम्मीद है, कैसी पुलिसिंग अभी हम लोग चाहते हैं, किस प्रकार से जनता के एक्सपेक्टेशन है उस पर हम लोग खड़ा उतरे, उसी को लेकर के बैच स्टार्ट किया गया।
1: कार्यशाला में कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने

0: समेत अन्य विषयों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने 1000 गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
1: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा।

0: व्यवसाय ननु अबुर्गे वित्तीय सहारा। रोजगार मतलब कातांगा खुदेम गही इंद्रीम दुकान रो अदिन बढ़ावा आना, रोजगार गही अवसरन बढ़ावा आना। इया चेर गुटंगनु खट करे एका से का बोलुर ती कोहाई जे रानाय आरगे 50 लाख गुटी ऋण ची चेना जोखर गे
1: 50,000
0: ती 5 लाख गुटी चेड़ार ती कोहर गे 5 लाख ती 10 लाख गुटी मेतर गे 10 लाख ती 20 लाख गुटी ऋण ची इदी गही बिहेत जरे आदरी बिना गारंटी ऋण जुक्की ब्याज नु ऋण पेल्लर अरा जोखर गे प्रोत्साहन।
1: ई योजना मानिम अके दौर ई नमहे एड़पा परिभाता आलर ने जे ई योग्य रनर आर ई योजना घी नफा होंगनर इन्नेम इन्नेम रार अरखी झरा अर नन्न ननक नशा नो मुलुका राना तिकुड़ेगा ई योजना के ही नफा होना के दौ मनो है मतलब प्रियंका
0: मानिम बाल के रदे
1: पद्धा खेपो नु नमहे आलर बग्गेगा चेड़ा पर्द का जो है निशा अमनु मुलुख करने इन्ने ती आर गे जिया कया हूँ कोड़े मल रही इंद्रिम न लग धतम नुकरी गुठी हूँ नाना पोला लगने एड़बा परिवार ता आले हूँ किच किच इदा तो परेशान मना लग करने संगीम खोड़ा हूँ नंतरा मुढ़ियार अलगे आंगे आले गे निशा अमती बछरना अके चार रही इन्ने ती दिम नाम हुर्मी नम है दाव मनाऊंगी
0: मानी बा अलग दी दई इदी गही उपाय हो रही एकासे का आयक बंगे हद्दय में या ध्यान चीना चाही
1: माने
0: लूर कुड़ियानो नसा ती मन्ना मल दावन अदिन तिंगना चाही हद्दय रेन नलना तोकना योग अरा सांस्कृतिक जे गतिविधि रही अदिन बढ़ावा चीना चाही। अगर हद्दय नसा तरह काला लगना होले डॉक्टर ती मदद
1: होना चाही। माने माने बा अलग दी प्रियंका अकु बेड़ा हूं मंजा केरा डंडी मिन्ना गेही तो प्रियंका अकुन नाम नम है मिनुरिन इधर डंडी में तो
0: हाँ दे डंडी में तो गोविंदा उरावस अरार गई संगस्ती।

0: Sengero dandi di magi do lagi hutang aku nim usaha kumari ti unta akhna joge katha menot wan hai to manav hai mane ki man rei to alar ranar
1: आल जिया का एक आम जिया जाऊत गे टोड़ंग इंदा चार रही अदी नाम हुरमत अखदत बाचका हो रही का टोड़ंग पर ता आलर गे ही जिंदगी तली ई कथन अखनुम अखनुम नाम मनवा जाय तत इंदर गे उल्ला माखा मनमासन मलता टोड़ंगन सर लग आ खंडनुम काला लगदत इदी गे ही मलदाव खंजपा नामा गे नितकीम एथरा लगी अरा उल्ला माखा आल उज्जनन गे कुहा कुहा मलदाव अकलक मना लगी का ई कथ टूड़नु आलर गे इंदा राइन जितना चार मने अदिति बग्गे टोड़ंग बछब आगे आलरी एजना गही न लखननो टोड़ंग परता मूली रूपेनु खेखेल गही उन्टा खंधा तली गुट्टा टोड़ंग अनमनसा भांति किसिम गही मनमास्ती निंदकी रही इन्ने ती टोड़ंग परता गही खेखलो प्राकृति इंदा दव एरागे सुभी आद आलर गही जिया कयन अकय दव सालता न गही न लखनने इबड़ा हुरमिन धर्मेश नमागे बरदान रूपे चिचकर अदस इदी चलते आलर गही उज्जना बिजना खरा दौलेती मनाऊंगी टोड़ंग परता गही मल रचकाती आलर गही जिंदगी खरा शशैत नु मनाऊंगी मलता बाऊंग दत का इदी बेगर आलर उज्जम पुलनर टोड़ंग परता हुरमी किसिम गही जिया जौत गही एड़पा तली एन नेती टोड़ंग परता मजही एक आम आलर मलता जिया जौत तंगा किसिम ती निर्दंद उज्जा उंगी टोड़ंग परता नो नन्ना नन्ना किसिम गही घासी वनस्पति अनभनिया किसिम गही मन बांस ती निंदका अकय कुहा अड्डन टोड़ंग बनर गोटा खे खेल नु मने रकम गही टोड़ंग रही जुदा जुदा अड्डन जुदा खज ई खेखेल नुरी अरा आखज गही किसिम लेखाम अड्डा अड्डा नन्ना नन्ना किसिम गही टोड़ंग ए रागे खखरी दरा आ अड्डा मलता टोड़ंग गही जोखाम असन टोड़ंग किंको उज्जा सिरजारी इबड़ा हुरमी खेखेल नु तंगा तंगा अड्डा दसा गही जोखाम अस्त टोड़ंग मनी अरा आ टोड़ंग नु अन्नेम लेख आजिया जाऊ दिम उज्जा उंगी इबड़ा हुरमी खेखलो प्राकृति गही चक्री तली एक सा नेका किसिम गही टोड़ंग मनाऊंगी आ दशा खेखेल चंदो बीड़ी अरा नन्ना नन्ना ग्रह गही खेखलो आयन प्राकृति नियम मैया इजकी रही खेखलो आयन दिम गोटा खेखेलता ताका धुकन अम गही स्रोतन द उइना गही नलक ननी बा उंगदत का गोटा खेखेलता खेखलोन सम जुगुत तौल आर उइना गही नलक हूँ खेखलो आयन गही दिम नलक तली गोटा किंको गा गोटा टोड़ंग तंगा एड़पा बुझर अय्या इका दो उज्जी बिजी पहें आलर।

0: रंगती किसिम किसिम गही दौ ती दौ खंजपा दौ ती दौ कमहर कंक अर आलर गे उज्जना गही हुरमी किसिम गही चार आलो सिब्बम खखरी काली आउंगेम बाउंग दत कट्टोरंग आलर गे उज्जना गही कुहा स्रोत तली टोरंग गोट्टे खे खेलता जैव विविधतन कम अर की उई आउंगेम आलर मलता एक अम जिया जौत ई खे खेलनु स्वस्थ अर स्वच्छ रूपेनु उज्जा उंगनर टोरंग बग गही कुंदुरना वन की उत्पत्ति टोरंग बग गही कुंदुरना फ्रांसीसी बग ती मंजगिरी इदि गहे मने मनी अकय कुहा अड्डानु मन मास गही निंदकार अन्ना इदिन अंग्रेजी बग गही रूपे तिंका रचा एकदा टोरंग खे खेल जंगली भूमि गही नामेती रही इदिन आलर सेंद्रा बेचा गे बिदका रचर ई खे खेल नु मन मास गही कब्जा मना उंगी और मलाहू मनाऊंगी जोक आलर दखल नंजर कट्टोरंग बक मध्यकालीन लाइटिंग बक फोरेस्टर ती होचकारी इदी गही मने रहचा खुली लकड़ी मध्यकालीन लाइटिंग बकनु खास रूपेनु बेलस गही महबा सेंद्रा बेचा गे उइका अड्डन तेंगा गे व्यवहार नंजका रहचा नाम टोड़ंग गही महबन इन्ने हूँ बाउंगदत आल उज्जा खतरी टोड़ंग ती मने किसिम गही पूप खंजपा मन मास दवई बिरो जड़ी बूटी संगे संगे खे खेलता खेखलो आइनन दव उइया खतरी ताका फुलिन संचोक उइना गही टोड़ंग दिमगा कुहा स्रोत तली चेप उल्ला खाड़ खोसरा नु बढ़ी बरर खे खेलता खज्जन बुहाबी इन्ने ती कुहा कुहा मन गुठी खतरी अरा खाड़ बन इकाली ईद टोड़ंगन बछावी टोड़ंग रचका ती साहे बंचकिरी अरा बेड़ा सिरे पैया बिड़ना अरा चेप खे खेल नुबरी किसिम किसिम गही ओड़ा खाखा नन्ना नन्ना किसिम गही जिया जौत गही कुंदुरना आदि गही राना अरा उजना बिजना गही मूली अड्डा ई टोड़ंग दिमतली फरिज ताका अरा एक गही मूली स्रोत तली एड़पा कम आगे अरा नन्ना नन्ना कमहड़ कम आगे महरंग ते महरंग दरा बड़ियार कंक हूँ इत्तु किम खखरी आल मलता हुरमी जिया जौत गे उज्जा खतरी इंदिर आलो गही चार मनी अबड़ा हुरमी आलो टोड़ंग तिम खखरी आलर गे नाख आ खतरी ऑक्सीजन ची अरा आलर ती उर्क का कार्बन डाइऑक्साइडन तान नाखी एकदा जिया उज्जागे मलदाव तली टोड़ंग नमन बिड़ना अरा चेप तीगा बछाब इदिम संगे उइना ती उर्ख का खाड़ अरा पजरा खेखलन खायना ती हूँ बछाबी टोड़ंग नमागे ताका संगे संगे हुरमी वातावरणन फरीच ननागे सहारा ननी सांसे खेखिलता आलर मलता जिया जाऊ उज्जा गेम एथरना मलता मल एथरना रूपे नु तंग आ उज्जा बिज्जा खतरी गे टोड़ंग नु भरसा ननी मैता कथन बाना गहे ईदी मने रही काहुल्लो परियतिम नाम टोड़ंग गही महबन अखम लगदत टोड़ंग ती नाम एंदेर एंदेर अरा एका से नफा नुकसान मनी अदिन हु नाम दाव ती अखदत टोड़ंग ती नमा कै किसिम गही एथरना अरा मल एथरना नफा खखरी एथरना नफा गा होरमा आलर अखनर पहे मल एथरना नफन नीक इम अखनर नीक इम गा अखम बलनर एकाशेका रबड़ लाही सलाई कागज नन्ना नन्ना कंक आलो रेल संजगी मची गुठी कमना गही हुरमी लिखा कारखाना इटोड़ंग तीम गा खचल रही इबड़ा नलक होरमा आलरगेम इथरी जोक जोक कथा इन्ने हो रही आद आलरगे मल इथरी जिया अबो आलो बेगर नाख आम उज्जा पुल्ली इन्ने जिया अबो आलो बछाबा खतरी टोड़ंगता मन मास ऑक्सीजन चियर तान कार्बन डाई ऑक्साइडन हुई एकदा का जिया अबो आलोगे खरा मुहूर्त तली इन्ने ती अगर नाम टोड़ंगन मुंजकत चिचकत आदि गही खंजपा इंदिर मनो अखदर सांसे खे खेलनु कार्बन डाइऑक्साइड बग्गे बढ़रो कालो इन्ने नु खे खेलता जिया अबो आलो गही बछरनन गा ने बई जय पुई हू नठरो कालो मन मास्तिम चेप झड़ी गही रीत बंचकिरी हुरमी किसिम गही मलदाओ मन मास तान नतगर नमागे फरिच सुध ताकन तयी इबड़ा नलक जोक आलरगे फहम मल लगी इबड़न हुरमीन अखनु हूँ आलर तंग आ सुख सुबिस्ता खतरी अंधवारी टोड़ंगन खंडनुम काला लगनर आलर कुहाँ कुहाँ टोड़ंगन खंडर खल कम अलगनर, कुहाँ कुहाँ बर्तन धसर सड़क कारखाना कम अलगनर। उल्ला उल्ला आलर खे खेलनु बढ़रनुम काल अलगनर, अर आलर गेहि विकास गेहि नामेनु, एउंदा मला एउंदा मनमास अर कुहाँ कुहाँ टोड़ंगन खंडर मुंजच अलगनर। एकासे आलर बढ़ अलगनर, अन्नेम अन्नेम कुहाँ कुहाँ टोड़ंगन खंडर इड़पा दरा खल कम अलगनर। इंदा बग्गे मन खंडरा लगी आउंदा बग्गे ईद आ मल लगनर। सरकारी लेखा जोखन ईरका ती पता लगी का औद्योगिक विकास गेही नामे ती सौसे राजिता आधा ती बग्गे लेखा मन मासन खंडर मुंजिया चिचर। बरना बेड़ानु टोड़ंग ही मुंजुरना ती अकै कुहाँ दिक दिक अकलक मना उंगी। इन्ने नलखन नेजे तमन कुहाँ उद्योगपति बुझुरनर आर तंग आ नफा खतरी सौसे बेलखनता आलर गे सस्ती ची न गही नलक नना लगनर। इन्ने नलक गही उइजी नु केखलो अरा साहे नु मलदाव असर पड़ार अलगी। इदी गही अकै मलदाव खंजपा नकारात्मक इदत तो खज गही छरन अम चक्री जल चक्र गही बिघटन बेड़ा सिरे चेप मलपुइना अम ताका यानी जलवायु गही नन अम बदलारना संगेम जैव विविधता लेखा कोहा नुकसान मना लगी। टोड़ंग खंडरना तरा मल थीथा बाचकती ईद किरमे किरमे अकै कुहाँ मलदाव अकलक गही मुठान धरा काला लगी। इंदा गुटी नाम इबड़ा कथन मल बुझरोत आउंदा गुटी मन खंडरना मल ठमकार ओ ई मानी कथा तली। लुरगरियर बाचका हुरनर का स्वस्थ पर्यावरण अरा फरिच खेखलो खतरी खेखेल गही। 33% हिस्सा नु टोड़ंग राना चार रही इंदा नु पर्यावरण समतुल रहूंगी। पहे दुखे अरा फिकिर गही कथा तली का सरकारी लेखा जोखन ईरकती सौसे खेखेलो 19.5% अड्डा नु भर टोड़ंग बछर करी। अगर नाम सरकारी लेखा जोखन तदत होले हूँ संतोख लेखा मल इथरी इबड़ा दसन ईरका होखा नमा हुरमत गे ई पत्नु गड्डी गुटी घोखना अरा बुझुरना अकै चाड़ रही। अक्कु नमा टोड़ंग परतन बछबाना गही आल गनका आलरगे क्रिया मोखना मनो नमा अखना मनो का मन इदना ती कुहा नेमहा नलक अक्कुंता बेड़ानु इंद्रा हूँ मल्ला। लुरगरियर गही बाच का कथा उन्टा मन दोय खद्दर बराबरी मनी टोड़ंग रई खने नाम रदत टोड़ंग रओ होले नेला रओ टोड़ंग नुम जिया रई टोड़ंग बेगर उज्जा पुलदत आउंगे बरा नाम हुरमत इन्नतिम मन इदोत।
1: अक्कु नाम अखना गही कथा मिंजकत और बरा नाम और उन्टे डंडी मिनोत और ई डंटी इतुम जोड़कर ए टोड़ंग परता दिम ई दिन पाड़ा लगदा सोमरा तिरकी अरा संगेर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है। क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावा टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहां टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं। हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए नंबर है 9431899002, 9431899002। और दूसरा नंबर है 1800121001, 1800121001, ये नंबर है। इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल चलते हैं, आज हमने बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर एक बार चर्चा की थी और वायदा किया था कि अगर इस विषय पर आपके कोई सवाल आएंगे तो हम फिर से इस पर जानकारियां दिलवाएंगे। ढेर सारे सवाल आए हैं इस विषय को लेकर, इस बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी को लेकर। आइए हम इस पर फिर से आपको जानकारी दिलवाते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या है यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद, वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि

0: बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं। तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना, सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, ये भी इनका पार्ट आ जाता है।
1: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
0: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहां कार्डियक सर्जरी हो रही है। तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ, बुनियाद कार्यक्रम है युवा साथियों, टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं। और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, या रोजगार है, ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
0: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं, यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाफ में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
0: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं, रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड, कि उनको पता है।

0: ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना, उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
0: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं, वो सब अगर हमें स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
1: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहां आए, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहाँ पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
0: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
1: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये सारी चीजें, तमाम चीजें, हाँ, हमारे युवा साथी, उनके गार्जियन जरूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज्यादा चिंतित होते हैं।
0: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी, विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन MSc करके, फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
1: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002। तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: अभी आप

सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र एक विशेष वार्तालाप के लिए। विषय है आकाशवाणी भोर से पहले और भोर के बाद।

0: आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
1: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, थैंक यू।
1: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
3: नमस्कार, यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने वर्षों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं, और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है, शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था मुझे याद है, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
2: देखिए 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना संचार शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसा आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का, तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
3: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरपल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र हैं और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र है जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, अब संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
4: मैं उस पीढ़ी का हूँ जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूँ तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साधन, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकी नंदन पांडे,
3: रामानुज प्रसाद सिंह,
4: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
3: अच्छा।
4: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा CM डेड, उसका फॉलो अप क्या है? तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है, बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
3: देखिए, जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोलकी पोल। ढोलकी पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए, आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको आज सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स, रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं, उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं, और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में, कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया, अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो?
5: देखिए, 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
3: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है,
5: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
3: जी।
5: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया, हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खास तौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई, और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। 3 तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो,

0: कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे। जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं। महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक, कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न खटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है। किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है। जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब भारत चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे। लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा, इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी। और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती हैं उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे, हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था। हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो, कवियों
1: को, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा, सबने,
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिक

0: प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले। हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गए लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेल्टन रिकॉर्डर हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से बात करते थे, लोगों से भी बात करते हैं। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती थी, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट्स के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम है जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया, और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है, और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है, तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले एक जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
3: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट, और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
3: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है, और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है, और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से

0: असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट मास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है, और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहें जरा बताएं। जी आप बताएं।
5: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर कि सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
5: सर, ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं, आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए।
4: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन

0: जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
1: जी आप पूछिए सवाल।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन। तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
1: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
0: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
1: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह के रहे वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
3: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
1: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जाहिर है इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
3: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
1: बिल्कुल।
3: और जितने लोग भी कार से सफर करते हैं,
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
3: तो
1: रेडियो,
3: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
1: बिल्कुल।
4: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
4: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे।
1: अच्छा।
4: सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया। मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है, आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
5: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
0: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
0: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पर अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90

0: बरसों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी। बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
1: बहुत सुंदर,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और
4: समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
5: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
6: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
4: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
7: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
4: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता

प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: rti.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: nationwide coverage, with West Bengal joining the scheme. A major fire at Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs, to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान हो गई है, मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनुआत, शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड अता किए जाने की तकरीब में ये एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्त गिर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हसूल में अहम संगे मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपए तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने मरकजी वजीर सेहत जे पी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहिमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: मगरबी

घायल मुस्तफिदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खुसूसी बरती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का

0: इजाफा हुआ है, दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है जो 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
2: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो आप संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मंसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
4: भारत ने 10 सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर्स है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और डीएमके ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
5: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
4: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
6: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र

0: दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: भारत ने मगरबी एशिया में ताजा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये ताजा पेशरफ्त पूरी बैन अलाक्वामी बिरादरी के लिए बहुत ज्यादा तश्वीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम फिर से कायम हो सके, जिसे मगरबी एशिया में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने भी ताजा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारतीय सफारतखाने ने यह सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफर के दस्तियाब वसाइल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनती पार्कों की तरक्की में तेजी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का आगाज किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनती को निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज्म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराए से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, उसके अलावा 2331 04 81

0: 2371717 या 2371710 और 2331444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: कृषि क्षेत्र काफी ग्रोथ मिली थी और किसानों की मेहनत की वजह से, और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की, या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा उकाबल बहुत अच्छा निकला। अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो है किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए, जो कि कृषि वैज्ञानिक।
2: इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने जाते हैं जिससे किसानों को नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे, और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है, या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी, और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें, और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ में लेना चाहिए, और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए, और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
0: जी आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
3: हेलो,
0: नमस्कार।
3: नमस्ते मैडम जी। प्रणाम
0: जी।
2: नमस्कार। नमस्कार जी।
3: सर जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
2: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है, यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं।

0: और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार में उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है, जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो वो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
2: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी दवा साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए, लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
1: हो जाती
2: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
3: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, कि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना,
2: तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई। तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज़्यादा है, और किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा।
1: तो सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत जरूरी है। किसान कराते रहे। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: जी, हम योगेश झांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी,
4: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
0: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का

0: ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
2: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है, तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है, और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों, और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों से साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
4: नमस्कार जी।
3: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले तो मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है, तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
4: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है, तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है, और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है, और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है, ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले ली और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है, तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए?
4: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने

0: दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे, जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे, जैसे पूसा डिकम्पोजर है, ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं, उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन, तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएँ और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएँ।
1: डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद, मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में? डॉक्टर,
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए और अगर हम वो उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉइल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2,00,000 करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसके गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो विक्स डिकम्पोजर रहेगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जो उनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सुडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना,
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। ओडिशा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
3: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
3: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
2: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समेट गेहूं में बीमारी आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं और साथ साथ में इसको प्योद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
4: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
4: प्रश्न ये है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
0: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहाँ पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिस पे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
2: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा से मैं एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसाल का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है
1: जी। हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
5: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
5: प्रियंका जी आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए और धरती कहे पुकार के, ये भी जी, एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछें।
5: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल

0: प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: देखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें यह भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित करके होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की ज़रूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
2: नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रांची केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुनहरी यादें। सुनहरी यादें कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म गमन के इस गीत के साथ।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली।

0: योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म उमराव जान से। गायक हैं तलत अजीज, संगीत खय्याम का है और बोल हैं शहरयार के।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूरे।

0: course, when Mr. Bihari Vajpayee was the Prime Minister, he sent a mission under then, I think, Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological-driven aspects is the Namo Drone DV, which is now using modern technology, as Mr. Anand mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a pesticides, help them in modern farming.
1: Yes.
0: Lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the large the problems that have been affecting of this particular sector.
1: Okay. Mr. Mishra, aapke paas aate hain, jo maine abhi Mr. Anand, Mr. Prasad se pucha, wahi prashn main aapse bhi puchna chahungi ki pichle 12 varshon mein jis tarah se kisanon ka sashaktikaran hua hai, hamara jo krishi kshetra hai, uska mazbootikaran hua hai, jo hum dekh rahe hain production mein, productivity figures mein, aap hame bata sakte hain ki kaun se aap aise pramukh do teen initiatives jinko aap sabse mahatvapurna aankte hain, jo uthaye gaye hain is dauran agricultural policy ke direction mein?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था वो है एमएसपी का फिक्सेशन. पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था. आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा. और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता
1: जी.
2: क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा. लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है सबके सामने. 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है. शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है. और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है. चना का देख लीजिए, चना ऊपर है. व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है. इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपए नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस. तो लगभग सारे जो रबी क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है.
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को.
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2 प्लस FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो
1: जी.
2: और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है. इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की. एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे, जो तीन फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है. फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया. जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे
1: जी,
2: कोई भी स्कीम हो.
1: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, तो आप हमें बता सकते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन

0: का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को MSP के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
1: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल MSP वैल्यू में, अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने MSP के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेज हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की MSP थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% से ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि MSP को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
0: जी।
1: क्रेडिट की व्यवस्था में KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 लाख करोड़ के आसपास किसानों के पास KCC अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को DBT कर देते हैं, हमारे पास DBT का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे यह दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हों जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, MSP को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से ना सिर्फ KCC अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और MSP में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो DBT हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब में एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
0: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है। DBT की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा DBT इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरू बात होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों

0: के लिए, और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें, और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनील जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके हैं गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आदमी साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं
0: जी।
1: अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होती है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला, और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे, और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है, ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए हैं। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है, या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है, और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से तो 92 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के, और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने दिसंबर 25 तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी,
0: जी बिल्कुल। एंड मिस्टर आनंद, कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी ऑल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड, एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल ministry and there's a ministry of cooperation, so you think that enhancing the income of farmers these allied sectors are playing a very major role?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती और एग्जीक्यूट होती है, तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहां हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना है, किनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
0: तो पैक्स जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी
2: जी बिल्कुल, तो

0: एग्री एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड और वो भी डिजिटाइज्ड है, यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए, यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर है इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से सारी चीजें हो रही है। मेगा फार्म फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और वो फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी जरूरत
0: कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए, जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है इन जिलों में X/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में और जो डेयरी में, आज आप देख रहे हैं लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है। चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है कंप्रेस बायोगैस में, और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टर्बाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं और ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टर्बाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही है। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए, ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाई जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर।

0: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें।
1: एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे, लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहां पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
0: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओ होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं एज ए बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहां से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
0: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं, और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं। तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में, आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
0: So that the collective power is there. And Mr. Mishra, we would also like your views, and if you could tell us that how government is really empowering the farmers by protecting them from increase in the prices of fertilizers. So this is a very important input, the fertilizers. So this aspect, how it has been taken care of at the policy level in these 12 years, can you tell us about this empowerment aspect for farmers?
2: See, fertilizer in India is considered the cheapest in the world when you talk about urea particularly. Why? Because government has not raised the price for past 2 decades or so. And urea currently is available at 267 rupees per bag of 45 kg. Last international price at which India bought urea was $954 per ton. So roughly, if you take $1,000, it comes to around 95,000 per ton. 95,000 means 9500 per quintal. It is a big amount. So when farmers are sold at 267 rupees,

0: Just imagine how much money the government is subsidizing. The result is farmers are getting the product fertilizer at the very cheap rate, so that their cost of production is also limited within certain range.
1: Right.
0: And it is also reflected in the end price which they are selling their produce. If you raise the input cost, the product will also be costlier for the consumers. So it is based on this theory that you subsidize the input to some extent,
1: okay,
0: so that the end product also becomes cheaper for the consumers, and our inflation is also remain under control.
1: Mr. Anand, Mr. Prasad, Mr. Mishra, thank you so much for this insightful discussion on the various aspects of how the farmers and the agriculture sector has been empowered in the last 12 years.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Thank you very much.
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government, initiatives for empowering farmers and achievements in agriculture sector. Participants were Binod Anand, member of the High Power Committee on MSP and Agricultural Reforms, Government of India, K.V. Prasad and Prabhudat Mishra, senior journalists. Moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani.
5: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल, किसानों के सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत सरकार में एमएसपी और कृषि सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति के सदस्य विनोद आनंद और वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद व प्रभुदत्त मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 928।
6: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
7: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
6: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
8: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। ये सब नदारत।

0: जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।